0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform real-time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant sarees, bridal jewelry, men's and kids wear.
8: Wait, itna sab aur price?
4: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
9: Main hi to in hu.
10: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
11: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
10: के टू ड्राइव मतलब
11: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
10: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
11: 100%
12: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट के टू ड्राइव डॉट कॉम और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
13: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco mein itna pyar milne ke baad, Panch Tara is now open at a new location in Allen. Wahi swad, wahi junoon aur wahi zabardast management aur customer service. Famous garma garam parhathe, roz tazi bani mithaiya aur full service bar waiting just for you. Enjoy fine dining experience aur Punjabi buffet every day. Catering service is also available to make your every celebration memorable. Panch Tara now in Frisco and Allen. Mention Apna Punjab and get exclusive discount on your first visit.
4: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
14: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: कहीं रिश्ते पूरा।
1: हाँ जी भाई, रिश्ते जाएंगे कहाँ जब आपकी फेवरेट, आपकी बेस्टी आ चुकी है स्टूडियो में। दैट इज राइट यू गाइस, दिस इज इपी द हिपी। आपको पता ही है आज मंडे है, और मंडे को क्या होता है, 7 से 10 बजे। मंडे को 7 बजे, 7 से 10 बजे होता है मेरा शो, जिसका नाम है एन इवनिंग इन डैलस। और आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 FM, जहाँ पे फन ही फन होता है। तो अपना मन भी लगा लो इस फन के चक्कर में, बाकी सबके बारे में भूल जाओ, ठीक है? तो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत अमेजिंग अमेजिंग से गाने लेकर आई हूँ। एंड देन आई ऑल्सो हैव सम रियली स्वीट एंड रियली हैप्पी न्यूज़ फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। क्योंकि भाई मैं इंस्टा पे बहुत टाइम बिताती हूँ, इंस्टा पे रील शील तो देखते ही हैं, लेकिन न्यूज़ भी बहुत अच्छी आती है, बहुत प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट से स्टोरीज भी आती है। तो मैं आपको वही स्वीट स्वीट से स्टोरीज भी सुनाऊंगी एंड और भी बहुत कुछ करेंगे, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड, बिकॉज 8 बजे के बाद हमारा क्या होगा, गिव अवे भी होगा अराउंड 8:05 और समथिंग लाइक दैट। बट अंटिल देन आप ये वाला गाना एंजॉय करिए एंड वी विल बी बैक विद सम मोर चिट चैट, ओके? एंड गाइस, वापस आके फिर और बात करते हैं, चलो।

भाई तुम हो तो लाइफ वैसे ही बन जाती है. तुम हो, आप हैं, मैं हूं, हम सब हैं, है ना. इफ यू से दैट टू योर लविंग पार्टनर, आपकी पार्टनर आपको इतना प्यार देना, चाहे वो आपकी बीवी हो या हस्बैंड हो या गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, इतना प्यार मिलेगा भाई. मतलब यू नो, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन इज समथिंग. हम लोग पिछली बार जब थर्सडे को आए थे, एटलीस्ट माई लास्ट वीक मेरा जो लास्ट एपिसोड था यहाँ पे, वी टॉक्ड अबाउट वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन. कि हमारे इंडियन कल्चर में ना बचपन से फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं सिखाया. आई डोंट नो वॉट इज द कल्चर, मतलब आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों होता है कि इंडिया में हमको एक्सप्रेस करना नहीं सिखाते हैं. हम लोगों को बोलते हैं कि भैया ठीक है, बी स्ट्रांग, फाइट इट, यू नो, बी टफ. हर कोई जो मुश्किल आए, आप उसको आगे बढ़ के, डट के आगे, मतलब उसको फाइट करके निकल जाओ, ऐसे वगैरह. यू नो, वी आर टॉट टू स्ट्रगल, वी आर टॉट टू बी स्ट्रांग, बट नोबडी काइंड ऑफ, आई फील लाइक मॉडर्न जनरेशन इज अ लिटल बिट डिफरेंट. दिस जेनजी और मिलेनियल के बाद वाला जो जनरेशन है, हम लोग बहुत ज़्यादा वी बिलीव इन एक्सप्रेसिंग आर फीलिंग्स एंड एवरीथिंग, लेकिन उसके पहले वाले जनरेशन में नहीं है. तो इसीलिए ट्राई इनकॉर्पोरेटिंग इट, इट्स क्वाइट ओके. यू नो, देर इज नो, नथिंग रॉन्ग इज काइंड इन एक्सप्रेसिंग वॉट यू फील ऑन द इनसाइड. यहाँ के अमेरिका के बच्चों में ना, जब आप क्लास में आते हैं, वेन यू स्टार्ट द स्कूल, देर इज समथिंग नोन एज अ शेयरिंग स्टिक और अ शेयरिंग पिलो और अ शेयरिंग स्टफी. आई फाइंड दैट रियली कूल. आई नोटिस सम क्लासेस, जो छोटे छोटे बच्चों के क्लासेस होते हैं ना, दे ऑल वॉन्ट टू शेयर हाउ दे आर फीलिंग, एंड इट्स सो अमेजिंग. मतलब दे आर नॉट अफ्रेड कि भाई हमारी कुछ अगर बुरा भी लग रहा है, खुशी भी हो रही है, जो भी हो रहा है, हम फील करके बताएंगे. वाई हाइड द फीलिंग्स, यू नो. एनी वेज गाइज, दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय मालाबार. आर यू लुकिंग टू एड अ लिटल स्पार्कल टू your special moments, head to Malabar Gold and Diamond on Preston Road in Frisco, your destination for stunning diamond jewelry and that is elegant, timeless and crafted to shine. From beautiful rings and earrings to dazzling necklaces and contemporary diamond styles, find the perfect piece for engagements, anniversary celebrations or simply treating yourself. Experience unmatched craftsmanship and brilliance at Malabar Gold and Diamonds in Frisco. And don't forget, अगर आप Malabar Gold and Diamond का app download करते हैं, तो आपको दिख सकता है उनकी latest collection updates and more details. So जरूर join देखिए और देखिए मतलब कैसे कैसे designs आ रहे हैं. Okay? And then we will, let's go into a song and then we'll come back and talk some more about our feelings because I feel like it today.

भाई हम फीलिंग्स की बात कर रहे थे है ना, तो फीलिंग्स में मेरे को तो बड़े ऐसे ख्याल आते हैं कि यार मतलब मैं तो सारे दिन बैठ के अकेले सोच ही रहती हूँ, फिर अपने नोट्स बनाती रहती हूँ कि मैं आऊंगी, मैं अपने लिसनर्स के साथ ये वाली चीज़ें शेयर करूंगी, बिकॉज आई नो यू गाइज ऑल्सो अंडरस्टैंड वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना. तो एनीवेज मैं जो बोल रही थी वो ये था कि मैं आज सोच रही थी, मैं ऐसे ही सोचते सोचते ना मेरे को एक ख्याल आया, वो ये है कि हम लोग जब नेगेटिव कमेंट्स देनी होती है, ठीक है, जब हमें किसी के बारे में कुछ खराब बोलना होता है तब सब आ जाते हैं बोलने, कंप्लेन करने सब आ जाते हैं, सब चौड़े होके बोलते हैं कि अरे ये खराब है वो खराब है ये खराब है, लेकिन अप्रिशिएट करते टाइम हम लोग थोड़ा अपना रिजर्व्ड रखते हैं. मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं अपने सेविंग्स बैंक से निकाल के पैसे देने पड़ रहे हैं किसी को अप्रिशिएट करने के लिए. और जो दूसरी साइड पे उसकी जो मतलब द द ऑन द अदर साइड उसका जो रिएक्शन होता है वो ये होता है, क्योंकि वी आर नॉट यूज टू लिसनिंग पॉजिटिव थिंग्स अबाउट अस. तो पता है क्या होता है उससे उससे ये होता है कि जब आपको कोई पॉजिटिव अप्रिसिएशन देता है तब आप उसको डाउट करते हैं, कहते हैं अरे आप मेरे को पॉजिटिव अप्रिसिएशन कैसे दे रहे हैं, लाइक हाउ इज दैट इवन पॉसिबल. एंड देन यू स्टार्ट यू नो डाउटिंग द इंटेंशंस कि क्या चाहिए तुम्हें, इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो. भाई कई बार तारीफ तारीफ के लिए करनी होती है और हम लोग आई फील लाइक वो नहीं करते हैं, है ना. आपको क्या लगता है, यू कैन कॉल मी एंड शेयर योर ओपिनियन विद मी एंड वी कैन टॉक मोर अबाउट इट. एनीवे सब तक के लिए ये गाना सुनते हैं.

0: भाई, लर्निंग टू एक्सेप्ट अ कॉम्प्लीमेंट एंड लर्निंग टू गिव अ कॉम्प्लीमेंट, आई फील लाइक दीज आर सम ऑफ द बेसिक ट्रेनिंग्स जो सबको प्री के में या किंडर में सिखाना चाहिए बच्चों को. आई फील लाइक अमेरिका में तो सिखाते हैं लेकिन इंडिया में ये वाली चीज नहीं सिखाते, या हमारा कल्चर ही वैसा है कि तुमने कैसे कॉम्प्लीमेंट दे दिया किसी को, हाय तुमने कैसे किसी को अप्रिशिएट कर दिया. कोई अगर तुम्हें बोल भी देता है ना कि अरे यू डिड रियली वेल, मतलब इट वॉजंट दैट वेल. मुझे तो कई बार इतनी बार आया कि यू नो कोई आपको अप्रिशिएट करे कि भाई तुमने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड वेरी गुड, एंड देन दे इमीडिएटली लाइक रिट्रीटेड बैक, दे लाइक नो नो, आई मीन इट वॉजंट दैट ग्रेट, येस देर वर सम फ्लॉज ऑल्सो. एक हमेशा ना कॉम्प्लीमेंट के साथ बट एक आता है, यू नो, और वो एक्चुअली कई बार क्या होता है, मैंने अपनी मदर से भी वो सुना हुआ है, हाँ ठीक था लेकिन वो जो एक चीज थी ना वो तुमने छोड़ दी. तो आई फील लाइक भाई अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है वो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ टू साइडेड कॉम्प्लीमेंट, बट समटाइम्स व्हेन समबडी हैज वर्कड रियली रियली हार्ड एंड दे हैव पुट इन ऑल देयर एफर्ट्स, यू नो, उस टाइम पे इमीडिएटली आपको वो नहीं बोलना चाहिए कि भाई हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया लेकिन पर वो क्योंकि ऐसे वैसे. आई फील लाइक वो सारी चीजें वो बाद का टाइम होता है, जब आप एक बार बाद में इस तरह से थोड़े नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी डालो, लेकिन नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी लेना जरूरी है क्योंकि नहीं लेंगे तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे, है ना. तो ये सारी चीजें कुल मिला के आई फील लाइक इंडिया में ये हम बचपन में जब थे हमें नहीं सिखाया जाता है, और ये चीज़ों को सेकंड करने के लिए मेरे एब्सोल्युटली फेवरेट लिसनर्स जो हैं, जो हर बार मेरे को कॉल भी करते हैं, मेरे फेवरेट तो वैसे सारे लिसनर्स ही हैं, ऐसा नहीं है आई पिक एंड चूज कि आप फेवरेट हैं आप फेवरेट नहीं हैं, बट आई लव द फैक्ट दैट जो इतनी कम टाइम में, सिर्फ मेरे को 2 या 3 हफ्ते ही आए हुए हैं और मेरे इतने अच्छे प्यारे प्यारे रेगुलर लिसनर्स बन गए जो मुझे कॉल करके बोलते हैं कि भाई हमें आपका शो बहुत अच्छा लगता है, वी मेक श्योर दैट वी ट्यून इन फ्रॉम 7 to 10 फ्रॉम अक्रॉस अमेरिका, लाइक फ्रॉम वर्जीनिया, आर्कनसा, लाइक ऑल ओवर DFW ऑल्सो. इट इज सो ग्रेट. Anyways, guys, हम ब्रेक में जाने वाले हैं, एंड नाउ
1: आवर एनिवर्सरी इज कमिंग अप, शैल वी रिन्यू आवर वाउज?
2: एब्सोल्युटली, एंड व्हाइल वी आर एट इट, आई शुड रिन्यू सम ऑफ माय ओल्ड ज्वेलरी टू.
1: रिन्यू?
2: या आई विल एक्सचेंज इट एट तनिष्क फॉर द डिजाइन आई हैव बीन आईइंग फॉर अ व्हाइल. दे टेक ओल्ड गोल्ड अबव 9 कैरेट फ्रॉम एनी ज्वेलर फॉर फुल वैल्यू विद 0 deductions. ऑल्सो वी गेट एन एक्स्ट्रा $5 पर ग्राम ऑन एक्सचेंज्ड गोल्ड विद डायमंड परचेसेस.
1: व्हाट बेटर वे टू सेलिब्रेट देन विद समथिंग टाइमलेस?
2: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
4: Excuse me. It's called being loyal.
3: It's called being predictable.
4: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
3: And what's so special at Neon Cactus?
4: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
3: Not bad.
4: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
3: Okay, this I didn't expect from you.
4: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
7: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
9: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
7: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
10: Coughing or sneezing at home, your air duct may be to blame, and clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get 100 $100 off duct cleaning plus free dryer, vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Ducktime.
11: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
12: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
13: If you're ever involved in a car accident, remember these important 3 tips. First, stay calm. Second, check for injuries and move to a safe place if possible. Third, gather information by taking pictures, exchanging contact information, and insurance details. Always, always file a police report. Remember, never ever admit fault at the scene. Even minor injuries can turn serious, so seek medical attention right away. The law offices of Omar Khwaja specializes in personal injury law, and we are here to help you navigate through the legal process. Call us for a free consultation at 1-833-GET-OMAR or visit our website at attorneyomar.com for your free consultation. We can't wait to hear from you.
0: Bhai, this part of the show is brought to you by Page 3 Eatery. From sizzling kebabs and flavorful chaat to fusion bites and refreshing mocktails, if you still haven't experienced Page 3 Eatery at Hub 121, you're seriously missing out. It's very close to the Phanesha office, vaise to. This is where bold Indian street food meets modern flair. Yum, yum, yum. Whether it's brunch, lunch, or dinner, or late night, or a foodie meetup, Page 3 brings the perfect mix of flavor, energy, and vibrant vibes. So please go to Page 3 Eatery at Hub 121 and explore more at page3eatery.com. Guys, we were talking about sharing feelings and expressing feelings, good and bad. Appreciate the people who work really, really hard because, you know, you'll make their day. They do so much work for you guys. Kai baar kya hota hai, hum aise bosses ya जो भी आपके सीनियर्स हैं या फिर आप कोई भी बच्चे भी हो या आपके खुद के बच्चे हो, हम लोग वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, दे ऑल दे वांट इज लाइक अ नॉड ऑफ अप्रूवल. उसमें क्या होता है, कई बार हम अप्रिशिएट नहीं करते, सिर्फ क्रिटिसिज्म करते रहते हैं ना, तो बेचारे बच्चे का कॉन्फिडेंस या जो उसी दूसरे साइड पे वो रिसीवर है, फोन का रिसीवर नहीं, मतलब एज अ पर्सन रिसीवर, यू आर द रिसीवी एंड दे आर द रिसीवर, उनका मॉरल डाउन हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अप्रिशिएट द पीपल हु डू सो मच फॉर यू. ओके, जस्ट वन लाइक, हे आई अप्रिशिएट यू, थैंक यू सो मच फॉर बींग अराउंड, एंड देन इवेंचुअली यू विल सी दैट दे आर नॉट गोइंग टू डाउट एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ दैट अप्रिसिएशन. क्योंकि क्या होता है, जब हम नहीं करते ना, वो छोटे वक्त में जाके फिर वो जब बड़े हो जाते हैं, देन दे रियलाइज, ओ माई गॉड, वाई इज दिस पर्सन अप्रिशिएटिंग मी सो मच, इसके कुछ अल्टीरियर मोटिव्स होंगे. सो फनी. वेल, ये चीज को सेकंड करते हुए आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम रफी एंड सफी, हमारे रेगुलर लिसनर्स. आई एम श्योर वो हमारे सारे शोज बैठ के सुनते हैं, विच आई एब्सोल्युटली अग्री, ही वॉज अग्रींग विद द सेम थिंग दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट अर्लियर. तो उनके लिए एक ये बहुत प्यारा सा गाना जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, रफी एंड सफी, दिस

गाइज, आज आपका लकी डे है. इनफैक्ट लकी डे क्या, पूरा लकी वीक ही है. इस पूरे हफ्ते एटलीस्ट मंडे टू थर्सडे तक तो पक्का एक नहीं दो दो गिव अवे होने वाले हैं. सो मच फ्री फूड, OMG. भाई, हु डजंट लाइक फ्री फूड? आई लाइक फ्री फूड, यू लाइक फ्री फूड, इवन द पड़ोसी आंटी लाइक्स फ्री फूड, योर बॉस लाइक्स फ्री फूड. आई मीन, यू नो, वी ऑल लाइक इट. तो यू गॉट स्टे ट्यून्ड ऑल द वे टिल 8 o'clock एटलीस्ट, क्योंकि 8 o'clock के बाद मेरा पहला क्वेश्चन आएगा गिव अवे का. और आप क्या जीतेंगे गिव अवे में? आपको एक फन पिज्जा किचन का गिव अवे मिलेगा, उसके अलावा एक फ्लेवर लाउंज का भी गिव अवे है. सो अमेजिंग. एनीवेज गाइज, वो बाद में बात करेंगे, जब गिव अवे का टाइम आएगा तब आएगा. लेकिन उसके पहले, डू यू गाइज नो दैट फन एशिया इज सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड म्यूजिक डे? हाँ जी, वर्ल्ड म्यूजिक डे इसी महीने है, June 21st को. उसका मतलब क्या है भाई? उस दिन सारे दिन गाना ही बजेगा. मतलब बकवास हम लोग कम करेंगे, बक बक बक बक कम करेंगे, लेकिन हम म्यूजिक पे म्यूजिक बजाते रहेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत बातें भी कर लेंगे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, वो तो चलता ही है ना. बट एनीवेज, फन एशिया इज सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड म्यूजिक डे बिकॉज एवरी मोमेंट हैज अ सॉन्ग. हर मूड का एक गाना है, हर ओकेजन का एक गाना है, चाहे वो आपका दिल टूटा या दिल प्यार में पड़ा या शादी हुई या बर्बादी हुई, सबका एक गाना तो है यार. मतलब सारी सिचुएशन का एक गाना तो है. फ्रॉम June 21st, नहीं, नॉट फ्रॉम June 21st, फ्रॉम June 1st टू June 15th आप अपना फेवरेट गाने नॉमिनेट कर सकते हैं एक गूगल फॉर्म पे. और वो गूगल फॉर्म मिलेगा कहाँ पे? वो गूगल फॉर्म आपको मिलेगा funasia.net पे, या फिर यू कैन गो टू एनी ऑफ आर सोशल्स, दैट इज इंस्टाग्राम और फेसबुक और एनीथिंग, एंड यू कैन फाइंड दैट गूगल फॉर्म जहाँ पे आप अपने फेवरेट गाने नॉमिनेट कर सकते हैं अक्रॉस द न्यूमरस जॉनरस दैट आर देयर, है ना. चाहे वो रॉक हिंदी बॉलीवुड गाना है, या फिर दुखियारी हिंदी बॉलीवुड गाना है, या फिर बहुत खुशी का हिंदी गाली बॉलीवुड गाना है, या फिर शादी का गाना है. मतलब यू कैन नॉमिनेट दो सॉन्ग्स. और अगर आपका गाना चूज हो जाता है हमारे सिलेक्शन में, देन यू गेट टू विन सम एक्साइटिंग प्राइजेस. वाओ. तो एक गाना हम सुनते हैं, क्योंकि मौसम में भी सरगम होती है. मतलब देयर इज म्यूजिक इन एवरीथिंग इन लाइफ, है ना. तो एक गाना सुनते हैं एंड देन वी विल कम बैक एंड टॉक सम मोर.

भाई आज की सबसे अमेजिंग स्टोरी जो मैं आपके लिए शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि आई केम अक्रॉस दिस इनक्रेडिबल पोस्ट ऑफ दिस लेडी कॉल्ड डॉक्टर दीदी. उनका नाम निक नेम प्यार से है डॉक्टर दीदी, लेकिन उनका रियल नेम क्या है? उनका रियल नेम है भक्ति यादव. भक्ति यादव वॉज बॉर्न इन 1926 एंड शी इज स्टिल इन हर 90s. मतलब शी इज स्टिल अलाइव, शी इज इन हर 90s और अभी तक वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रही हैं. इमेजिन, इवन इन हर 90s वो रिटायरमेंट नहीं ले रही है. पर क्यों, उनको पैसे की जरूरत है क्या? नहीं, उनको पैसे की जरूरत नहीं है. तो भक्ति यादव जो है, शी ग्रू अप एट अ टाइम जब बहुत कम लड़कियां डॉक्टर्स बनती थी. यू नो, इमेजिन अगर 1926 में आप पैदा हुए हैं तो बाय योर 20s व्हेन यू हैव टू गो टू कॉलेज, यू आर बेसिकली जस्ट अराउंड इंडिपेंडेंस के टाइम पे. ठीक है, उस टाइम पे लड़कियों को वैसे ही पढ़ाई, नॉर्मल वाली एजुकेशन ही होती थी, स्कूल ही नहीं जाते थे, तो डॉक्टर तो दूर की बात है. तब उस टाइम पे उन्होंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया इंदौर में एंड शी वॉज दी ओनली वुमेन इन हर MBBS बैच. ग्रेजुएशन के बाद शी गुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ हाई पेइंग जॉब्स क्योंकि फीमेल डॉक्टर है, तब डिमांड बहुत ज़्यादा होगी. थिंक अबाउट इट, क्योंकि उस टाइम पे फीमेल डॉक्टर्स नहीं होती थी, चाहे वो गायनी की प्रॉब्लम्स हो या किसी भी और प्राइवेट प्रॉब्लम्स हो, जो भी है उस टाइम पे, यू नो, इट वॉज क्वाइट अ लग्जरी टू हैव अ फीमेल डॉक्टर. उस टाइम पे वो चाहे तो कोई भी ऐसा हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकती, शी गुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी, बट शी चोज टू सर्व पुअर मिल वर्कर्स अ लॉट ऑफ द टाइम्स फॉर फ्री. उन्होंने फ्री ट्रीटमेंट कराया. उस टाइम पे इंडिया में वैसे ही इतने फैमिन से लोगों को खाने के पैसे नहीं होते थे, वो वैसे ही फ्री में ट्रीटमेंट ऑफर कर रही थी. बहुत सालों बाद भी शी स्टार्टेड हर ओन नर्सिंग होम इन इंदौर कॉल्ड वत्सल्या, वेयर हर पेशेंट्स वर ट्रीटेड फॉर फ्री. आज की डेट पे भी जैसे इंडिया में वो नहीं होता, एक एज के बाद हम लोग मेहंदी लगाते हैं सर पे, डॉक्टर दीदी के बाल अभी ऑरेंज कलर के हो गए हैं मेहंदी लगा लगा के, लेकिन अभी भी वो ट्रीट कर रही हैं. मतलब शी इज 90 समथिंग ईयर्स ओल्ड एंड शी इज स्टिल ट्रीटिंग. शी स्पेंट डेकेज हेल्पिंग वुमेन थ्रू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ. अपनी पूरी लाइफ में शी हैज़ डिलीवर्ड अराउंड 70,000 बेबीज एंड परफॉर्म नियरली 1.5 लाख सर्जरीज. जेनरेशंस इन इंदौर न्यू हर एज डॉक्टर दीदी एंड इवन इन हर 90s शी रिफ्यूज टू स्टॉप वर्किंग. पेशेंट्स उनके घर पहुंच जाते थे और शी सेड हर ओनली विश इज टू सर्व द पीपल अंटिल हर लास्ट ब्रेथ. इजन दैट एन अमेजिंग स्टोरी. इन 2017 उनको पद्मश्री मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एंड दिस वॉज अ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, यू नो. बट अकॉर्डिंग टू हर, हर स्टिल ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, वॉट शी थॉट वॉज अ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, वॉज सर्विंग मदर्स, चिल्ड्रन एंड फैमिलीज हुज लाइफ चेंज बिकॉज ऑफ वन सर्विस दैट शी परफॉर्म्ड विदाउट प्रायोरिटाइजिंग प्रॉफिट. इज नॉट अमेजिंग. तो आप ये गाना सुनिए, हम वापस के बारे में.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond and bridal collections designed for every celebration, milestone and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted, style defined.
3: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
4: Har khushi mein aapke saath Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
5: Documents ya parcel bhejni hai?
6: Haan.
5: Ghar relocate karni hai?
6: Haan.
5: Gaadi bhi transport karna hai?
6: Haan bhai, haan.
5: Toh phir tension kyun le raha hai? SFL Worldwide ko call kar.
7: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sif India nahi, USA aur dunya bhar mein. Trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
8: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
9: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
4: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM टू 8 PM वॉक इन एनी टाइम 9191 काइजरवे स्वीट 205 फ्रिस्को
10: इट्स ट्रू हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal, call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
11: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Funasia.
12: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.
13: Hi guys, we are back and you are listening to me, myself and I. Aur kaun hu main? Mera naam hai Ibi the Hippie, that is correct. Aur aap sun rahe hain Fun Asia 104.9 FM and this show is called An Evening in Dallas. Haan ji, main to normally listings bolti hu bhai. Is hafte kya kya events hone wale hain all over Dallas? तो वो मैं ट्यूसडे को बोलती हूँ सो दैट इट्स अ लिटिल बिट क्लोजर टू द वीकेंड सो यू कैन प्लान योर इवेंट्स फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक लेकिन अभी क्या टाइम है जैसे मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था अभी टाइम है गिवअवे का पम परम पम पम टन टना टन टन टन टारा. नहीं वो गाना नहीं बजा रही हूँ बाय द वे मैं गिव अवे में. आपको पता है जिन लोगों ने मेरा शो पहले सुना हुआ है ये हमारा कौन सा है, हमारे गिव अवे का नाम क्या है. दिस गिव अवे इज कॉल्ड द कॉपी कैट सॉन्ग. एग्जैक्टली. तो इसमें क्या होगा, मैं एक इंग्लिश गाना या यू नो अफ्रीकन गाना या स्पैनिश गाना कोई भी ऐसा गाना बजाऊंगी और उसका आपको मुझे बताना है कौन सा ऐसा कॉपीकैट बॉलीवुड सॉन्ग है. ठीक है तो हम शुरू करें. तो पर जीतेंगे क्या वो तो मैंने बताया नहीं गाइस. इस हफ्ते आप जीत सकते हैं फन पिज्जा किचन से एक बहुत ही शानदार $10 का गिफ्ट कार्ड जिससे आपको पिज्जा भी मिल सकता है और भी बहुत कुछ मिल सकता है. तो आप जाइए फन पिज्जा किचन है क्या. आर यू क्रेविंग समथिंग यमी चीजी विद अ देसी ट्विस्ट. फन पिज्जा किचन इज वेयर फ्लेवर मीट्स फायर. अगर मेरे वेजी प्यारे हैं तो आपको अचारी पनीर पिज्जा ट्राई करना चाहिए विच इज पैक्ड विद टैंगी अचार पंच एंड सॉफ्ट पनीर मेल्टिंग इन स्पाइसी मैजिक. और अगर आप नॉन वेज ईटर हैं तो आप तंदूरी चिकन पिज्जा ट्राई करिए. प्योर स्मोकी परफेक्शन स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर ऑन टू योर टेस्ट बड्स. चाहे आपको वो बोल्ड ब्यूटिफुली बैलेंस चाहिए या फिर बोल्ड चाहिए एकदम तीखा धमाकेदार, देन फन पिज्जा किचन के पास है आपके लिए. ठीक है आपको जो चाहिए जैसा भी फ्लेवर चाहिए दे विल हैव इट. सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन लॉग ऑन टू funpizzakitchen.com. एनीवेज आर यू गाइज रेडी. हम लोग जाएंगे बाय द वे दिस इज फॉर फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को. ठीक है तो वहीं पे जाके आपको रिडीम करना पड़ेगा. मेक श्योर यू गो देयर. तो आर यू गाइज रेडी फॉर द गिव अवे. बम्पर पम पम. तो गाना मैं बजाने वाली हूँ. हमारा फोन नंबर है स्टूडियो का 972-235-5555. लेट मी रिपीट दैट 972-235-5555. ठंड रखो पाजी. पहले कॉल्स आने की वजह से अभी कॉल्स मत डायल करो, पहले गाना सुनो. पता चले आपने कॉल करी आपको आंसर ही नहीं पता फिर. चलो लेट्स लिसन टू द सॉन्ग.

0: Hi, you're on air. Can you hear me?
1: Yes, I can hear you.
0: Okay, first of all, आप अपना नाम बताइए and second आप मेरे को आंसर बताइए.
1: My name is Sanket and I think the answer is पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा from कायमत से कायमत
0: तक. That is not the correct answer, but thank you for trying. लगता है disconnect हो गई मेरी दूसरी call. Hey guys, oh there we go. Hi, you're on air. Do you know the answer to the question? But first of all, you have to tell me your name.
2: Yes, Janelle here.
0: Okay, sorry, who?
2: Janelle.
0: Janelle?
2: Yes.
0: Okay, Janelle. What is the answer to the question?
2: It is Papa कहते हैं बड़ा नाम करेगा.
0: Unfortunately, not. But it is definitely an Amir Khan song. So it is not Papa कहते हैं.
2: Oh, it is.
0: It is an Amir Khan song. लेकिन Papa कहते हैं नहीं है. थोड़ा इतना मुश्किल है क्या? चलो दोबारा. अच्छा दूसरी कॉल आ गई. चलो. Thanks for trying though.
2: ठीक है. Bye.
0: Hi, you're on air, Phanesia Radio. आपका नाम बताइए पहले तो.
3: Hi, my name is Rahim.
0: Rahim. Okay, hi Rahim. Do you know the answer?
3: Yes, it is Ae Mere Sapno Ke Saudagar.
0: बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया है. सब लोगों ने पापा कहते हैं बोला पर आपने पहला आंसर करेक्ट दिया है. सो कंग्रेचुलेशंस.
3: थैंक यू
0: यस रही. मैं आपको ऑफ एयर लेने वाली हूँ. ठीक है, ऑफ एयर लेके आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन. तब तक के लिए मैं ये वाला गाना लोगों के लिए बजा देती हूँ. ओके, सो स्टे ऑनलाइन.
3: हेलो.

भाई इतना लंबा स्ट्रिंग सोलो हमें नहीं सुनना, बट यू गाइज आई एम सो हैप्पी यू गाइज गॉट द आंसर एंड आई गॉट सो मेनी कॉल्स उसके बाद. लेकिन अनफॉर्चुनेटली रहीम, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली नहीं, फॉर्चुनेटली रहीम आप जीत चुके हैं गिव अवे. आपको प्राइज भी मिल जाएगा बहुत जल्दी जल्दी. लेकिन गाइज आज आप लोगों का लकी वीक है, लकी डे नहीं लकी वीक है. पता है क्यों? क्योंकि आप इस पूरे हफ्ते में एक नहीं दो दो गिव अवे करने वाली हूँ. एग्जैक्टली आपको एक गिव अवे मिल रहा है फन पिज्जा किचन से, जो हो चुका है आज के लिए, और दूसरा वाला गिव अवे है फ्रॉम द फ्लेवर लाउंज, तो वो हम करेंगे आफ्टर 8:30. तो स्टे अराउंड, स्टिक अराउंड, देयर इज चांस टू विन अनदर रियली कूल प्राइज, फ्री फूड, यमी. लेकिन आप लोगों ने जब मैंने ये क्वेश्चन बजाया ना, अ लॉट ऑफ यू पीपल आंसर्ड पापा कहते हैं. भाई विदाउट गेटिंग टू टेक्निकल इन टू द म्यूजिकलिटी ऑफ इट, पापा कहते हैं इज वेरी वेरी क्लोज. वैसे अगर मतलब थोड़ा सा उसका जो रिदम होता ना वो अलग होता तो बिल्कुल पापा कहते ही होता. लेकिन जस्ट सो यू नो, वो दोनों आमिर खान का ही गाना है. मतलब वो वाला गाना भी वॉज फीचरिंग आमिर खान, दिस वन ऑल्सो फीचर्ड आमिर खान. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? ओ मेरे सपनों के सौदागर इज इन अ 3-4 टाइम सिग्नेचर. उसका मतलब क्या है? इट्स लाइक अ वॉल्स, इट्स लाइक उसका रिदम है उम चिंग चिंग 1-2-3, 1-2-3. ठीक है, दैट्स अ टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स, जस्ट यू नो फॉर फ्यूचर. और पापा कहते हैं इज इन 4, सो तीन ताल में है 1-2-3-4. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, थोड़ा रॉक एंड रोल है. वन इज अ वॉल्स, वन इज अ रॉक एंड रोल. सो जस्ट सो यू नो फॉर फ्यूचर, अगर आपको ऐसी कोई म्यूजिकल डाउट्स है तो मेरे को कॉल कर सकते हैं, बिकॉज आई एम एन एक्सपर्ट इन ऑल दिस स्टफ. ओके, लेकिन बिकॉज आपने मुझे वो गाना याद दिला दिया, दिस इज पापा कहते हैं फॉर ऑल माई लिसनर्स जिन्होंने पापा कहते हैं आंसर दिया. यू गाइज एंजॉय द सॉन्ग.

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

ओके गाइस, वी आर बैक. अभी मेरे को बहुत ही प्यारी सी एक बच्ची का कॉल आया हु वाज ट्राइंग टू रिक्वेस्ट अ सॉन्ग. अनफॉर्चुनेटली मुझे वो रखना पड़ा और मैं आपसे आगे बात नहीं कर पाई बिकॉज आई हैव टू गो ऑन एयर एंड टॉक अ लिटिल बिट. लेकिन आप प्लीज मुझे दोबारा कॉल करके मुझे क्लियरली अपना रिक्वेस्ट भेजिए एंड आई विल टेक अ रिक्वेस्ट. यू गाइज, आई विल प्ले अ सॉन्ग. बाय द वे गाइज, डिड यू नो फ्राइडे को, दैट इज June 19th, आई मीन ऑफिशियल छुट्टी है. आई मीन इट इज, आई थिंक इट इज कंसिडर्ड अमेरिका सेकेंड इंडिपेंडेंस डे. वेरी बिग डील. सब इट्स एन ऑफिशियल फेडरल हॉलीडे. June 19th है फ्राइडे को. और June 19th को पता और क्या हो रहा है? कॉकटेल 2 रिलीज हो रही है आफ्टर द सुपर हिट सक्सेस ऑफ 2012's कॉकटेल 1. द ड्रामा, रोमांस एंड फ्रेंडशिप आर बैक इन ए फ्रेश ट्विस्ट. ओ हो, सो मच. गेट रेडी फॉर कॉकटेल 2 रिलीजिंग इन थिएटर्स ऑन June 19th, स्टारिंग शाहिद कपूर, कृति शैनन एंड रश्मिका मंदाना. भाई, आई एम एक्साइटेड टू सी वॉट दिस इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट. इट्स अ न्यू स्टोरी, new emotions and a brand new cocktail of love, friendship and heartbreak, and all of that awaits you on Friday. So don't miss Cocktail 2 in theaters June 19th. Usi se ek gana sunte hai Cocktail 2 ka naya. This one's called Valla, introduced to me by Zimran, by the way, who is my regular listener. Zimran, this is a shout out to you. Punjabi.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: डूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
2: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
1: कैसे?
2: पेज 3 ईटरी?
1: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
2: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
1: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
3: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट। Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG FinTax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG FinTax's advisory services.
4: Chicken banana. Chicken banana?
5: Bro, banana nahi. Banana. Matlab, make the chicken right.
6: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
7: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
8: Calculating route, rerouting.
7: Are, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
8: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
7: Kyun?
8: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials, authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
7: Achha, to seedha wahi le chalo.
6: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
8: Your new destination has arrived.
9: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
10: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
11: Because you don't travel with Lawson. चाहे शादी के लिए इंडिया जा रहा हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, Lawson Travel. For nearly 30 years, Lawson Travel has been helping families plan stress-free international trips with the best airfares, vacation packages, cruises and customized travel solutions. Lawson Travel makes every journey smooth, affordable and tension-free. Call now 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
12: Aaj hi sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
13: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
12: सच में? सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
7: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
14: गाइज, जैसे मैंने आप सभी को बोला था, ये आपका लकी वीक है। हाँ जी, हमारा सेकेंड गिव अवे का टाइम आ चुका है। पम परम पम पम, तो आप रेडी हैं नंबर डायल करके? एंड बाय द वे, ये तो मैंने बोला ही नहीं, यॉल आर लिसनिंग टू एपी द हिपी ऑन योर फेवरेट रेडियो चैनल फन एशिया रेडियो 104.9 FM. दैट इज करेक्ट, 104.9 FM और हमारा नंबर है 972-235-5555. लेकिन गिव अवे है क्या, ये तो बोल दूं पहले भाई, फ्लेवर लाउंज का गिव अवे है. यमी, दिस इज योर चांस टू विन अ दाल मखनी या फिर एक ढाबा स्टाइल चिकन करी एट द फ्लेवर लाउंज रेस्टोरेंट लोकेटेड ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को. प्रेस्टन रोड इज सच अ हिप एंड हैपनिंग रोड बाय द वे, पूरी डैलस तक जाती है, फ्रिस्को से लेके एकदम चली जाती है, चली आती है. Anyways, this giveaway is valid for dine-in only. तो takeaway आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? For all listeners, please make sure कि आपने पिछले एक महीने में ये giveaway नहीं जीता है. भाई बाकियों को भी चांस देना चाहिए यार giveaway जीतने के लिए, ठीक है? तो आप हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन, तो मेक श्योर अगर आप गिव अवे जीत जाएं अगले 24 से 28 घंटों के बीच में हम लोग आपको कॉल करेंगे एंड देन आप 7 दिनों के अंदर अंदर उसको रिडीम कर लीजिए, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है? ये नहीं कि आज गिव अवे जीता फिर याद आएगा अगस्त में कि भाई हमने तो खाया नहीं अपना दाल मखनी या ढाबा स्टाइल चिकन करी, चलो अब अगस्त में जाएंगे. भाई ऐसा नहीं है, 7 दिनों के अंदर रिडीम करना है, ठीक है? तो आप रेडी हैं? Well, this one's a little bit difficult. तो ये it's kind of related to the last giveaway. हाँ जी, ये आमिर खान का ही गाना है और आमिर खान पे पिक्चराइज किया हुआ है ये गाना और उनकी पुरानी शुरू की पिक्चरों का गाना है. तो you know, it's you got, if you have heard the full song, only then will you be able to actually get it. So be patient, okay? Are you all ready? And 5, 4, 3, 2, 1, here we go.

0: कॉल करो, किसी को नहीं आया समझ में? इट्स क्वाइट इजी एक्चुअली, वैसे उतना मुश्किल भी नहीं है. थोड़ा सा उसका मतलब म्यूजिक थोड़ा सा और हल्का सा अलग है, लेकिन मोस्टली सेम ही है. मैं आपको हिंट देती हूँ एक. इस मूवी में, ये जूही चावला और आमिर खान की शुरू शुरू की मूवी थी, ठीक है? इट्स अगेन रिच बॉय, रिच गर्ल मीट्स पुअर बॉय, या फिर टू अपोजिंग फैमिलीज. एंड हमने उसी पिक्चर का एक गाना भी बजाया था इसके पहले. एंड वी हैव आवर फर्स्ट कॉलर.
1: Oh
0: हाय,
1: boy,
0: डू यू हैव द
1: two
0: आंसर टू द
1: opposing
0: क्वेश्चन?
1: families. Hi, is it Akele
0: May, it's not, but that was close. That
1: Hum,
0: was close.
1: Akele
0: Hi, you're on air. Do you know the answer to this question?
1: yes, I think the movie is Kayamat Se Kayamat
0: Yes, and what is the answer?
1: Tak. Sorry?
0: What is the answer to the question? What Hindi song was it? You have to tell me the Hindi song that was, it sounds like.
1: Hindi song, I don't remember.
0: अरे कयामत से कयामत वॉज करेक्ट. थिंक ऑफ ऑल द सॉन्ग्स इन कयामत से कयामत तक. नहीं,
1: No, I can't think
0: नो
1: of it.
0: वरीज,
1: I know the movie because you told the plot.
0: या नो वरीज, थैंक्स फॉर कॉलिंग. हाय, यू आर ऑन एयर. डू यू हैव द आंसर टू द क्वेश्चन? व्हाट सॉन्ग डज इट साउंड लाइक?

0: भी अकेले,
1: मजा.
0: इज इट
1: या दैट इज करेक्ट. कांग्रेचुलेशंस.
0: गोस्ट? ये,
1: ये एंड व्हाट इज योर नेम?
0: थैंक
1: प्रिया. ओके अमेजिंग. आई एम गोना टेक यू ऑफ एयर. यू हैव वन ए दाल मखनी
0: थैंक
1: और अ
0: यू.
1: ढाबा स्टाइल चिकन करी फ्रॉम द फ्लेवर लाउंज. ठीक है. आई एम गोना टेक यू ऑफ
0: वाओ.
1: एयर एंड आई एम गोइंग टू प्ले द
0: ओके
1: सॉन्ग इन द मीन टाइम एंड देन आई विल टेक योर इन्फो.
0: ओके
1: ठीक है. सो स्टे ऑनलाइन. ओके गाइस, प्रिया गॉट इट. एवरीवन कॉल्ड अप लेकिन ओनली प्रिया गॉट द करेक्ट आंसर. सो नाउ एंजॉय द सॉन्ग.

गाइस मैं वापस आ गई हूँ. आप सुन रहे हैं एन इवनिंग इन डैलस ऑन रेडियो फनीशिया रेडियो 104.9 एफएम. भाई दुनिया में जहाँ पे सब रेडियो चैनल्स बंद हो रही हैं वहाँ पे फनीशिया अभी भी अपने झंडे गाड़े हुआ है, क्योंकि आप सबकी वजह से. यू गाइस आर सम ऑफ आर बेस्ट लिसनर्स, और आप जो इतने डेडिकेटेडली हर हफ्ते आके मेरा शो सुनते हैं और ये जो क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, गिव अवे जीतते हैं और भी बहुत कुछ जो होता है, मतलब इट्स क्वाइट एन अमेजिंग थिंग. मतलब मैंने अभी देखा दिल्ली में ना, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेमस आरजेज इन इंडिया इज आरजे सार्थक. ही हैज़ बिन एन आरजे फॉर द लास्ट आई डोंट नो 30 years or something like that. He started with Akashvani. Akashvani, boring wala Akashvani nahi. Wo jo Akashvani ka jo sham ka ek aata tha, jisme you would play, they would play English music and rock music, and you know, his knowledge of music was incredible, is incredible, I have to say. And then I have known him since I was 18 years old, since I first started doing music professionally. So he was already an established RJ. Then, uske baad unhone wahan radio, jo Akashvani chhod ke, then he started his own channel called Hit 95 chhod ke he went to Radio 1. Anyways, abhi dusre competing radios ke baare mein nahi bol rahe. Waise wo competition hai bhi nahi. Hum to Dallas mein hai, wo Delhi mein hai, bahut hi alag alag audience hai. Lekin I just found out that radio channel hi band ho raha hai yaar. Pura show nahi khatam ho raha, radio channel hi band ho gaya. Hit 95 bhi band ho gaya bahut saalon pehle, uske baad Radio 1 bhi band ho gaya. लेकिन हमारा फनीशिया रेडियो बहुत अभी तक शानदार प्रदर्शन करे जा रहा है, क्योंकि आपकी वजह से. आपको पता है, आप लोग की वजह से ही हम लोग का ये रेडियो चलता रहता है, जिसमें हम आके आपको गाने वाने बजाते हैं. इट विल बी सो सैड आजकल के ज़माने में वेयर यू कैन स्ट्रीम ऑल द म्यूज़िक ऑनलाइन. कभी भी आप यूट्यूब जाओ, यूट्यूब म्यूज़िक है, स्पॉटिफाई है, एप्पल म्यूज़िक है, कहीं भी आप जाओ, आपको गाने, आपको जो भी गाना चाहिए हर जगह मिल जाता है. लेकिन आप, यू आर ट्यूनिंग इन एवरी वीक, and we bring to you some amazing news and some amazing giveaways and we amazing music, and you guys are still here, so we love you. Okay, on behalf of all of Funasia Radio, I want to say we love you guys. Okay, anyways, ek gana sunte hain and then uske baad, gaane ke baad hum jayenge break mein. Break ke baad jab hum wapas aayenge, then we will have some more masti, and I have like a really really cool interesting story that I want to share with you guys, but after the break, okay? So stick around.

0: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
1: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
0: के टू ड्राइव मतलब
1: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
0: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
1: 100%
2: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402। Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
3: Desi cravings simple nahi hoti, unke levels hote hain. Level 1, mix veg pakora, light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla, thora nostalgia, thora comfort. Level 3, amritsari kulcha platter ya pindi chana, full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema matar, rich, bold, no compromises.
4: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai, new on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGPT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao, flavor hum sambhal lenge.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to karna hi padega, madam.
7: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से स्ट्रेस।
9: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
8: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
9: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
8: ये क्या होता?
9: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
10: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
11: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
12: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
13: लिया।
12: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
13: नहीं आया।
12: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
10: Visit www.senadainc.com today.
14: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
15: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव।
4: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।

0: is coming your way.
1: Vishal and Shekhar.
2: Here we go.
0: That's right. Vishal and Shekhar Live. Get ready for an electrifying evening filled with songs you've danced to, celebrated with, and fallen in love listening to. Sunday, July 12th at the Curtis Culville Center in Garland. Tickets on sale now. CashPatelProductions.com. The Super Hit Tour with Vishal and Shekhar.
3: Swag se karenge sabka swagat.
4: गाइज मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग मुझे कॉल्स करते हैं ना और मुझे बोलते हैं कि आप लोगों को मेरे गाने पसंद आ रहे हैं या फिर मेरी बातें आपको पसंद आ रही है, मैं जो अलग अलग स्टोरीज लेके आती हूँ आप पसंद आ रही है. कई लोग मुझे कॉल करते, जैसे मैंने शुरू में अपना शो शुरू किया था, यू नो वी आर स्टिल न्यू, स्टिल लर्निंग, राइट. कई बार हम लोग ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, मतलब आई नो हम लोग बहुत मतलब इंडियंस हम जो हैं थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बट गाइस बुरा मत मानिए, कई बार हम लोग बोलते हुए ना विदाउट थिंकिंग इतनी सारी बातें होती हैं कि मुंह से निकल जाता है कुछ चीज़ें. तो इट्स नथिंग टू बी ऑफेंडेड ऑफ. आप वो सुनिए कि उसका दूसरा मीनिंग क्या है. एग्जैक्टली वर्ड के ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप ओवरऑल मीनिंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है. कई बार चीज़ें हो जाती है मतलब वैसे ही. तो एनीवेज उसी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं है, वैसे टेक्निकली उससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, बट दिस नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट टू राधा. राधा थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड थैंक यू फॉर टेलिंग मी यू रियली रियली इंजॉयिंग द म्यूजिक. एंड बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग, एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं कर दूं बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई जॉब एंड आई मस्ट डू इट. उमर ख्वाजा, अगर आप किसी भी ऐसे केस या एक्सीडेंट में वगैरह फंस जाते हैं, कार एक्सीडेंट हो, ट्रक एक्सीडेंट हो, स्लिप एंड फॉल हो, देन यू नीड टू कॉल अप ओमर ख्वाजा, अटर्नी ओमर ख्वाजा. ही विल कम एंड फाइट योर केस एंड ही विल हेल्प यू गेट द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व, बिकॉज डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी स्ट्रेसफुल एंड यू नीड एन अटर्नी दैट विल मेक श्योर दैट यू आर कॉम्पेंसेटेड. यू डोंट पे अंटिल यू एक्चुअली विन. सो फॉर अ फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-300-5046 or visit attorneyomer.com. That is correct, guys. So, Radha, this song goes out to you. And we'll come back and we will talk some more. I have this really cool story that I want to share with you guys. So, but wo is gaane ke baad, theek hai?

हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक। हाँ जी हाँ जी, जैसे मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था, मैं आपके लिए बड़ी एक अच्छी सी, मुझे बहुत एक अमेजिंग सी स्टोरी मिली है, एंड आई हैव टू शेयर इट विथ माई एब्सोल्यूट फेवरेट लिसनर्स हियर एट फन एशिया रेडियो। यस यू गाइज, दिस इज योर फेवरेट होस्ट इबी द हिबी, एंड यू ऑल आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM। एंड ये वाला कौन सा शो है? एन इवनिंग इन डैलस। वैसे तो हम सिर्फ डैलस की बातें नहीं करते हैं, हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बातें करते हैं, बिकॉज यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी वेरी होलसम एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। लेकिन न्यूज़ तो आप हमेशा वैसे ही सुनते हैं, इंटरनेट खोलेंगे न्यूज़ आपको वैसे ही मिल जाएगी। आई विल गिव यू स्टफ दैट यू डोंट वैसे गेट टू हियर, समथिंग अनयूजुअल, समथिंग न्यू। ओके एनीवेज, लेकिन वो करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं, बिकॉज वो मुझे करनी पड़ती है, प्लीज बेयर विथ मी। ओके, दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटैक्स। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटैक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द US। दे offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and they get you ready for the future. Call 469-942-9888 or visit agfintechs.com. Yes, it is 9:21 on the clock. Lekin hum 9:30 baje as usual break mein jayenge, lekin break mein jaane se pehle jaise maine aapko promise kiya tha, one amazing, really, really cool story which I did not share with you. Now, do you guys, I mean, we all know that this is the summer season, or summer bolte hi mujhe to dhyan aata hai aam ka, and I miss India ke itne yummy yummy delicious delicious jo aam hai na, mera favorite mango hota hai rather it's called safeda aam. Delhi wale area mein, UP wale area mein hum usko bolte hai safeda, लेकिन आई थिंक कहीं और उसको बोलते हैं, ऑल ओवर इंडिया उसको बोलते हैं बंगना फली या पता नहीं कुछ ऐसा ही सा नाम है, ठीक है। हम लोग तो सफ़ेदा बोलते हैं, वो थोड़ा पेल सा होता है दिखने में, थोड़ा गोरा गोरा सा होता है, मतलब पीला पीला नहीं होता, वो गोरा गोरा सा होता है, लड्डू येलो नहीं है, वो थोड़ा अलग ही येलो है, लेकिन बटर येलो है, इट्स नॉट लड्डू येलो, इट्स बटर येलो। तो वो आम मेरा फेवरेट है बिकॉज इट्स सो फ्लैशी और इट्स सो बिग एंड सो जूसी। हाय, बोलते ही मेरे मुँह में पानी आ गया। तो और दिल्ली में ना हर जगह, हर नुक्कड़ पे समर के टाइम पे मैंगो शेक मिलता है, और वो क्या सही मैंगो शेक बनाते हैं ना, पूरा आम को प्यूरे करके उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, दूध डाल के, दूध की क्वांटिटी कम होती है, आम ज़्यादा होती है, और उसमें डलता है आइसक्रीम, और उसको ब्लेंड करते हैं अच्छे से ब्लेंडर में, और उसके ऊपर डलता है टूटी फ्रूटी एंड नट्स। वाह वाह, दैट फीलिंग ऑफ ठंडा ठंडा मैंगो शेक इन गरम गरम गर्मी, दिल्ली की गर्मी एकदम, इट्स द आइडिया इज नेक्स्ट लेवल। ओके, लेकिन दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियाज मैंगो हिस्ट्री। अगर आपके नहीं पता है, इंडिया में तो हमें पता ही है, इंडिया के मैंगोज आर वर्ल्ड फेमस, दे आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ दिनों पहले मैंने एक और न्यूज़ शेयर करी थी दैट नेपाल हैज़ बैंड सम ऑफ इंडियाज मैंगोज बिकॉज ऑफ सम स्टैंडर्ड्स और व्हाटएवर, बट टुडे इट्स नॉट अबाउट द बैड थिंग्स, इट्स अबाउट द गुड थिंग्स। सो आपको पता है देर इज वन वराइटी ऑफ मैंगो इन इंडिया जिसमें हम लोग पानी नहीं डालते हैं, वो दूध डालते हैं। एग्जैक्टली, उस आम के पेड़ को ग्रो करने के लिए, उसको फ्रूट ग्रो करने के लिए, उसको हम वाटर नहीं करते, हम उसको मिल्क करते हैं। एंड आई डोंट मीन लाइक यू मिल्क द काउ, लाइक यू मिल्क इट, यू टेक द मिल्क आउट, बट यू पोर द मिल्क इनटू द मैंगो। एंड लखनऊ के एक नवाब थे फिदा हुसैन बोल के, एंड ही हैड एक्चुअली ब्रॉट द मैंगो सैपलिंग फ्रॉम पाकिस्तान, ही हैड गॉट दिस मैंगो सैपलिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड देन ही हैड प्लांटेड इट इन दिस लिटिल विलेज कॉल्ड दीघा विच इज़ वेरी क्लोज टू पटना। एंड इंस्टेड ऑफ वाटरिंग विद पानी, ही स्टार्टेड वाटरिंग इट विथ मिल्क ऑल द टाइम। ओके, एंड जब द ट्री, व्हेन द ट्री फाइनली स्टार्टेड टू गिव फ्रूट, पता है वो क्या हुआ? इंस्टेड ऑफ लाइक यू नो जूस कमिंग आउट ऑफ इट एंड ऑल, इट स्टार्टेड ओजिंग मिल्क। उसको काटते थे, उसमें से ना दूध निकलता था। सो अमेजिंग इजंट इट? तो उस मैंगो का नाम बना दूधिया मालदा। और टोटली अनरिलेटेड सॉन्ग मैं एक बजाती हूँ, उसके बाद 9:30 बजे के बाद आइए, मैं और बताऊंगी उस मैंगो के बारे में। इट्स अ वेरी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, चेक इट आउट।

0: ऑल राइट गाइस, हम थोड़ी देर में ब्रेक में जाने वाले हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं कर दूं. वेल, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. पता है मुझे अभी ये सारे अनाउंसमेंट्स बीच में ही डालने पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं शुरू में आपके लिए बहुत सारे गाने प्ले करें, सो आई हैव टू मेक श्योर दैट आई हैव टू डू दिस टुडे. ओके, सो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हाउ मच टाइम डज योर डॉक्टर स्पेंड विद यू? 5 मिनट, 10 मिनट? एट पैशन प्राइमरी हेल्थ केयर एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 whole minutes, बिकॉज वी ट्रूली अंडरस्टैंड दैट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ टेक्स टाइम. ओके, बिकॉज एट पैशन हेल्थ यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर फैमिली. फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी, पैशन हेल्थ केयर प्राइमरी केयर. दिस इज नॉट ऑल, पैशन हेल्थ इज ग्रोइंग, दे आर नाउ हायरिंग. Guys, if you are in healthcare, then this is for you. Passion Healthcare is now hiring experienced primary care doctors, endocrinologists, pediatricians, psychiatrists for full-time and part-time.
1: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
2: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
1: Renew?
2: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
1: What better way to celebrate than with something timeless?
2: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
4: Aaja meri gaadi mein baith ja.
5: Baith jaun? Pakka? Kal hi to teri gaadi ne signal pe dum tod diya tha.
6: Wo thoda overheating tha.
5: Thoda? Teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
7: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
8: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
9: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
10: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khan Zada, jinhone apne kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par. TheJagoTimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khan Zada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
11: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: गाइज मैं वापस आ चुकी हूँ एंड यू ऑल आर लिसनिंग टू फनीचर रेडियो 104.9 एफएम और लास्ट का आधा घंटा बचा है तो ये स्टोरी फटाफट फिनिश करते हैं, लेकिन क्योंकि नहीं तो मैं खत्म ही नहीं कर पाऊंगी यार ये स्टोरी। तो हम क्या कह रहे थे उस आम के बारे में, दूधिया मालदा। पता है नाम क्यों उसका दूधिया मालदा पड़ा? क्योंकि एक तो उसमें दूध डलता था और वो मालदा वाले रीजन से था, ईस्ट इंडिया के मालदा वाले रीजन के आसपास उसको प्लांट किया गया था, इसीलिए इट वॉज कॉल्ड दूधिया मालदा एंड देन इट बिकेम ईस्ट इंडियाज कलेक्टिव प्राइड। भाई वैसा वाला मैंगो सिर्फ ईस्ट इंडिया में ही मिलता है, बंगाल वगैरह, उस बिहार वगैरह वगैरह उस एरिया में। तो इंडिया के जो पहले प्रेसिडेंट थे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही वॉज ऑब्सेस्ड विद दिस वराइटी ऑफ मैंगो, ऑब्सेस्ड। नाउ क्योंकि दूध इतना महंगा हो चुका है, मतलब इन्फ्लेशन वैसे ही बढ़ चुकी है, तो भाई पानी भी नहीं मिलता कई बार इंडिया में, तो लोगों को मतलब यू नो पानी की प्रॉब्लम हमें सबको पता है कि भाई सुबह 8 बजे पानी आने वाला है, बाल्टियां भर के रख लो, ये वाला सोल्यूशन या ये वाला सेइंग तो हमने सबने सुना होगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप इंडिया में रहे हैं स्पेशली। अगर आप नहीं रहे हैं देन गुड फॉर यू, बट अगर भाई मैंने तो बहुत सुना हुआ है पानी खत्म हो जाएगा, डोंट टेक लॉन्ग शावर्स। तो एनीवेज इस जमाने में जब पानी भी नहीं मिलता तो दूध या आम कहाँ से मिलेगा, तो इसीलिए दिस आम इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। हाउएवर 1996 में इसका एक आम जो था सिंगापुर भेजा गया था फॉर एन एग्जीबिशन एंड इट वन फर्स्ट प्राइज। इज नॉट अमेजिंग, प्राइज भी जीता यार पूरे वर्ल्ड में, वन ऑफ द बेस्ट मैंगोज That exists. And did you guys know about the mango? मैं तो कभी नाम भी नहीं सुना यार दूधिया मालदा का, कभी नहीं सुना। Now I really want to try it. Like I wonder if the mango will actually taste like mango shake, you know, like the one that I was talking about पहले. Anyways, but there are some farms who are actually regrowing that, which is where I came across this. Yes, it was a marketing post, लेकिन something new to always learn from it, right? Anyways, guys, I'm going to play you this new song. This song goes out to Zimran, who is actually my regular listener. अगर आपको याद है तो Zimran ने मुझे पिछले हफ्ते call किया था and he said he's going in for an interview और Zimran की job लग गई है, guys. हमारे best wishes उसके साथ है Zimran. Congratulations on becoming a flight attendant with Air Wisconsin. Yeah! And Zimran has requested the song. It's a new song. It just released like 20 hours ago. This is from Dhamal 4 and the song is called Chutney. And he and his friends are debating whether this song is actually nice or is just eh. ठीक है? तो अगर आपको ये गाना बहुत पसंद आए, तो मुझे call करके बताइए कि we actually think this song is bomb. और If it's not a bomb, then just call me and tell me it's totally flop. It's like, it's a really bad song. We're taking a poll because Zimran can't make up his mind right now. So I told Zimran, you know what? Let's ask Puri DFW ki janta and I will do a little vote tally at the end of it. So this is Chutney from Dhamal 4.
1: MJ gaadi mein rakhi gayi aur mazey ki baat ye hai, ye cash jise mila wo paisa uska.

0: भाई आपको वो गाना कैसा लगा? आई मीन व्हाट डू यू थिंक? वी आर टेकिंग अ पोल राइट, बिकॉज दिस इज अ न्यू सॉन्ग एंड वी आर टेकिंग अ पोल. एंड जिमरान कान मेक अप हिज माइंड वेदर ही एक्चुअली लाइक्स द सॉन्ग और डज नॉट लाइक द सॉन्ग. पर्सनली आई थिंक इफ यू आर एट अ क्लब एंड इफ दिस सॉन्ग इज प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, येस इट्स अ बॉप. आई थिंक इट्स अ ग्रेट डांस ट्यून. बट आई ऑल्सो डोंट लाइक द आइडिया ऑफ चटनी. लाइक चटनी के गाने कुछ थोड़ा मतलब इट्स अ लिटल, मतलब किसी कुकिंग शो का अगर होगा तो मैं ज़रूर डालूंगी. आई डोंट नो व्हाट द डीपर मीनिंग ऑफ दिस सॉन्ग इज. वी आर नॉट गेटिंग इनटू दोज राइट नाउ, बट आई डोंट नो व्हाट डू यू थिंक. डू यू लाइक दिस सॉन्ग और डू यू नॉट लाइक दिस सॉन्ग? एनीवेज गाइज, ये नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करते हैं एंड देन वी विल कम बैक एंड लिसन टू सम मोर स्टफ.
1: Baby, when I look into your eyes, I can see the stars shining so bright, so bright, the starry eye.
2: Let me hear you sing.

गाइस डू यू रिमेम्बर व्हेन हैरम पैंट्स वर लाइक सो ट्रेंडी. वो जो ढीले ढीले पजामा टाइप के पैंट्स नहीं होते थे, मतलब जो मिडल ईस्ट के एरिया में ज्यादा पहनते थे, स्पेशली मेन तो ज्यादा पहनते थे. और या फिर वो आई ड्रीम ऑफ जीनी में 70s में जो शो नहीं आता था अमेरिका में, आई ड्रीम ऑफ जीनी, वहां पे द जीनी यूज टू वेयर दोज हैरम पैंट्स. दे वॉज सच अ ट्रेंड इन द अर्ली 2000s. अभी ये गाना बजाते हुए ना आई वॉज वॉचिंग द वीडियो एंड देन आई सॉ करीना कपूर इज लाइक दैट ब्लैक टैंक टॉप एंड दोज हैरम पैंट्स. ओह आई नीड दैट, आई नीड टू हैव दैट इन माई लाइफ. I think somebody needs to bring that back in fashion. Anyways, this next song goes out to Ruchi. Ruchi, my friend, this one goes out to you, who's also our regular listener for a long time.

गाइस, कल ना मैंने एक हॉरर मूवी देखी, ठीक है? बस यही बोलना था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना था। वो हॉरर मूवी कुछ ज़्यादा मज़ेदार थी नहीं, थोड़ी बकवास ही थी। बट कोई बात नहीं, आप ये वाला गाना एंजॉय करिए एंड हैव ए वंडरफुल थ्रिलर लेस, सस्पेंस लेस, लेट्स जस्ट से सस्पेंस लेस एंड अ पीसफुल नाइट टुनाइट। आई विल सी यू गाइस टुमारो फ्रॉम 7 to 10 Right here on Funasia Radio 104.9 FM, and you are listening to Hippie the Hippie, and this show is called An Evening in Dallas, and we'll bring to you kal lots of amazing events that are happening around the city this weekend, so you can plan your week way ahead in advance, okay? And enjoy this song. Aa jaare, mere ko to bilkul nahi aata wo gaana, par ab mere ko nahi sunna aapko.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

आता न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

bringing South Asia closer, more closer. Funasia, 104.9 FM.

0: अरे घूटो में सो आ गया। अरे घूटो में सो आ गया। अरे घूटो में सो आ गया। अरे घूटो में सो आ गया।
1: अभी भी एक घूंट बाकी है।

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान सादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खान सादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
2: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
3: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: rest a while.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG Vintax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
4: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपर हिट
5: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming. Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शो रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शो रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

Thank you for tuning into 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है. मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं. छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे. जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट. सो कमाल धमाल, फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ.

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजर रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Facts, they see.

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: यो यो यो यो, got a nozzle, heavy, y'all know baby.

0: कब तो चाहे नफरत करे।
1: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: beat. Banjo.
1: लुट गया मैं सोनी तेरे प्यार में, मारना दे मैनू इंतजार में।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: से छुटेगा और एक ही दिन में हम सबको खत्म कर देगा।
1: ए बदराव, व्हाट लग रहे पोरचे?

0: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
2: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So, is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
3: Hi, this is Stephanie Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

0: और मैं फूल फेंक रहा हूं।
1: तुम?
0: अरे और फिर तुम जाने लगती हो और मजाक कर रहा था ना बिल्ली।

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: Take it away!

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop infotainment.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: Pop, pop, pop, pop, pop.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे। बढ़िया।

0: बताइए कहाँ ले चले?
1: पीएससी हेडक्वार्टर्स और फिर सीधा सरकारी अस्पताल।
2: कम से कम समय तो निकाला पटनायक साहब ने, वरना इनके पास तो टाइम ही नहीं होता किसी से मिलने के लिए।
1: ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए रुकते नहीं ना एक जगह।

0: कौन है? कोई बड़ी हस्ती?
1: रूटीन ऑफिस वर्क।
0: रूटीन जब बदलता है तो सबसे पहले बीवियों को पता चलता है।
1: नहीं बता सकते यार,
0: मुझ पे भी भरोसा नहीं है।

0: उनकी बीवियों का बात करना जरूरी है।
1: 104.9 FM Phoenicia. Phoenicia. Not just a radio. Not just a radio. It's a mindset of entertainment. Come on.

0: सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

0: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
1: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
0: Renew?
1: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
0: What better way to celebrate than with something timeless?
1: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Tune sunte hi brand click kar gaya na. Just like that, when it comes to taxes, only one name pops up. AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
3: सुनो कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
4: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
3: कहाँ?
5: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
6: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस One vibe.
7: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
8: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
7: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग. अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स. जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
9: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
10: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
9: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
10: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
11: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स. पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज. ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस. किड्स एजेस 5 टू 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को. कॉल 972-666-1181. मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
16: मामू, देखो क्या हो गया.
17: ओ, क्या हो गया?
16: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया. और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
17: ओए, जर्मन का कमाल है.
16: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
17: ओए नहीं, ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा यार.
18: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव

0: It is now 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond, and bridal collections designed for every celebration, milestone, and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations, and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition craft. Style defined.
8: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
9: Calculating route, rerouting, rerouting.
8: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
9: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
8: क्यों?
9: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
8: अच्छा. तो सीधा वही ले चलो
10: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
9: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
11: ये तेरा घर ये मेरा घर
12: बाइंग और सेलिंग अ होम इजंट जस्ट अ ट्रांजैक्शन इट्स वन ऑफ लाइफ्स बिगेस्ट डिसीजंस एंड इट डिजर्व्स द राइट गाइडेंस
13: आई एम नवनीता योर ट्रस्टेड रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी
12: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
8: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
14: Aaja meri gaadi mein baith ja.
15: Baith jaun? पक्का कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था
8: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था
15: थोड़ा तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है
16: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
17: इन प्लेनो एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ कंपटीटर कोर्ट मैच भी कॉल 4692983870 पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
14: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
18: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया
19: लिया
18: कभी पॉलिसी समझ भी आया
19: नहीं आया
18: मुझे भी नहीं आया आएगा भी कैसे इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस वेदर इट्स होम ऑटो हेल्थ और बिजनेस एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू होटल्स मोटेल्स गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
15: Visit www.sanadainc.com today.
20: Dude, life mein kuch aisa karna hai, jisme main front page pe rahun.
21: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
20: Kaise?
21: Page 3 eatery?
20: No, not another restaurant again.
21: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pole, and the food. Crafted to suit every craving, every appetite.
20: Matlab great food, great drinks, and great company. Yani ki main.
1: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
0: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
19: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
0: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
19: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
0: सच में सब संभालेंगे?
19: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
22: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
23: थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस आवर ऑफ द प्रोग्राम। लेट्स गेट इट स्टार्टेड। This is the second hour of our program enduring the morning show. And thank you very much for letting me into your cars.

0: That track, ladies and gentlemen, was from a movie called Jab We Met. As we move forward with our program, I will have world news coming up for you. We normally do that on the half hour time, and plenty of more information and music all lined up for you right here on the airwaves of the Fun Asia Network.
1: अरे वो गोल वाला थोड़ा ट्रेडिशनल उसमें पोलकी भी है
2: अरे सारे तो सेम है
1: नहीं वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने ये ये ये देखो ये वाला
2: ओ हाँ ये तो अलग है
3: अलग तो होगा ही श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping, aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
4: जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना
3: लाइफ हो या हेल्थ कब क्या हो जाए पता नहीं 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज a week 8 a.m. to 8 p.m. walk in anytime 9191 Kaiser Way suite 205 Frisco
5: main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi warna dhule ko tata bye bye kar
6: do are madam Kareena wala lehenga aur aapka budget match karega kya
3: ab karega because Indian Attire Frisco summer sale is on stunning lehengas elegant sarees bridal jewelry men's and kids wear
7: wait itna sab aur price
3: up to 25% off on lehengas and bridal collection summer sale through the end of August Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
8: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी सीता की रसोई जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं प्रेम और सेवा परोसती थी और अब वही पवित्र स्वाद वही भाव श्री अयोध्या भवन में ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को
9: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक
8: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग ओपन डेली फ्रॉम 7 a.m. लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो श्री अयोध्या भवन वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी
10: और सुनाओ हाउस हंटिंग कैसी चल रही है
11: क्या बताऊं इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग
10: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम
12: प्लीज डोंट सी यू यूज place again. I'm tired of the same food.
13: Excuse me. It's called being loyal.
12: It's called being predictable.
13: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
12: And what's so special at Neon Cactus?
13: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
12: Not bad.
13: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
12: Okay, this I didn't expect from you.
13: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
3: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
14: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: It is 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
5: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
4: Renew?
5: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
4: What better way to celebrate than with something timeless?
5: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
6: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
7: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
6: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
7: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
6: ये क्या होता
7: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
8: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
9: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन। Available. Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG FinTax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG FinTax's advisory services.
10: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
11: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
10: कहाँ?
12: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
9: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, one vibe.
13: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
14: An accident changed my life overnight. The pain made even simple things hard, and taking care of my family felt impossible. I was stressed, scared, and didn't know where to turn. Luckily, I found Omar Khwaja and team. They listened, treated me with respect, and explained everything clearly. They stood by me every step of the way. If you have been injured in an accident, you don't have to face it alone. Call the law offices of Omar Khwaja today. Because of them, my family and I can finally move forward.
9: Call now to 833-GET-OMAR. The law offices of Omar Khwaja. Your rights, their responsibility.
15: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
16: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
15: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
16: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
9: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month. Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit Thrive.
0: livewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
17: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.
18: Let's start with this hour of the program. It's going to be the final hour, and thank you very much for staying with us. And if you are just joining us, please receive my very warm welcome to the show on this lovely Tuesday morning. It's the 16th of June today.

0: Whenever you hear any traffic updates on our airwaves or any accident reports, please remember they're brought to you by Attorney Omar Khwaja's office. And just in case you've been involved in a car, truck accident or a slip and fall incident, Attorney Omar Khwaja will fight your case and help you get that compensation that you deserve. Dealing with insurance companies is stressful, so you need Attorney Omar Khwaja, who's going to make sure that you are compensated and you don't pay anything until you win. For a free consultation, please call him 469-300-5046, 469-300-5046, or visit Attorney Omar, omar.com. We are now going to get you some more messages from our other sponsors as well as advertisers coming up for you, and we appreciate you using their products and services, and we'd like to thank them for their support of the Fun Asia Network. Continue listening. I'll have the world news coming up shortly.
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
0: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond and bridal collections designed for every celebration, milestone and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted, style defined.
3: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
4: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
3: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
4: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
3: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
4: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
3: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
5: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
6: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
7: यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस.
8: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं.
7: सच में एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
8: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू. उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है.
7: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं वापस भी आएंगे.
8: एग्जैक्टली. अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर.
7: नंबर बोल जल्दी.
8: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com.
9: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.

0: के सुपर हिट्स इज कमिंग योर वे
1: विशाल एंड शेखर
2: हियर वी गो
0: दैट्स राइट विशाल एंड शेखर लाइव गेट रेडी फॉर एन इलेक्ट्रिफाइंग इवनिंग फिल्ड विद सॉन्ग्स यू हैव डांस्ड टू सेलिब्रेटेड विद एंड फॉलन इन लव लिसनिंग टू संडे जुलाई 12th एट द करिस कलवेल सेंटर इन गार्लैंड टिकट्स ऑन सेल नाउ cashpatelproductions.com द सुपर हिट टूर विद विशाल एंड शेखर
3: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत

0: Me Too's coming on right after me. Continue listening. It's 10 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में. रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं. एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन. तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ. HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर.
4: I've been researching retirement planning.
5: Oh, really? Where?
4: Google, YouTube, a guy on TikTok.
5: Or you could just talk to WealthTactic.
4: What's the difference?
5: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
6: WealthTactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
7: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
8: Calculating route. Rerouting.
7: Arre, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
8: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
7: Kyun?
8: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials, authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
7: Achha. तो सीधा वही ले चलो.
4: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
8: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
9: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को.
10: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
9: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी.
4: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
11: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
4: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
11: वेट, व्हाट?
12: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
13: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
12: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
14: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
15: हाँ.
14: घर रिलोकेट करनी है?
15: हाँ.
14: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
15: हाँ भाई हाँ.
14: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
16: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
17: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
18: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
17: Kya matlab?
18: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
17: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
18: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
17: Ab to karna hi padega, madam.
19: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. दिस इज फनीशा रेडियो 104.9 FM. इसमें तो कोई शक ही नहीं है. एंड फॉर मेकिंग दैट चॉइस, थैंक यू वेरी मच. दिस इज गपशप गली विद मी टू. आप लोगों के साथ मंडे टू फ्राइडे आई एम हियर बिटवीन 10 to 12:30. एंड अ बिग शाउट आउट टू पारुल फॉर कवरिंग फॉर मी. मैं दो दिन बाहर थी, यानी कि फ्राइडे और मंडे को आई वॉज आउट. एंड हाउ ब्यूटिफुली शी मस्ट हैव एंटरटेन यू. ऑलवेज हैव एंजॉयड हर चॉइस ऑफ म्यूजिक एंड एवरीथिंग एल्स. So once again, ladies and gentlemen, a big shout out to Parul for making sure ki entertainment yahan par kabhi na ruke. Once again, you are tuned into Fanisha Radio 104.9 FM. Aaj ki tarikh hai 16th of June. अभी इस वक्त घड़ी मिला लीजिए, इट इज 12:10 बाय द स्टूडियो क्लॉक. और हम अदनान समी के एक और गाने के साथ वी आर गोइंग टू गो अहेड. सियाटल से वापस आ रही हूँ, सियाटल काइंड ऑफ वेदर के साथ वेलकम करने के लिए थैंक यू वेरी मच. बिकॉज आई वॉज ड्रेडिंग कि यार मैं इतने अच्छे मौसम में कुछ दिन इंजॉय किया और फिर वापस आने वाली हूँ टेक्सास की गर्मी में. लेकिन इट वॉजंट दैट हॉट वेन आई लैंडेड यस्टरडे.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: Tracks that put you on the right track.
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
3: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
4: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
5: Excuse me. It's called being loyal.
4: It's called being predictable.
5: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
4: And what's so special at Neon Cactus?
5: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
4: Not bad.
5: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
4: Okay, this I didn't expect from you.
5: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
6: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
7: उमर ख्वाजा।
8: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
9: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
10: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
9: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
10: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
11: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस, ओनली वन नेम पॉप्स अप, एजी फिनटैक्स। दिस टैक्स सीजन, फॉर अ स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग, फाइल स्मार्ट, फाइल इजी विद ग्रंथी टैक्स प्रोस, एन एसोसिएट ऑफ एजी फिनटैक्स। साथ ही साथ आपका रिफंड मैक्सिमाइज करना और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना, दैट्स आवर कमिटमेंट। तो इस बार डिले क्यों, कॉल 972-618-8555 और विजिट agfintax.com। ग्रंथी टैक्स प्रोस, पावर्ड बाय एजी फिनटैक्स। लर्न टुडे, प्रॉफिट टुमारो।
12: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
1: Tracks that put you on the right track.

यहाँ पे जो आपका और हमारा मिलना होता है, वी वांट टू मेक श्योर कि आपका वर्थ वाइल हो ये टाइम जो आप हमारे साथ स्पेंड करते हो. तो अगर आप रस्ते पे हो, यानी कि इफ यू आर ड्राइविंग, लेट्स टेल यू US 67 एट शाइलो नॉर्थ बाउंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, वहाँ पे लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट लेन, लेफ्ट मोस्ट लेन जो है वो क्लोज्ड है. एंड दिस इज फॉर यू टू रिमेंबर व्हेन यू आर ड्राइविंग देयर. दिस इज फॉर योर कन्वीनियंस दैट वी keep reporting that. And Shiloh 183 and at Story Road westbound, it is also state highway, actually state highway 183, just FYI ladies and gentlemen, want to make a correction there, kyunki Shiloh tak hi main atki reh gayi thi. Yes, it's 183, the highway that we are talking about, at Story Road westbound, वहाँ पर भी left shoulder, right shoulder and rightmost lane जो है, it is closed for all of you. So अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो make sure थोड़ा सा backup हो सकता है, लेकिन nothing major happening at that end. But yes, US 67 at Shiloh Road northbound, वहाँ पे major traffic backup है. So be aware of that. If you can take a detour, please do. And this traffic update was brought to you by Attorney Omar Khwaja's office. And once again, attorneyomar.com is the website. And the number to call is 469-300-5046. Weather update coming up for you next.

एंड लिसन लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज गपशप गली विथ मीठू. हमारी गपशप थोड़ी देर में जो शुरू बात होगी उसकी, और उसके लिए स्टूडियो का नंबर आप हैंडी रखें, 972-235-5555. टॉकिंग अबाउट यू नो ट्रैफिक, सिर्फ ये समझें कि आपके डे टू डे कम्यूट में नहीं बल्कि एयरलाइंस के भी यार इतने सारे बैकअप्स. माई गुडनेस, वेन आई वॉज ट्रैवलिंग टू सियाटल ऑन फ्राइडे, मेरी फ्लाइट जो है 7 घंटे लेट थी, और ये मेरा ट्रॉमा नहीं, ये कई लोग जो पैसेंजर्स जो हैं उनका ट्रॉमा है. फ्लाइट्स आजकल कुछ ज़्यादा ही लेट हो रही हैं, एंड उसके ऊपर लॉन्ग टार्मैक वेट्स जो यूएस में देखा जा रहा है, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सीवियर शॉर्टेज ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स अपेरेंटली. दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट. और इसके अलावा एयरपोर्ट रनवे कंजेशन जो चल रहा है उसके कारण इतने बैकअप्स हो जाते हैं कि इट इज सीरियसली अनकंफर्टेबल फॉर पैसेंजर्स टू रीच ऑन टाइम. यार कभी कभी कमिटमेंट सेम डे की होती है और उसके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो ये रनवे और एयर स्पेस कंजेशन जो है, ये इसके बारे में कुछ ये कंजेस्टन के बारे में कुछ ना इनको करना होगा. दे हैव टू डू समथिंग बिकॉज इट इज़ टेकिंग ए टोल ऑन द पैसेंजर्स एज वेल. चलो अगर सेम डे आपका कुछ इवेंट नहीं हुआ तो फिर ठीक है, लेकिन अगर हुआ या यू नो इतने लंबे आप वेट करने में आपकी जो वो थकान होती है, वो आपका एक हैंगओवर जो होता है व्हेन यू आर गोइंग टू सम प्लेस, वो एक एडिशनल एक आपके लिए एक वरी बन चुका है. So yes, people from this business, I don't know what can be done, what is causing it and what can be done are the two big questions that the passengers are asking, I guess. And I am one of them. Yaar, bahut painful tha, seriously. और वो डीले भी कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि यू आर एट द एयरपोर्ट एंड वो 1 घंटा डीले, फिर आधा घंटा डीले, करते करते फिर वो 1 घंटा होता है, फिर 2 घंटा, 3 घंटा, करते करते पीपल हैव वेटेड फॉर 24 आवर्स ऑल्सो यार.

You are tuned into Funisha Radio 104.9 FM. कुछ वेदर अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि मौसम फिर एक बार बदल रहा है. रेन चांसेस हमारे जो हैं साउथ साउथ ईस्ट ऑफ डैलस फोर्ट वर्थ रहने वाले हैं. बाकी नॉर्थ टेक्सस के लिए इट इज गोइंग टू ड्राई आउट टुडे. वैसे आज ना एयर क्वालिटी अलर्ट है इन डैलस, तो आपके जितने भी आउटडोर एक्टिविटीज हैं वो लिमिट कर लें, और अगर कारपूल कर सकते हैं तो कारपूल कर लें. आप बहुत बड़ा नेकी का काम करोगे अगर इफ़ यू डू दैट. Well, we all like to take our cars ताकि वो इंडिपेंडेंस बनी रहे, लेकिन थोड़ा ये सब भी अगर हम बताएं आपको तो there are people who take care of it. So to those and to those who are trying to form new habits, well, you might want to consider as well. और आज का high around 90 degrees के आसपास it's going to hold, लेकिन temperatures will bounce back very quickly by midweek, which is pretty much tomorrow, ladies and gentlemen, with high temperatures returning to the mid-90s, and that is for all of you to know. और हमारे एक और storm chances जो हैं Friday develop हो सकता है. Another cold front arrives and thunderstorm chances will extend into Saturday as well. तो आज का हाई कुछ 90 के आसपास और लो होगा 73 के आसपास, और वेंसडे को यानी कि कल 95 विल बी द हाई. इट विल बी सनी, पार्शली क्लाउडी एज वेल, ब्रीजी, हॉट, ह्यूमिड, अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग. द विंड गस्ट विल बी फ्रॉम 15 टू 25 माइल्स पर आवर, एंड दैट इज गुड लेडीज एंड जेंटलमैन. आई लाइक इट व्हेन इट इज हॉट, एंड अगर विंडी हो तो फिर थोड़ा सा कम हो जाता है उस पर, राइट? सो यस, that's your weather update for now, because I'm going to take you to the next track here. Another one song wonder artist Juice, aur unka ye viral gana.

0: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में बताना चाहती हूँ, जहाँ पर आपको आज़ादी मिलती है टू स्पेंड टाइम विद अ डॉक्टर, अनलाइक यू नो द 5-10 मिनट्स यूजुअली दैट यू आर गिवन, यहाँ पर आप तसल्ली से 30 मिनट्स तक डॉक्टर के साथ बात कर सकते हैं, बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम एंड दे अंडरस्टैंड दैट वेल, एंड बिकॉज इट पैशन हेल्थ यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर अ फैमिली.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
5: Mamu, देखो क्या हो गया.
6: ओ क्या हो गया?
5: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
6: ओए जर्मन का कमाल है.
5: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
6: ओए नहीं, ओए जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा यार.
7: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
8: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
9: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
10: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
11: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
12: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
13: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Funisia Radio.

There is so much to talk about क्योंकि ये है FIFA segment जो हम आपके लिए लेकर आते हैं. So there is plenty to talk about the games that you got to watch yesterday or you missed. We'll give you the updates on that. और आज कौन से matches होने वाले हैं वो भी मैं बताने वाली हूँ. The one at 8 p.m. being the most sought after for today that I will be talking about. लेकिन उसके पहले ना मैं आपको Passion Health Primary Care के बारे में पूरी details देना चाहती हूँ. Because they are now hiring experienced primary care doctors, endocrinologists, pediatricians, psychiatrists for full-time and part-time opportunities. So, agar aap passionate hai about patient care aur aapko lagta hai ki aap good service de sakte hain, good se bhi behtar service de sakte hain, to aap apna resume zarur bhejein to passionhealthphysicians@gmail.com ya unhe text karein 217-454-4639 pe with all the information that you can send to them. Visit passionhealthphysicians.com or call or text at 214-666-6259 if you are seeking, you know, additional information as a patient there. क्योंकि क्या होता है ना कि ये आपको as a patient वो care देते हैं जो एक sincere जो कि है passionate health care provider वो ही दे सकते हैं क्योंकि वो 5-10 minute के लिए नहीं पूरे आधे घंटे का appointment आपका doctor के साथ होता है. So that they are able to understand what's going on with your health. तो वो पूरा अच्छे से आराम से प्यार से और तसल्ली से आपको टाइम देते हैं. दिस इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर एंड ऑफ कोर्स द जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द फिजिशियंस लिसनिंग टू अस राइट नाउ इन वेरियस फील्ड्स दैट दे हैव आस्क्ड फॉर दैट आई जस्ट स्पोक अबाउट. सो ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन इज विथ मी. इफ यू मिस्ड आउट ऑन द नंबर दैट आई शेयर और द जीमेल एड्रेस यू कैन डेफिनेटली गिव मी अ कॉल एट 972-235-5555. FIFA update coming up for you next. This is Gupshup Gali with me too. Oh, yeah.

0: must know the system, but it's love for money.
1: And the love for FIFA is what makes for our segment between 10:45 to 11. History is being made every single minute in FIFA World Cup 2026. And if you missed yesterday's action, to bas main kis liye hoon, main aapko wo update dene wali hoon. Aur wo fir jaakar aap YouTube pe na kuch jo kamal ke saves hain wo dekhne wale hain. Dekhenge zarur aur dekhiyega zarur kyunki bahut viral ho rahe hain. And it is about Cape Verde, jo ki na jeet kar bhi jeete hain. And it is about the massive shocker I'm talking about, jo kal ki match ki baat ho rahi hai yahan pe, Spain versus Cape Verde. Kisi ne sapne mein bhi nahi socha tha ki ye match aise turn out hoga. Spain was attacking left, right and center, but standing in front of them like an absolute concrete wall was Cape Verde's goalkeeper, aur inka naam hai Vuzina. Vuzina ne 7 saves ki हैं फॉर हिज कंट्री. केप वर्दे पहली बार केप वर्दे खेल रही है और क्या परफॉर्मेंस था. मतलब सीरियसली ही वॉज पुलिंग ऑफ सेव्स दैट लिटरली डिफाइड फिजिक्स, स्टॉपिंग पेनल्टीज, डाइविंग इनटू टॉप कॉर्नर्स एंड सिंगल हैंडेडली फ्रस्ट्रेटिंग द स्पैनिश जायंट्स. स्पेन

0: स्ट्राइकर्स हैरान थे और स्टेडियम में बैठे फैंस भी पागल हो रहे थे. लेकिन सीरियसली व्हाट दे हैव मैनेज टू डू इज पुल इट फॉर अ ड्रॉ. और ये जो कि वर्ल्ड डे और स्पेन का मैच था, इट वॉज अ ड्रॉ एंड दैट इज एन अनबिलीवेबल फैक्ट कंसिडरिंग कि स्पेन जो है ये फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट टीम्स एंड डेफिनेटली वाइंग फॉर दैट कप देयर. और उनका ड्रॉ होना विथ केप वर्दे वॉज अ शॉकर फॉर एवरीबॉडी. सो येस, डू चेक आउट वोजीनी और इनका जो वोजीनी का जो वोजीना सॉरी वोजीना इज़ हिज नेम एंड वोजीना का आप जाकर सारे वो जो सेव्स है ना वो आपको जाकर देखना ही पड़ेगा. द वेटरन कीपर वॉज एवरीवेयर एज अ स्पेनिश टीम एंड इट्स फैन बिकेम इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड. और नॉट इवन द सेकेंड हाफ एंट्रेंस ऑफ यू नो लमीन यमाल के आने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया. एंड वोजीना सेड ही वॉज overcome by emotions thinking about his loved ones who were unable to see his finest performance. His grandparents, jinhone unhe bada kiya kuch saal pehle, they passed away, and his mother has been unable to gather the money in time to secure a visa to enter the US to watch his son play. But what an amazing beginning for Cape Verde, ladies and gentlemen.
1: Demon in the house, coming with the new funk. Call it what you want, man. I call it the funk, the deep funk era. Yeah, check it out.

0: सूरत के बजाय सीरत की बात करने वाली हो यहाँ पर DFW. लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी दैट इज कम्प्लीटली विनिंग हार्ट्स अक्रॉस द ग्लोब एंड इट हैपेंड राइट हियर इन आर बैकयार्ड एट द डैलस स्टेडियम आफ्टर द हाई वोल्टेज जापान मैच. व्हाइल एवरीवन एल्स वाज बिजी यू नो रशिंग टू द पार्किंग लॉट्स, जापानीज ऑडियंस स्टेड बैक और उन्होंने क्या किया आप जानते ही हैं शायद. दे पुल्ड आउट ट्रैश बैग्स एंड लिटरली क्लीन्ड अप द एंटायर स्टेडियम रो बाय रो. हमारे टेक्सास के लोग भी हैरान रह गए ये देखकर कि ये कितने कमिटेड है. एंड इट डजंट मैटर इफ दे विन और लूज ऑन द पिच, जापानीज फैंस ऑलवेज विन द ट्रॉफी फॉर प्योर क्लास एंड रिस्पेक्ट, इसमें तो कोई शक नहीं है. यहां तक कि जापानीज प्लेयर्स भी जो हैं उन्होंने अपना लॉकर रूम जिस तरह से छोड़ा है ना, वो उसका भी पिक्चर वायरल हो रहा है. यू शुड गो एंड चेक इट आउट. यार कमाल की चीज है, सीखने वाली बात है ये तो यार जापान के लोगों से. एंड आई होप सीखे कुछ हम आज. और हमने जो बात की इट इज अबाउट फीफा. लेडीज एंड जेंटलमैन, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज ग्रुप स्टेज मैचेस में अर्जेंटीना वर्सेस अल्जीरिया एट 8 PM, इराक वर्सेस नॉर्वे एट 5 PM टुडे एंड फ्रांस वर्सेस सेनेगल एट 2 PM टुडे. वील कम बैक विद मोर अपडेट टुमारो. लेडीज एंड जेंटलमैन, कीप लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond and bridal collections designed for every celebration, milestone and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted, style defined.
4: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
5: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
6: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
8: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
8: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
11: इन प्लेनो.
10: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
14: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
15: वेट, इतना सब और प्राइस?
14: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
16: मैं.
17: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
18: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
17: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
19: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
11: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
16: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
11: That magic removal हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड solutions विद 100% privacy.
16: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
19: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
20: Tracks that put you on the right track.

दिस इज गपशप गली विथ मी टू, जहां पर मैं आपके साथ कुछ गपशप करने वाली हूं। एक आने वाली फिल्म है कॉकटेल 2 और इसी के साथ जुड़ा जो हमारा सवाल होगा, हमारी बातचीत होगी, और इसी के चलते यू हैव टू गिव मी अ कॉल इफ यू थिंक यू कनेक्ट विद द टॉपिक, ठीक है ना। 972-235-5555 हमारे स्टूडियो का नंबर है, और फिलहाल कॉकटेल का मूड सेट करने वाली हूं विथ द फर्स्ट इन द फ्रेंचाइज। लेट्स प्ले दैट धमाकेदार गाना, एंड प्रायर टू दैट वेरी quickly I also want to make sure that I tell you about this special person। agar aap khareedne ka ya bechne ka ya relocate karne ka soch rahe hain dfw area mein, to fir navneeta khemka with keller williams, she is ready to guide you। now keller williams realty ke bare mein bhi aap jante ho, aur aap navneeta ke bare mein bhi jante ho, our very own navneeta, she's ready to help you, that personalized service that you can get from her, after all you know her well, honest communication is what she vouches for and you know that, aur genuine care jo hai unki taraf se jo aapko 100% milega wo main vouch kar sakti hu aapke liye, aur unki taraf se jo kuch bhi hai she will do the best to get you your dream house, aur yaad rakhiyega har ghar ke sath ek kahani judi hoti hai aur aapki kahani जो है वो क्रिएट करने वाली है आपके साथ, आपके आपके यू नो डिमांड्स को ध्यान रखते हुए, आपके जो वांट्स हैं उनको ध्यान रखते हुए, व्हाट यू डोंट वांट आल्सो दैट इज़ आल्सो समथिंग इम्पॉर्टेंट, राइट। वो सारी कुछ चीज़ें वो आपके साथ खुद वो जो एक कहानी है वो लिखेंगी फॉर द होम दैट यू आर ड्रीमिंग फॉर, ऑल राइट। सो गेट इन टच विथ नवनीता 347-449-4242 इज़ दैट नंबर, एंड नवनीता खेमका का ये नंबर है, और आप ज़रूर उनके साथ कनेक्ट करें, एंड यू विल सी हाउ इजी एंड हाउ ब्यूटिफुल द जर्नी इज अहेड ऑफ यू इन फाइंडिंग जस्ट द राइट होम फॉर यू एंड योर फैमिली।

A cocktail of Preetam's music. That is what we are serving you, ladies and gentlemen. This is cocktail 2 that I'm going to talk about. Because 19th of June ko ye film jo hai release hone wali hai, and it is important for me to talk about that. Because kya hai na ki dosti ye ek aisi cheez hai ki jahan par jab aise jo relationship wali baat aati hai na to bada confusion hota hai. Boss, really bahut confusion hota hai. Confusion unke liye nahi jo ki rishte mein hai. You know, best friends falling in love and the friend circle that they belong to, it can get really tricky. I promise you that. I have been in that situation and I know how difficult it can get for the people who are part of the group. So, mujhe aapse ye sawal puchna hai. Cocktail 2, ladies and gentlemen, pehle to iske baare mein bata do. Shahid Kapoor, Kriti Sanon and also Rashmika Mandanna in this one. And they are going to play Friends. Aur ye Friends mein jab wo pyar wali baat aati hai, wo jo beautiful si baat aati hai and how beautifully tough it can get, wo sari baatein is film Cocktail 2 May, which is releasing on 19th of this month, yani ki is Friday ko release ho rahi hai, distributed by Fun Asia Films, ladies and gentlemen, that you need to remember. To ji haan, do remember to check out the show timings and everything else, kyunki hame pata hai ki jab bhi Homi Achaniya ki koi film aati hai na, to log jaate hain yaar, kyunki we love the cinematography, we love the, how they deal the relationship aspect, the modern aspect of the relationship, how they deal with it, it is always fun to watch, and that is what you're going to get in Cocktail 2, which is at the theatres this Friday, ladies and gentlemen. So, चलिए मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ और पूछने वाली हूँ कि क्या आप उस सिचुएशन में पड़े हैं जहाँ पर आपके फ्रेंड सर्कल में दो लोगों के बीच में प्यार हो जाए और प्यार में फिर वो टकरार या ब्रेकअप अगर हो तो फिर आप किसकी साइड लो, वो लॉयल्टी टेस्ट देना जो होता है वो बड़ा मुश्किल होता है. सो ये टेल मी इफ यू हैव बीन इन दैट स्टिकी सिचुएशन, आई वॉन्ट टू हियर एंड द क्रेजीएस्ट ऑफ द स्टोरीज दैट वी गेट द बेटर, क्योंकि आप में से किसी एक को मिलेगा वो दो टिकट्स फॉर कॉकटेल 2 एंड साथ ही साल एक कॉकटेल एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम द फ्लेवर लाउंज. तो जी हाँ, अपने बिल्कुल वियर्ड फनी आपके क्रेजी स्टोरीज के साथ हमें कॉल करें एट 9722355555. वी वुड लव टू हियर योर कॉकटेल ऑफ रिलेशनशिप दैट यू हैड अमंग्स फ्रेंड्स. सो हियर वी गो, द लाइंस आर ओपन. And the music is on. Preetam ka music. It is definitely blockbuster for Cocktail 2.

And ladies and gentlemen, I was talking to my winner. We were talking about that sticky situation that you might be in jab baat aati hai ki friend circle mein jab do log pyar mein pad jate hain aur uske baad tab tak to sab kuch theek hai, drama is good, and that beautiful drama of love and everything, they taking their time off and being away from the group and all of that, chalo phir bhi manage kar sakte ho. Lekin agar usme agar takrar ho us relationship mein ya agar mushkil ho tab जब ब्रेकअप होता है उसके बाद ग्रुप भी ना एक सॉर्ट ऑफ ब्रेकअप हो जाता है ग्रुप में कि आप किसका साइड लो और ये सारी बातें ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं. तो ये कॉकटेल फिल्म के साथ मैंने सोचा कि ये सवाल आप लोगों से पूछा जाए. आई वॉज वेरी वेरी क्यूरियस टू फाइंड आउट योर इनपुट्स हियर एंड थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर कॉलिंग मी इन इत्रा और सुभद्रा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल. सॉरी शुभा शी कॉल्ड मी इन एंड Shubha is the winner for the two cocktail tickets to the movie Cocktail 2. Cocktail ka ye jawab dene ke liye, thank you. And it was an interesting story jo actually opens up the perspective about how chaotic the situation can get when two people in the same friend circle fall in love. You are listening to Funisha Radio 104.9 FM Flavor Lounge ki taraf se bhi jo unko mila hai wo sara kuch deke main wapas aati hu. In the meantime, what I want you all to do is enjoy this next track from the film Cocktail 2, which is releasing this Friday for all of you.

0: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
1: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
0: Renew?
1: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
0: What better way to celebrate than with something timeless?
1: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Hey, tumne kabhi insurance liya?
3: Liya.
2: Kabhi policy samajh bhi aaya?
3: Nahi aaya.
2: Mujhe bhi nahi aaya. Aayega bhi kaise? Insurance cheez hi aisi hai. Isliye smart log choose karte hain Sinara Inc. and Humera Jumani Insurance. Whether it's home, auto, health or business, every policy is customized around you. Hotels, motels, gas stations and small businesses, they help protect what you worked hard for. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sinara Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
4: Visit www.sanadainc.com today.
5: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
6: Har khushi mein aapke saath Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
7: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
8: Are sun, ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye bahut lucky hai.
9: Maa, reels pe sab lucky hi hote hain. Generic predictions sabko thodi help karti hain. To phir अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
11: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
11: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
11: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
13: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
14: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
15: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
15: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
14: सच में सब संभाल लेंगे?
15: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
6: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
16: Tracks that put you on the right track.

सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना, मैं जानना चाहती हूँ यार अपने सपनों के बारे में, क्योंकि अक्सर तो मुझे याद ही नहीं रहते हैं। इक्के दुक्के होते हैं जो याद रह जाते हैं, कुछ जो कि आप फिर अपने फैमिली के साथ भी शेयर करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव समथिंग वियर्ड गोइंग ऑन इन देम, ईदर वियर्ड या फिर एक नाइटमेयर के तौर पर आपको जो याद रह जाते हैं, और कभी कभी शायद कुछ खुशगवार बातें भी जो आपके सपने में आते हैं वो आपको याद रहते हैं, राइट? सो टेल मी अबाउट द ड्रीम दैट यू रिमेंबर, द लास्ट ड्रीम दैट यू हैव seen, वो क्या है जो कि आपको याद है, ये जानना चाहती हूँ। वो जो लास्ट ड्रीम आपने देखा होगा जो आपको याद रह गया है, जरूर बताइएगा। इफ इट इज अ वियर्ड स्टोरी, इफ इट इज अ फनी स्टोरी, ओके हैवी स्टोरी, वी डोंट वॉन्ट टू गेट देयर। ये बिल्कुल लाइट बिल्कुल शो होता है और हम चाहते हैं कि माहौल भी बिल्कुल लाइट बना रहे, तो कुछ फनी क्योटिक एनीथिंग दैट यू रिमेंबर ऑफ योर ड्रीम, प्लीज कॉल मी 9722355555। ये ऐसे गाना सुनते सुनते मुझे याद आया कि भाई ऐसे सपने, क्योंकि मैंने सोचा था कि एक सपना जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मैंने कल ही देखा, एंड आई थॉट आई रिमेंबर्ड एंड आई हैव कंप्लीटली फॉरगॉटन अबाउट दैट नाउ। वो क्या है ड्रीम्स के बारे में जो कुछ याद रह जाती हैं और कुछ नहीं याद रहती? बस फिलहाल तो मैं जो पूछ रही हूं आपसे वो है कि आपको अपना कोई भी एक सपना जो फनी रहा हो, क्रेजी स्टोरी रहा हो, कुछ हीरो जिसमें रहे हों आप, या फिर कोई चलिए एग्जाम नाइटमेयर भी अगर हो तो जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ, क्योंकि वो नाइटमेयर कितने सालों तक हम सबको कॉलेज फिनिश करने के बाद, पढ़ाई खत्म करने के बाद आते रहे, जहां पे आपको लगा है कि यार वो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, या टाइम खत्म हो रहा है और पूरे जवाब आपने सवालों के दिए नहीं एग्जाम में। ऑल ऑफ दिस थिंग्स कीप हैपनिंग स्टिल, राइट? ये क्यों होते हैं? कोई सपना जो आपको याद रह गया, एंड दिस इज फॉर नियॉन कैक्टस लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि प्रिडिक्टेबल चीजें तो हम पूछते ही नहीं है, हम अनप्रिडिक्टेबल चीजें पूछते हैं, और यहां पर भी आपको स्वाद बिल्कुल प्रिडिक्टेबल के बिल्कुल बाहर मिलेगा, यानी कि इट्स अ फ्यूजन ऑफ मेक्सिकन एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस दैट यू विल गेट देयर। फ्रेश इंग्रीडियंट्स हैं, ज़बीहा हलाल ऑप्शंस हैं, और वेजिटेरियंस के लिए बहुत सारी चॉइसेस भी हैं, तो जरूर याद रखिएगा इन बोल्ड फ्लेवर्स को चखने के लिए और वाइब को फील करने के लिए आपको जाना है Neon Cactus, young, colorful, modern and full of energy this place is. This is Neon Cactus और आप लोगों के लिए ये बता दूं कि curated cocktails हैं and refreshing mocktails हैं, happy hours Monday to Friday है, special deals every single day, a perfect hangout spot for all of you. So do remember this place, Neon Cactus, और आप में से किसी एक को मिलने वाला है आपके weirdest सपना शेयर करने के लिए, यू विल विन दैट। हम सपने का गाना लगाने वाले हैं टू क्रिएट दैट माहौल फॉर यू। नाइन सेवन टू टू थ्री फाइव फाइव फाइव फाइव फाइव नंबर इन द स्टूडियो।

Ooh la la, we have gotten our winner for Neon Cactus. It is Mr. Rajesh, aur inko mila hai Neon Cactus ke taraf se $20 gift card dine-in, and he shared his dream, and he always dreams about chasing a train. Aur pata chalta hai ki when he was 18, he actually missed a train. All of his luggage and everything was loaded in the compartment, the seat that he was at. Aur wo kuch cafeteria ko laga ki thoda sa waqt hai, to cafeteria से कुछ लेने के लिए गए, एंड इन द मीन टाइम बाय द टाइम ही एक्चुअली टर्न्ड अराउंड टू बो द ट्रेन, ही सीज दैट कि वो ट्रेन तो ऑलरेडी चलना शुरू हो गई है, एंड ही ट्राइड रियली हार्ड बट ही कुडंट, एंड सिंस देन इट हैज स्टेड विथ हिम कि जब भी कोई सपना आता है तो ही इज ऑलवेज चेजिंग a train, and I can so understand that. And I thought ki unka jo ye chase hai thoda sa hum ease out karte hain with this giveaway, and this is from Neon Cactus that he has won from. And sapno ke baad sachi mein kya hi ki jaye, kyunki बड़े अजीबो गरीब सपने आते हैं, और वो अजीबो गरीब सपने ही हमें याद रह जाते हैं, लेकिन क्योंकि डे टू डे के सपने तो हमें कभी याद ही नहीं रहते, नहीं?

यू आर लिस्निंग टू फनी जो रेडियो 104.9 FM और गपशप गली विथ मीठू में आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ अबाउट मनोज बाजपेयी जस्ट फॉर अ मोमेंट हियर. उनकी फिल्म गवर्नर आ चुकी है एंड एज यूजुअल स्टनिंग परफॉर्मेंस. उनकी परफॉर्मेंस की तो कभी कोई मतलब लोचा नहीं होता है. इफ इट इज अबाउट द फिल्म यू कैन से बट नॉट द कैरेक्टर दैट ही पोर्ट्रेज राइट. क्योंकि आप सोच के देखें सत्या ये जो फिल्म थी सत्या का जो लीड कैरेक्टर था जो टिट्यूलर रोल था वो जी चक्रवर्ती ने किया था बट मनोज वाजपेयी इस पोर्ट्रेयल ऑफ द गैंगस्टर भीकू मात्रे वो एक ना एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है अपने आप में ऑफ अ सपोर्टिंग परफॉर्मेंस कंप्लीटली ओवरशैडोइंग द टिट्यूलर कैरेक्टर एंड दैट्स भीकू मात्रे'स कैरेक्टर पोर्ट्रेड बाय मनोज वाजपेयी. इसी बात पे मैंने सोचा मनोज वाजपेयी की इस फिल्म गवर्नर से हम आपके लिए गाना लेकर आते हैं विच इज कॉल्ड जगमग जगमग दैट इज कमिंग अप फॉर यू नेक्स्ट. लेकिन जगमग की अगर बात हो तो फिर गोल्ड डायमंड ज्वेलरी की तो बात आनी ही चाहिए और पीएमजी ज्वेल्स का नाम याद रहना ही चाहिए आपको. दे आर नाउ कमिंग टू फ्रिस्को ब्रिंगिंग ओवर 60 इयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सेलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप. आप स्टनिंग गोल्ड या डायमंड या ब्राइडल कलेक्शन अगर आप ढूंढ रहे हैं कुछ अलग डिजाइन ढूंढ रहे हैं तो ये जवाब है आपके लिए पीएमजी ज्वेलर्स के पास. एंड यू कैन ज्वाइन द ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेशन विच इज स्टार्टिंग ऑन June 20th और आप एक्सक्लूसिव ऑफर्स जो उनके पास होंगे इस ग्रैंड ओपनिंग के लिए वो आप अवेल कर सकते हो. एक्साइटिंग फेस्टिविटीज रहेंगे और आपके पास चांस रहेगा टू विन ब्यूटिफुल

0: Absolute magician when it comes to singing and composing. That's Hemant Kumar, और उनकी birth anniversary थी, तो ये मौका तो हम जाने नहीं दे सकते थे, right? और इसीलिए ये गाना very specially हमने आपके लिए ही play किया. He was one of the incredibly rare artists to achieve absolute legendary status as both a playback singer and music director. और मतलब massively popular थे ना सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लेकिन बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में भी. एक और हसरत की बात करना चाहती हूँ जिनका आज बर्थडे है, और ये भी उस लेजेंडरी ट्रैक पर ही हैं. इनकी इनकी आज 54th बर्थडे है, एंड इट इज़ इम्तियाज़ अली दैट आई वांट टू टॉक अबाउट. व्हाट इज स्टोरी टेलर दैट ही इज़. वो चाहे राइटिंग हो और उनकी डायरेक्शन हो, वो एक अलग ही कुछ अपना एक एस्पेक्ट और एक पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं. चाहे वो सोचा ना था, जो उनकी पहली फिल्म थी जो चली नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब वी मेट एंड देन लव आजकल, रॉक स्टार, हाईवे, तमाशा, अमर सिंह चमकीला, इन सब फिल्म्स के साथ, एंड द रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म मैं वापस आऊंगा, उसके साथ उन्होंने ये तो क्लियर कर दिया है,
1: कुड़ी पसंद तो नहीं आ गई,
0: कि ही इज एन इनक्रेडिबल स्टोरी टेलर. हैप्पी बर्थडे टू इम्तियाज अली.

मैं वापस आऊंगा वाइडली प्रेज फॉर दिस इमोशनल एस्पेक्ट दैट इम्तियाज अली ऑलवेज रिवाइव्स इन हिज फिल्म्स. और ये जो एक पार्टीशन के ऊपर था, इट कोई जियो पोलिटिकल मामला लेकर नहीं आ रहा है यहाँ पर, बट एक जो इमोशनल क्लोजर्स नहीं मिल पाए कई फैमिलीज को, उसको लेकर कुछ बातचीत मैंने देखी नहीं है, बट आई वॉन्ट टू वॉच इट क्योंकि इतने अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं. अपेरेंटली जो थिएटर से निकल रहे हैं उनकी आँखें लाल हैं और मतलब रो धो के सबका हाल बेहाल है. अपेरेंटली इतनी इमोशनल फिल्म थी. सो इट इज़ अ फिल्म दैट यू वॉन्ट टू यू नो गो एंड वॉच एट द थिएटर्स. ऐसी फिल्में ना बार बार नहीं आती. और नसरुद्दीन शाह की मास्टर क्लास एक्टिंग के लिए बड़ी सारी तारीफें हो रही है. ही प्ले दिस एल्डरली मैन बैटलिंग dementia and lingering nostalgia for his lost home in Sargodha. तो ये जो है एक अपने आप में एक विजुअल पोएम ऑन लव एंड मेमोरी जो इम्तियाज अली लेकर आए हैं. मैं वापस आऊंगा एंड दिस वॉज इन सेलिब्रेशन ऑफ हिज बर्थडे टूडे. इट इज इम्तियाज अलीज बर्थडे. विशिंग हिम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यू नो आइडियाज एंड वॉट शुड आई से द अर्ज एंड द पैशन टू कीप मेकिंग फिल्म्स. ये विश करना चाहते हैं क्योंकि वो बदले में हमें सर्व कर रहा है, राइट? That is what we want to wish him. कि फिल्में बनाते रहें. अच्छा, एक और हस्ती की बात करने वाली हूँ और इसके लिए मुझे कुछ म्यूजिक लगाना पड़ेगा. सो लेट्स प्ले दैट म्यूजिक एंड प्रायर टू दैट वेरी क्विकली टॉक अबाउट सीमा मेहता लॉ ऑफिसेज. इफ यू आर ऑन एन H1B F1 L1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेशन वीजा एंड प्लानिंग योर पाथ टू US परमानेंट रेसिडेंसी, तो आपके लिए लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता का दरवाजा हमेशा खुला है. मेक श्योर दैट यू गेट इन टच विद देम. अटर्नी सीमा मेहता और उनकी जो एक्सपीरियंस टीम है, ये स्पेशलाइज करती है इमिग्रेशन लॉ में. और ये जो है बेसिकली इंक्लूड करता है EB-5, इन्वेस्टर्स वीज़ा, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज, पर्म लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप. अगर आपको EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम के बारे में भी अगर ज़्यादा कुछ जानना हो और फॉर एनीथिंग एल्स दैट यू वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन, उन्हें ईमेल ज़रूर करें info@seemamehtalawfirm.com पे. दैट्स info@seemamehtalawfirm.com. इट इज़ फ्रॉम द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता दैट वी वॉन्टेड टू सेंड आउट दिस इन्वाइट to all of you seeking help. All right, if your feet aren't automatically tapping right now, तो आप अपना पल्स चेक करें क्योंकि ये जो है ये अपने आप में एक बाढ़ लेकर आता है नॉस्टैल्जिया का. बप्पी लाहिरी का म्यूजिक एंड मिथुन चक्रवर्ती at the helm of it, and it is his birthday today, 76th birthday. How can we forget this song?

बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग लिविंग लेजेंड हियर, तो बनता है कि एक और गाना हम आप लोगों के लिए प्ले करें राइट हियर ऑन फनीशर रेडियो. इट्स मिथुन चक्रवर्ती's 76th बर्थडे, और जो किंग थे, अल्टीमेट किंग ऑफ द डांस फ्लोर, द ओरिजिनल स्ट्रीट फाइटर दैट ही वॉज एंड अ ट्रू बॉलीवुड फिनोमिनन. तो चलिए एक और मिथुन चक्रवर्ती का गाना. जाने से पहले आई वुड लव टू प्ले फॉर ऑल ऑफ यू. दिस इज गपशप गली विथ मीठू.

0: that's all the time I have with you all. Mulaqat hogi kal theek 10 baje. This is RG Me Too signing off for the day.
1: Heere moti main na chahu.
2: Achha, manifest karne se pehle thoda dobara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
3: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
4: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
5: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
6: Filmon ka maza, action, drama aur romance mein. Aur khane ka maza, har flavor ke zabardast performance mein.
2: Kabhi chatpata sa twist, kabhi tikha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
6: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
2: Papri chaat se malpua rabri tak. Har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, har bhai super hit.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
11: Abhi sun, ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye bahut lucky hai.
12: Maa, reels pe sab lucky hi hote hain. Generic predictions sabko thodi help karti hain. To phir agar real clarity chahiye to personalized guidance lo.
13: Guidance ki baat ho to ek hi naam hai, Pandit Ram Tulsi. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
14: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
15: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
16: हाँ.
15: घर रिलोकेट करनी है?
16: हाँ.
15: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
16: हाँ भाई हाँ.
15: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
17: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
18: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
19: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
18: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
19: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
18: सच में सब संभालेंगे?
19: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

अ वेरी गुड आफ्टरनून माय देसी पीपल, कैसे हैं आप लोग? बहुत सारी बातें करेंगे हम आज. मैं हूं आरजे सिमी और आप सुन रहे हैं फनेशर रेडियो 104.9 एफएम और शो का नाम है आफ्टरनून अड्डा. आज का जो शो है ना, वो रंगों भरा होने वाला है, बिल्कुल कलरफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन गानों के बारे में जिनके टाइटल या लिरिक्स में रंगों का जादू छुपा हुआ है. रेड हो या पिंक, ब्लू हो या येल्लो, बॉलीवुड ने हर रंग को एक इमोशन दिया हुआ है. कुछ रंग प्यार दिखाते हैं, कुछ दोस्ती, कुछ मस्ती और कुछ दिल टूटने का दर्द. मैं आपको एक कलर, एक रंग दूंगी और आपको उस कलर से रिलेटेड मुझे एक सॉन्ग बताना है कॉल करके. सो लेट्स स्टार्ट विथ रेड, यानी कि लाल कलर. और आपको लाल कलर से मिलता जुलता जो अगर सॉन्ग याद आ रहा है ना, वो मुझे बता सकते हैं बाय कॉलिंग मी एट 972-235-5555 पे.

आज का शो काफी कलरफुल चल रहा है। मैंने आपको दिया था एक कलर विच वॉज रेड और आपको बताना था उससे रिलेटेड कोई सॉन्ग, और बहुत सारे कॉल्स आए। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। रजिया ने बताया लाल दुपट्टा, फरीदा और स्वाति को याद आया लाल परी, अरुण और राम ने बताया लाल छिड़ी मैदान खड़ी और ये लाल रंग मुझे कब छोड़ेगा। वैसे बॉलीवुड में लाल रंग का मतलब सिर्फ कलर नहीं, इमोशन है। लाल दुपट्टा हो या लाल इश्क, सब कुछ थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक और रोमांटिक लगता है। इसी बात पे लिसन टू लालिश।

जैसा कि आज का शो चल रहा है बहुत ही रंगीन, बहुत ही कलरफुल, और जो लास्ट मैंने आपको कलर बताया था वो था गुलाबी यानी कि पिंक। और मुझे 7 से 8 कॉल्स आ चुके हैं और सबने एक ही सॉन्ग बताया, विच इज गुलाबी आंखें। तो इट इज हाई टाइम कि गुलाबी आंखें प्ले की जाए ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ रजिया, श्वेता, राम, तरल एंड सुरैया जी। आई होप यू लाइक द सॉन्ग।

आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम स्टूडियो. क्लॉक में टाइम हो चुका है 1:09 और आप आफ्टरनून अड्डा एंजॉय कर रहे हैं और आरजे सिम्मी के साथ यानी मेरे साथ. आज का शो बहुत ही रंगीन कलरफुल चल रहा है. मैं आपको दे रही हूँ एक कलर एक रंग और आपको बताना है उस कलर से रिलेटेड एक सॉन्ग. और जो नेक्स्ट कलर है वो है नीला यानी कि ब्लू. ब्लू कलर है स्काई का, समंदर का, ड्रीम्स का, याद का. थोड़ा ब्लूज हो जाए तो लोनलीनेस भी हो जाती है, लेकिन एंडलेस ड्रीम्स का कलर भी ब्लू है. सो व्हाट्स योर सॉन्ग फॉर द कलर ब्लू? लेट मी नो बाय कॉलिंग मी एट 9722355555.

हाँ जी, रंग तो सारे हैं, लेकिन अभी हमने आपसे पूछा था नीले रंग के बारे में, ब्लू कलर के बारे में. एंड थैंक यू सो मच नीलिमा, वीरेश, राम, श्री राम एंड तरल फॉर कॉलिंग एंड लेटिंग मी नो द सॉन्ग फॉर द कलर ब्लू. बहुत सारे लोगों ने बताया नीले नीले अंबर पे और नीला आसमान सो गया. एंड देन वी हैव अनदर वन लाइन्ड अप एज द नेक्स्ट सॉन्ग. आई होप यू एंजॉय दिस शेड ऑफ ब्लू.

अब इस कलरफुल सेगमेंट को यही खत्म करते हैं विद द लास्ट सॉन्ग ऑफ द कलर. वी विल गो विथ एंड वी विल एंड विथ द कलर ब्लैक. सॉन्ग का नाम है काला चश्मा. मुझे बहुत मजा आया इस सेगमेंट में. आई होप आप सबको भी मजा आया होगा. लेकिन कहीं जाइएगा मत, बिकॉज इस सॉन्ग के बाद आ रहा है हमारा गिव अवे राउंड. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू फनेशर रेडियो 104.9 FM.

अब वक्त आ गया है कि मैं आपसे पूछूं गिव अवे का क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया था इस सॉन्ग पे जाने से पहले, अगर आपको इसका जवाब पता है तो आपको मुझे कॉल करके बताना है और आप जीत सकते हैं चंडीगढ़ बाइट से कड़ाही पनीर या फिर कड़ाही चिकन खाने का मौका। तो बस एक सिंपल सा रूल है, एक टर्म्स और कंडीशन है कि आपको तभी पार्टिसिपेट करना है अगर आपने फन एशिया में लास्ट वन मंथ में ये गिव अवे जो है किसी भी और शो पे नहीं जीता हो, क्योंकि हमें सबको मौका देना चाहिए, सबको चंडीगढ़ बाइट का अच्छा अच्छा खाना खाने का मौका मिलना चाहिए। सवाल ये है कि इम्तियाज अली, जिनका कि आज बर्थडे है, आपको बताना है कि उनकी तीन मूवीज इम्तियाज अली की, और मुझे फोन करके बाय 9972235555 पे कॉल कीजिए और बताइए मुझे इम्तियाज अली के तीन मूवीज, और आप जीत सकते हैं चंडीगढ़ बाइट से कड़ाही पनीर या कड़ाही चिकन।

इसके साथ हम अपने गिव अवे राउंड को खत्म करते हैं। हमने आपसे पूछा था इम्तियाज अली के 3 मूवी के नाम, बहुत सारे लोगों ने बहुत सही जवाब दिया, बहुत जल्दी जल्दी हमें कॉल्स आए। और आज के जो गिव अवे राउंड की विनर हैं वो है नीलिमा। कॉन्ग्रेचुलेशंस नीलिमा, आपको मिलता है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से फ्री कड़ाही पनीर या कड़ाही चिकन। चंडीगढ़ बाइट्स में अमेजिंग जो है ऑफर चल रहा है, स्पेशल थाली है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेस जो हर लंच में रोटेट होता रहता है डेली के डेली। ये लोकेटेड है मैकडॉर्मट ड्राइव इन एलन, तो आप जरूर जाएं चंडीगढ़ बाइट्स के अमेजिंग बाइट्स एंजॉय करें। और आप उनका वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं विच इज chandigarhbites.com और बाकी सारे डिटेल्स के लिए। और अगर इम्तियाज अली की बात कर रहे हैं और जब भी मेट की बात ना हो, जब भी मेट का गाना ना बजे, तब तो नाइंसाफी हो जाएगी। लेट्स हियर फ्रॉम जॉब वी मेट, तुमसे ही।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
1: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
3: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
1: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
3: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
1: ये क्या होता
3: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
4: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
2: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
5: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
6: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
5: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
6: वेट, व्हाट?
2: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
7: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
2: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
13: अरे कहना क्या चाहते हो?
14: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू। कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट।
15: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
5: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
1: नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियाँ हमारे लिए नहीं होती।
2: दोस्ती, प्यार और फिर वही इमोशनल केओस। 2012 की सुपरहिट कॉकटेल के बाद एक नया ट्विस्ट, एक नई कहानी लेकर होमी अजजानिया इज बैक विद कॉकटेल 2, स्टारिंग शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदना। गेट रेडी एज द परफेक्ट कॉकटेल मिक्सचर विद कॉकटेल 2, रिलीजिंग ऑन द 19th ऑफ जून एट थिएटर नियर यू।
16: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

एक बारी क्या, हर बारी मैं ही आऊंगी, मैं यानी कि आरजे सिमी 12:30 से 2:30 बजे तक मैं ही आऊंगी स्टूडियो में। वक्त हो गया है 1:38 और आप सुन रहे हैं आफ्टरनून अड्डा। ये वीक ना थोड़ा स्पेशल है, स्पेशली फॉर मेन, क्योंकि ये वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मेन्स मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक। हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन सच है क्या? सच तो ये है कि मर्द को भी दर्द होता है, उन्हें भी स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, लोनलीनेस भी फील होती है, बस कई बार वो बोल नहीं पाते। एक मौका है अपने आसपास के फादर्स, हस्बैंड्स, ब्रदर्स, फ्रेंड्स और कलीग्स को समझने का। तो चलिए आज उन मेन को अप्रिशिएट करते हैं जो साइलेंटली अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है निभाए जा रहे हैं। और आप भी अपने आसपास इस बात का ध्यान रखें, उनको एक थैंक यू बोल दीजिए।

अगर आपका भी दिल चाहता है कि आपको आपका एक सपनों का घर हो जो रियलिटी या हकीकत में बदल जाए, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए ड्रीम होम मॉर्टगेज से। वो हेल्प करते आ रहे हैं फैमिलीज को अक्रॉस द कंट्री उनके होम ओनरशिप के साथ, और वो पर्सनलाइज्ड मॉर्टगेज सॉल्यूशन ऑफर करते हैं और बहुत ही स्मूथ और स्ट्रेस फ्री प्रोसेस होता है इनका। सिंस 1998 ये सारी फैमिलीज को हेल्प करते आए हैं और इनके पास ऑल दी 50 स्टेट्स ऑफ यूएस जो है लाइसेंस अवेलेबल है। इनकी एक्सपीरियंस टीम कमिटेड है कि आपको एक राइट लोन ऑप्शन मिले, जैसे कि आपकी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग उसको टेलर किया जाए। अगर आपको इनके साथ बातें करनी है तो आप कॉल कीजिए एट 972-245-5626 या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज ड्रीम होम मॉर्टगेज.com।

आपका भी दिल ऐसे ही डूब जाएगा, खुश हो जाएगा जब वो देखेगा पीएमजे ज्वेल्स के जो है डायमंड और गोल्ड कलेक्शन। और तो और इतनी एक्साइटिंग न्यूज है कि जो पीएमजे ज्वेल्स है ना, अब वो फ्रिस्को में आ रहे हैं, ब्रिंगिंग ओवर 60 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्टमैनशिप। और पीएमजे ज्वेल्स की जब बात होती है तो मुझे उनका जो एसोसिएशन है विद महेश बाबू और उनकी बेटी सितारा एकदम याद आ जाता है, और उनके बोर्ड और होर्डिंग्स एकदम अमेजिंग, उनके डायमंड कलेक्शन वगैरह जो है काफी इंटरेस्टिंग है, आप भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। उनका ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेशन है ऑन June 20th, जहां आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव ऑफर, एक्साइटिंग फेस्टिविटीज और चांस जीतने का ब्यूटीफुल ज्वेलरी पीसेस। तो आप जरूर जाएं, फ्रिस्को मेन स्ट्रीट पे लोकेटेड है। June 20th इज द डेट गाइज।

अब आपके लिए लेके आई हूँ एक्साइटिंग न्यूज़, जो 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर केयर करते आ रहे हैं कम्युनिटी की, अब वो एक नए नाम के साथ, एक अनदर लोकेशन के साथ आ चुके हैं फ्रिस्को में, विच इज नोन एज लेनॉक्सी मेडिकल. दिस इज फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. और लेनॉक्सी मेडिकल में आपको सब कुछ मिलेगा, प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स और हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज भी. ये सब कुछ ऑल अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे. और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है रिलेटेड टू लेनॉक्सी मेडिकल कि ये ना 7 days a week ऑपरेट कर रहे हैं, 8 AM से लेके 8 PM तक. तो अगर आपके पास वीकडे में टाइम नहीं है तो आप वीकेंड पे चले जाइए, और वॉक इन है बिल्कुल, कोई भी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है.

0: दोस्तों, अगर आप या आपका कोई जानने वाला, जान पहचान वाला किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में फंस जाता है, किसी स्लिप या फॉल इंसिडेंट में फंस जाता है, तो अटॉर्नी उमर ख्वाजा को जरूर याद करें, क्योंकि वो आपका केस अच्छे से फाइट करेंगे और आपको इंश्योर करेंगे कि आपका कंपनसेशन जो है मिल जाए। वो भी आपको पे तब तक नहीं करना है जब तक कि आप केस जीत नहीं जाते। अगर आपको फ्री कंसल्टेशन लेना है तो कॉल कीजिए 4693005046, या फिर आप उनके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, विच इज अटॉर्नी omar.com.
1: ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ ആണല്ലോ. ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
3: लिया.
2: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
3: नहीं आया.
2: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
4: Visit www.sanadainc.com today.
5: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1, mix veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutton. Rich, bold, no compromises.
6: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai, new on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao, flavor hum sambhal lenge.
7: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya. Kahin pe kala jadoo, dhuaan dhuaan. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
8: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव.
9: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
10: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
11: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
13: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
14: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
13: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
15: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
16: इन प्लेनो.
15: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो.
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
17: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
18: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
9: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
18: ना सब और प्राइस
9: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
19: मैं हीरो.
9: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG FinTax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG FinTax's advisory services.
20: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Bal Vihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

मैं अभी अपने लिसनर्स को कितना चाहती हूँ ये शायद आप भी सोच नहीं सकते। आप सुन रहे हैं फनेशर रेडियो 104.9 एफएम विद मी यानी कि आरजे सिमी ऑन आवर फेवरेट शो विच इज आफ्टरनून अड्डा। अभी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आई हूँ फ्रॉम तनिष्क यूएसए, क्योंकि तनिष्क लेके आया है द फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज, जहां आप अपने ओल्ड गोल्ड को एक्सचेंज कर सकते हैं और आपको मिलेगा $5 एक्स्ट्रा पर ग्राम ऑन एक्सचेंज्ड गोल्ड विद डायमंड परचेसेस। और 9 कैरेट के ऊपर के ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पे 0% डिडक्शन, कोई भी डिडक्शन नहीं है बिल्कुल। तो आप जाइए और अपना ओल्ड गोल्ड को जो है कुछ नया, कुछ ब्यूटीफुल और कुछ ताज़ा टाइमलेस डायमंड परचेसेस में कन्वर्ट कीजिए ओनली एट तनिष्क यूएसए। और एक सॉन्ग बजाने जा रही हूँ बहुत अमेजिंग सा, और इसके बाद आपसे पूछूंगी एक क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट गिव अवे राउंड, सो स्टे ट्यून्ड।

मैं भी ऐसे ही बहके बहके रिडल्स लेके आ चुकी हूँ अपने गिव अवे राउंड के लिए, और अगर आपको इसका जवाब पता है तो आपको मुझे कॉल करके बताना है और आप जीत सकते हैं फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। सवाल ये है, बेसिकली एक रिडल है कि मैं पैदा बड़ा होता हूँ लेकिन मरते मरते छोटा हो जाता हूँ, तो मैं कौन हूँ? और आपको एक हिंट दे देती हूँ कि ये जो है ना, ये एक नॉन लिविंग बींग है। सो आपको मुझे कॉल करना है एट 972-235-555 पे और बताना है इसका सही जवाब।

वो लड़की जिसने अभी अभी गिव अवे का सवाल पूछा था आपसे, वो लड़की यही है, जी है आरजे सिमी। और आज के गिव अवे राउंड के विजेता हमें मिल चुके हैं, इट्स महेश। सो कांग्रेचुलेशंस महेश, आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। हमने आपसे पूछा था कि वो कौन सी चीज है जो पैदा तो बड़ा होता है लेकिन मरते मरते छोटा हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि कैंडल, पेंसिल, इरेजर, हम सब जवाबों को सही मान रहे हैं। और लेकिन ये तो थी वैसी चीजें जो कि यूज करने पे खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यूज करने पे, बांटने पे और बढ़ती है, जैसे कि नॉलेज यानी ज्ञान या फिर प्यार। और इस प्यार के साथ अगर आप फन पिज्जा किचन में जाएं अपने फूड लव के लिए, अपने प्यार के लिए, तो आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ एक ना एक स्लाइस आपका जरूर इंतजार कर रहा है। दोनों ही ऑप्शंस हैं, वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन है तो अचारी पनीर पिज्जा जरूर ट्राई करें, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो तंदूरी चिकन पिज्जा इज अ राइट चॉइस फॉर यू। और मसाले जैसे भी चाहिए, बोल्ड चाहिए, बैलेंस चाहिए, माइल्ड चाहिए, सब कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पे। और भी डिटेल्स के लिए आप विजिट करें funpizzakitchen.com। और अच्छे गानों के लिए कीप लिसनिंग टू फन एशिया नेटवर्क 104.9 FM।

और इसी के साथ ये सेगमेंट भी खत्म हो गया। जी हाँ, मैं थी आरजे सिमी, शो था आफ्टरनून अड्डा। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि दिस शो वॉज ब्रॉट टू यू बाई एजी फिनटेक्स, जो कि है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन यूएस। ये ऑफर करते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद द अनटैप्ड पोटेंशियल, आपके लिए भी, आपके बिजनेस के लिए भी। ये काफी ट्रस्टेड है, इफिशियंट है और आपको बिल्कुल फ्यूचर रेडी बना देते हैं। अगर आपको उनसे कोई कंसल्टेशन लेना है तो आप कॉल कर सकते हैं 4699429888 या फिर आप विजिट करें उनका वेबसाइट विच इज agfintechs.com। एंड जाते जाते मैं आपको कॉकटेल 2 की माशुका के साथ छोड़ती जा रही हूँ। सो एंजॉय द सॉन्ग एंड हैव अ गुड डे।

welcome, namaskar, khushamadid, Funisha Radio 104.9 FM par, main Madhulika karti hoon aap sabhi ka hardik swagat. Covering in for Kiran, main dungi aapka saath sham 5 baje tak. Studio ka number rakhe yaad 972-235-5555. A big shout out to Simi for a wonderful show that she brought to us today afternoon. And yes, coming back to my show, well, आज का हमारा जो ये शो है आई एम यू नो द फर्स्ट सेगमेंट आई एम डेडिकेटिंग इट टू मेंस मेंटल हेल्थ. जी हाँ, ये हफ्ता, ये पूरा वीक इज मेंस मेंटल हेल्थ वीक एंड आई बिलीव इट्स जस्ट अ रिमाइंडर दैट मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ ओवरऑल हेल्थ. हम लोग हमेशा फिजिकल हेल्थ का सोचते हैं बट मेंटल हेल्थ आई बिलीव इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. वी शुड मेक स्पेस फॉर कॉन्वर्सेशंस अबाउट स्ट्रेस, अबाउट एंजाइटी, अबाउट ग्रीफ एंड इमोशनल वेलबींग. यू नो, आई बिलीव कि हम सबको बातें करने का, अपने इमोशंस शेयर करने का हक है. सो ऐसा नहीं है कि आप विमेन हैं तो भी बातें कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं एंड मैन हैव टू ऑल होल्ड इट अप. नो, दैट्स नॉट ट्रू. चेकिंग इन ऑन अ फ्रेंड कैन मेक अ बिगर डिफरेंस then you realize. So guys, let's be aware of this and share the burden and, you know, celebrate each other.

different. You know, सबसे अलग. मेरी बात सुनते हो. You really listen. काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा. 1,000 rupees, please.

0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
2: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है।
3: प्लान या होप?
2: मतलब है
3: प्लान मतलब स्ट्रेटजी, होप मतलब देखते हैं क्या होता है।
2: ओके, तो मेरा वाला होप है।
3: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं।
2: क्यों?
3: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है।
4: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com।
5: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
6: अरे कहना क्या चाहते हो?
7: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर .com। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट।
8: मामू देखो क्या हो गया।
9: ओ, क्या हो गया?
8: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
9: ओए, जर्मन का कमाल है।
8: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
9: ओए, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं, और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623, कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
10: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
11: पापा, फादर्स डे पे क्या गिफ्ट चाहिए?
12: बेटा है तू मेरा, तुम लोग साथ बैठ जाओ, यही काफी है।
8: और वही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। All that your father need is good food, great company and unforgettable moments. This Father's Day weekend from June 19th to 21st, take your dad to the Flavor Lounge Frisco. Indulge in refined flavors, elegant dining, and moments that truly matter. Plus, every father gets one free cocktail or mocktail. The Flavor Lounge on Preston Road near Malabar Golden Diamond Complex. Call 469-712-3591 and reserve your table today.
13: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
14: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
13: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
14: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
4: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month. Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
15: Calculating route. Rerouting.
16: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
15: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
16: क्यों?
15: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
16: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
17: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
15: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
18: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
19: Hey, dost, mazedar lagte hain. क्योंकि कहानियां हमारे लिए नहीं होती।
4: दोस्ती, प्यार और फिर वही इमोशनल केओस। 2012 की सुपरहिट कॉकटेल के बाद एक नया ट्विस्ट, एक नई कहानी लेकर होमी अजजानिया इज बैक विद कॉकटेल 2, स्टारिंग शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदना। गेट रेडी एज द परफेक्ट कॉकटेल मिक्सचर विद कॉकटेल 2, रिलीजिंग ऑन द 19th ऑफ जून एट थिएटर नियर यू।
0: Come on.
20: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।

Well, that was taken from the movie Kapoor and Sons. अच्छा, अब एक giveaway आ गया है आपके लिए, and this giveaway is coming from Red Hot Chili Pepper. So giveaway की dish है, या तो आप जीतेंगे dry chili chicken, या फिर chili baby corn, और या फिर Dallas का best butter chicken, RSCP's chicken makhan wala, right? So you can pick up the giveaway, वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी location से आप pick कर सकते हैं, लेकिन पहले सुने आप ये सवाल. सवाल ये है, क्योंकि इस segment में हम men's health celebrate कर रहे हैं, या men's mental health के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप मुझे कॉल करके बताएं कोई भी एक ऐसा बॉलीवुड का या हिंदी पॉप एल्बम का या कोक स्टूडियो का कोई एक ऐसा गाना विच गिव्स एडवाइस ऑन हाउ यू शुड डील विद स्ट्रेस. सो टेल मी एक्चुअली व्हाई वन आई वुड से टेल मी टू सॉन्ग्स विच एडवाइस यू नो पीपल टू डील विद स्ट्रेस इन अ पर्टिकुलर वे. तो मज़ेदार क्वेश्चन है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम इंटरेस्टिंग आंसर्स, राइट? इतने सारे गाने हैं, कई गानों में कई तरह की एडवाइस हैं, तो आप मुझे कॉल करके बताएं कोई भी दो ऐसे गाने जिनकी एडवाइस आप सजेस्ट करेंगे लोगों को कि भाई आप अपने स्ट्रेस को इस तरह से डील करें.

0: क्यों कहना, वेल दैट वाज, अगर मैं कहूँ टेकन फ्रॉम लक्ष्य, लेकिन आपको कहना है क्योंकि मैंने पूछा था आपसे सवाल. सवाल ये था कि अगर आपको ये रेड हॉट चिली पेपर का गिव अवे चाहिए तो मुझे कॉल करके बताएं कोई भी ऐसे दो गाने जो एडवाइस कर रहे हों लोगों को क्या करना चाहिए जब वो स्ट्रेस में हो. सो वी डू हैव अ लिस्टनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हाय, तो दो गाने जो मुझे बहुत पसंद है, पहला तो है रेवा दो, गुजराती सॉन्ग, इट मींस लेट इट बी, कि जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में रेवा दो. और दूसरा एक है पसूरी करके, वो कोक स्टूडियो पाकिस्तानी सॉन्ग है. तो उसका भी जो स्टोरी है कि भूल गई मजबूरी नू, दुनिया दी पसूरी नू, साथ तेरा है बतेरा. बेसिकली कि कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, तुम्हारा साथ है. जैसे आपने कहा कि जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में, अपनी फैमिली, अपनी पार्टनर के साथ डिस्कस करके आप सॉल्व कर सकते हैं. तो दोनों गाने ही बहुत
0: मतलब.
1: My name is Shweta.
0: All right, Shweta. So thank you so much because the so two songs you suggested, maine soche bhi nahi the. So amazing. Thank you for that. And thank you so much for participating. And yes, it's a beautiful advice. I believe it's not just for men, it's for women too. Bhaiya, aapas mein share karein, baat karein, doston se baat karein, family members se baat karein. Don't just sulk alone. That's what I would recommend to everyone out there. So thank you so much for participating. You have won this giveaway. I'm going to take you off air and take some details from you while I'm going to play both the songs that you have suggested, because both of them have such a beautiful advice. Thank you so much for calling.
1: Thank you. Thank you. Take care. Bye-bye.

गाना तो हम नहीं कहेंगे कि गाएं, लेकिन सजेस्ट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अब से लेके शाम 5 बजे तक हम सुनेंगे बॉलीवुड के या हिंदी पॉप एल्बम्स के या कोक स्टूडियो के वो गाने जिन गानों की लिरिक्स में दिन रात शाम दोपहर इस तरह के कुछ वर्ड्स आते हों. सो अगर ऐसे कोई गाने याद आ रहे हैं जिनमें कि दिन या रात या शाम या दोपहर इस तरह के वर्ड्स हैं, तो डेफिनेटली गिव मी अ कॉल 972-235-5555. दिस इज़ माधुलिका, मैं दूंगी आपका साथ शाम 5 बजे तक. एंड ऑफ कोर्स इफ देयर इज़ अ डेडिकेशन, इफ देयर इज़ अ सेलिब्रेशन, इफ देयर इज़ अ शाउट आउट, द स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 972-235-5555. एंड बिफोर आई प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग जो कि पीकू का टाइटल ट्रैक है, उसके पहले आपको मैं तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट के बारे में बताना चाहूँगी. दे आर लोकेटेड इन गार्लैंड एंड आर कंसिडर्ड द न्यू फ्लेवर डेस्टिनेशन फॉर ऑल स्पाइस लवर्स, राइट? तो आपको अगर सिजलिंग तंदूरी प्लेटर चाहिए, रिच करीज या कोई भी आपका नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स जो कि एकदम होम स्टाइल पंच के साथ मिले, या स्मोकी तंदूरी कबाब्स, वेलवेटी करीज या गरम गरम नान, देन यू नीड टू हेड टू तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट. इट्स लोकेटेड इन गार्लैंड. And yes, we are listening to songs जिनकी lyrics में दिन रात शाम दोपहर इस तरह के कुछ words हों.

0: Such lovely,
1: Oh,
0: lovely
1: thank you.
0: numbers, and you make our day. Yeah, thank you so much.
1: Thank you,
0: And I
1: thank
0: want to
1: you.
0: listen, request for a song that's Sham Dhale, Khidki Tale, Tum Seeti Bajana Chhod Do.
1: कौन बजाता है ये सीटी, मुझे भी बताएं जरा, हम भी आगे देखेंगे. फॉर श्योर. ऑल्दो ये बहुत ही रेट्रो गाना है, बट स्टिल आई एम गोना प्ले दिस वन सिंस हमारा थीम ऐसे
0: I
1: ही
0: love
1: है.
0: that song. That's my mom's
1: या
0: favorite
1: ओ
0: song.
1: रियली वंडरफुल. सो आई एम
0: Yeah,
1: गोना
0: my mom
1: प्ले
0: used to
1: दैट
0: listen to
1: सॉन्ग
0: all old numbers.
1: फॉर श्योर. सो आई एम
0: Yeah.
1: गोना प्ले दैट फॉर यू.
0: Yeah.
1: थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन.
0: Thank you, dear.
1: टेक केयर.
0: Bye.
1: बाय बाय.
0: Abu.

मैं तो कहूंगी कि बिना कुछ लिए आना जाना जरूर छोड़ दें, जब कहीं जाएं किसी के लिए खास तो कुछ लेकर जाएं। और मैं सजेस्ट कर सकती हूँ आपको तनिष्क। जी हाँ, तनिष्क प्रेजेंट्स द फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज योर ओल्ड गोल्ड एंड गेट $5 एक्स्ट्रा पर ग्राम ऑन एक्सचेंज गोल्ड विद डायमंड परचेजेस। जी हाँ, और 9 कैरेट, जी हाँ 9 कैरेट से ऊपर के ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर 0% डिडक्शन। सो टर्न योर ओल्ड गोल्ड इन टू समथिंग न्यू, ब्यूटिफुल एंड टाइमलेस, ओनली एट तनिष्क USA। वेल, टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Shubh din aa pahuncha hai. एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में. PMJ Jewels.
7: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
8: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
9: Excuse me. It's called being loyal.
8: It's called being predictable.
9: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
8: And what's so special at Neon Cactus?
9: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
8: Not bad.
9: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
8: Okay, this I didn't expect from you.
9: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
10: सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना जस्ट लाइक दैट When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So, is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
11: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट
12: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर लॉसिन ट्रैवल फॉर नियरली 30 इयर्स लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स वेकेशन पैकेजेस क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
13: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
16: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
18: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
19: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
20: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।

tuned in to 104.9 FM Fun Asia Radio. This is Madhulika. I'll be with you till 5 p.m. Studio number 972-235-5555. अगले एक घंटे हम सुनेंगे वो गाने जिन गानों की लिरिक्स में दिन रात सुबह शाम दोपहर सुबह इस तरह के वर्ड्स लिरिक्स में हो. तो अगर आ रहे हैं ऐसे कोई गाने याद या कोई डेडिकेशन है सेलिब्रेशन है किसी कोई शाउट आउट है देन द स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 972-235-5555.

Well, that was taken from the movie Mujhse Shaadi Karogi. And अगला गाना प्ले करूं, विच इज अ डेडिकेशन. उसके पहले आपको मैं इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ के बारे में बताऊंगी, बिकॉज उन्हीं से एक गिव अवे क्वेश्चन भी है. आपको मिलेगा एक ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ इफ यू विल आंसर द क्वेश्चन दैट आई एम गोना आस्क यू, राइट? वेल, इंडिया बाजार जो है इज अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑथेंटिक इंडियन ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, स्पाइसेस, स्नैक्स एंड ऑल योर डेली देसी एसेंशियल्स. इंडिया बाजार इज लोकेटेड एट 5152 क्वाड्रेंट वे इन फोर्ट वर्थ फॉर पीपल लिविंग इन फोर्ट वर्थ, केलर, हर्स्ट एंड हैसले. अब आता है आपके लिए सवाल. तो सवाल ये है कि अगर आपने मेरे इस सवाल का जवाब दिया तो आप एक ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ जीत जाएंगे. सो स्टूडियो का नंबर 972-235-5555. सवाल बड़ा आसान सा है. आपको मुझे कॉकटेल मूवी एंड कॉकटेल टू मूवी के स्टार कास्ट बताने हैं. सो जो प्रोमिनेंट स्टार्स हैं ऑफ कॉकटेल एंड कॉकटेल टू, यू हैव टू कॉल मी एंड टेल मी द नेम्स. एंड एज आई सेड, द नेक्स्ट सॉन्ग इज अ डेडिकेशन. इट्स अ शाउट आउट टू अनवी. अनवी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे एंड अमे हैड कॉल्ड इन एंड रिक्वेस्टेड दिस नेक्स्ट सॉन्ग दैट आई एम गोना प्ले. सो विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे डियर अनवी. Lots of love, best wishes from your brother Amey, and of course from your parents, of course from me, Madhulika, and the entire Fun Asia team. Enjoy.

ऑल राइट, वेल दैट वॉज तुम ही दिन चढ़े तुम ही दिन ढले तुम ही हो बंधु, टेकन फ्रॉम कॉकटेल. एंड कॉकटेल की अगर बात कर ही रहे हैं तो आपको बताऊं कि कॉकटेल 2 आ रही है आपके लिए. जी हाँ, कॉकटेल 2 मूवी इज कमिंग अप एंड उसकी डिटेल्स भी आपको बताऊंगी. जी हाँ, आफ्टर द सुपर हिट सक्सेस ऑफ 2012's कॉकटेल, द ड्रामा रोमांस एंड फ्रेंडशिप आर बैक विद अ फ्रेश ट्विस्ट. जी हाँ, यू नीड टू गेट रेडी फॉर कॉकटेल 2 एज इट्स रिलीजिंग ऑन थिएटर्स ऑन 19th of June. जी हाँ, इस फ्राइडे को, स्टारिंग शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदाना. अ न्यू स्टोरी, न्यू इमोशंस एंड अ ब्रांड न्यू कॉकटेल ऑफ लव, फ्रेंडशिप एंड हार्ट ब्रेक अवेट्स यू. वेल, डोंट मिस कॉकटेल 2. It's going to be in theaters June 19th onwards. And well, the next song, well, that is Ek Ladki Ko Dekha To Kaisa Laga. Bhai, ye matlab koi seekhe to inse seekhe ki kaisa laga jab Ek Ladki Ko Dekha.

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
3: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
2: Renew?
3: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
2: What better way to celebrate than with something timeless?
3: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
4: Kya matlab?
5: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
5: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: Ghar ki aadmi aayi tujhe jaise.
8: Aati hai yaar. बहुत आती है इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ
9: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं विजिट चंडीगढ़ वाले जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट
8: सच में बिल्कुल घर जैसा
9: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी बटर चिकन एंड मेनी मोर लोकेटेड इन अर्विंग देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट चंडीगढ़ वाले टेस्ट दैट फील्स लाइक होम
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
9: बैठ जाऊं पक्का कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था
10: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था
9: थोड़ा तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है
11: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
12: इन प्लेनो
11: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ कंपटीटर कोर्ट मैच भी कॉल 469-298-3870 पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
13: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
14: Hey! तुमने कभी इंश्योरेंस लिया
15: लिया
14: कभी पॉलिसी समझ भी आया
15: नहीं आया
14: मुझे भी नहीं आया आएगा भी कैसे इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस वेदर इट्स होम ऑटो हेल्थ और बिजनेस एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू होटल्स मोटेल्स गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर नो कंफ्यूजन नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772 That's 972-863-772
9: Visit www.senadainc.com today
16: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी
17: अरे मैडम करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या
13: अब करेगा बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन स्टनिंग लहंगास एलिगेंट साड़ीज ब्राइडल ज्वेलरी मेंस एंड किड्स वेयर
18: Now, sir, or price?
13: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
19: यार बॉस ने फिर से डांट दिया ट्रैफिक अलग
7: और ऊपर से स्ट्रेस।
12: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
7: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
12: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
7: ये क्या होता?
12: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
9: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
13: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
15: नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियां हमारे लिए नहीं होती।
13: दोस्ती, प्यार और फिर वही इमोशनल केओस। 2012 की सुपरहिट कॉकटेल के बाद एक नया ट्विस्ट, एक नई कहानी लेकर होमी अजानिया इज बैक विद कॉकटेल 2, स्टारिंग शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदना। गेट रेडी एज द परफेक्ट कॉकटेल मिक्सचर विद कॉकटेल 2, रिलीजिंग ऑन द 19th ऑफ जून एट थिएटर नियर यू।
19: Of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
20: You're listening to 104.9 FM, Fun Asia Radio. This is Madhulika. Main dungi aapka saath sham 5 baje tak. And well, I would like to welcome you all to the URA Debt Relief segment. Today we have the pleasure of having URA Debt Relief Organization representative, Mr. Aman. He's going to tell us about URA Debt Relief programs. Hi Aman, how are you doing today? And you're live on air now.
21: Hello. Financial सुनने वाले सभी listeners को URA और
20: Yes, Aman, go ahead, please. Aman, can you hear us? All right, looks like there is a problem. I will get him back on air in just a bit. Well, tab tak aap sune ye agla gana, which is taken from the movie Kameene.

0: All right. Well, as I said, there was some issue with the call. We do have Aman. He's going to tell us about URA debt relief programs. Hi, Mr. Aman. How are you doing today, sir?
1: ऑल गुड पानेशिया सुनने वाले सभी लिसनर्स को उरा और अमन की तरफ से एक बार फिर से नमस्कार। मौसम तो गर्मा गर्म है, लेकिन अगर आपकी जेब भी गर्म रहे, नोटों से भरी रहे, तो यही हमारी तमन्ना है। तो उस तमन्ना को पूरा करने के लिए थोड़ा सा ब्रेन स्ट्रॉमिंग करते हैं कि क्रेडिट कार्ड की जो मिनिमम पेमेंट आप भरते जा रहे हैं, भर रहे हैं, उसे क्रेडिट कार्ड नहीं उतर रहा, नहीं उतरेगा। क्यों? क्योंकि हाई इंटरेस्ट है क्रेडिट कार्ड का। 40%, 28%, 22% इंटरेस्ट है, तो मिनिमम पेमेंट से तो कभी नहीं उतरेगा। इवन आप इमेजिन करें, कंपेयर करें, गाड़ी की जो पेमेंट है वो 60 महीने का लोन होता है, तो 5 साल में कार का लोन उतरता है, वो भी 6% में। तो अगर 40% क्रेडिट कार्ड का कर्जा होगा तो क्या वो 5 साल में उतर जाएगा? नहीं, वो 30 साल लगेंगे। मॉर्गेज जितना क्रेडिट कार्ड का कर्जा होता है, तो मॉर्गेज जितना अगर आप 30 साल तक क्रेडिट कार्ड का कर्जा उतारेंगे तो जिंदगी जिएंगे कब? तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। प्रभावित होकर आपको ये बता दें कि क्रेडिट कार्ड का अगर कर्जा आधे से ज्यादा माफ करवाना है तो उरा को कॉल कीजिए। उरा आपके सारे के सारे क्रेडिट कार्ड की आधी किस्त माफ करवा देगा और आधे की इंटरेस्ट फ्री पेमेंट बनवा देगा। क्रेडिट कार्ड कोई भी हो सकता है, आपका बिजनेस का, पर्सनल या स्टोर का, आपका, आपकी वाइफ का, बच्चों का, किसी का भी क्रेडिट कार्ड, ज्वाइंट क्रेडिट कार्ड, उन सब की एक पेमेंट बन जाएगी और आधा माफ हो जाएगा। न सिर्फ क्रेडिट कार्ड बल्कि आपके पर्सनल लोन्स, पर्सनल लोन मतलब आपकी जो अनसिक्योर्ड डेट है, जो आपने रेनोवेशन के लिए, किसी शादी के लिए या यूरोप ट्रिप के लिए लिया था, उन को भी हम आधा माफ करवा सकते हैं। तीसरा सिनेरियो है कि आपकी गाड़ी का लोन है आपके ऊपर, यानी कि जो गाड़ी रीपोजेस्ट हो गई, जो आपके पास है उसका तो कुछ नहीं कर सकते, एंजॉय कीजिए, ड्राइव सेफ। लेकिन अगर आपकी गाड़ी रीपोजेस्ट हो गई है और अगर टोटल हो गई है, उन लोन्स को नेगोशिएट करके आधा माफ करवाया जा सकता है। तो सिंपली आप अगली मिनिमम पेमेंट करने से पहले, क्योंकि आज मिड ऑफ द मंथ तो हो ही गया है, तो अगर अगला मिनिमम पेमेंट करने से पहले, अगर शेड्यूल करने से पहले आप पूरा को कॉल कर लें तो आधा कर्जा माफ माफ माफ। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 1-888-888-9914, या फिर आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। मेरा डायरेक्ट नंबर है 9167763555, 9167763555, और हमारी वेबसाइट है www.ura.org। अगर नंबर ना भी लिख पाए हों तो इतना अच्छा प्रोग्राम है, इतनी सुरीली आवाज का एंकर है, तो आप कॉल कीजिए, अच्छे से गाने की फरमाइश कीजिए और साथ ही साथ अमन का या उरा का नंबर ले लीजिए, लेकिन मिनिमम पेमेंट करने से पहले कॉल कीजिए, आधा कर्जा माफ।
0: Awesome. Well, thank you so much, Aman, for all this information. And yes, I'll repeat that number once again. That's 916-776-3555. Or you can visit the website. That's ura.org.
1: Thank you.
0: Thank you. Have a wonderful day.
1: You too. Bye.
0: Thanks. Bye.
2: The Dill of Dallas. Heart to Heart. Fun Asia.

That was taken from धुरंधर. एंड यस, होता है ना, हर गाना आपको कुछ यादें याद करा देता है, या कुछ मूड हो तो कोई पर्टिकुलर गाना याद आता है. तो वर्ल्ड म्यूजिक डे आ रहा है 21 जून को, तो आप गूगल फॉर्म भरें, नॉमिनेट करें आप अपने फेवरेट सॉन्ग्स अक्रॉस डिफरेंट म्यूजिक कैटेगरीज, एंड देन फनीशिया विल सेलेक्ट द मोस्ट लव्ड सॉन्ग्स फ्रॉम ईच कैटेगरी. एंड जून 21 को, वर्ल्ड म्यूजिक डे वाले दिन, हमारे हर एक शोज जो हैं वो डेडिकेट होंगे एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए. एंड द एक्साइटिंग पार्ट आता है आपका अब, क्योंकि द लिसनर्स हु सॉन्ग चॉइसेस मेक इट टू आर फाइनल प्लेलिस्ट्स, राइट, द मोस्ट विल विन एक्साइटिंग प्राइजेस. विजिट फनेशिया.net और फॉलो आर सोशल मीडिया पेजेस फॉर डिटेल्स. एंड द नेक्स्ट वन इज टेकन फ्रॉम द मूवी डॉन, शाहरुख खान वाली.

That was taken from the movie Dawn, जिसमें दिखे थे प्रियंका चोपड़ा एंड शाहरुख खान. PMJ Jewels के बारे में बताना चाहूंगी बिकॉज डैलस आपका जो इंतजार है अब हुआ खत्म. PMJ Jewels इज नाउ कमिंग टू फ्रिस्को ब्रिंगिंग ओवर 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप. आप इनका स्टनिंग गोल्ड डायमंड एंड ब्राइडल कलेक्शन जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर एवरी सेलिब्रेशन एंड माइलस्टोन. इनकी ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है June 20th को. सो यू कैन एंजॉय सम एक्सक्लूसिव ऑफर्स, एक्साइटिंग फेस्टिविटीज एंड चांसेस टू विन ब्यूटिफुल ज्वेलरी पीसेस. प्राउडली एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड सितारा घट्टमननी, PMJ इज अ नेम ट्रस्टेड बाय जनरेशन. सो डू विजिट PMJ Jewels Frisco ऑन मेन स्ट्रीट एंड डिस्कवर ज्वेलरी दैट टेल्स योर स्टोरी.

हाँ शाम होने आई राइट. वेल इट्स ऑलवेज ऑलवेज फन टॉकिंग टू यू ऑल एंड प्लेइंग सम मेलोडियस सॉन्ग्स अलोंग द वे. इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय बाय, बट आप कहीं जाइएगा नहीं. डू स्टे ट्यून्ड इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, एज यहाँ हमारे शोज आपको एंटरटेन करते रहेंगे. कमिंग अप नेक्स्ट इज बंदा बिंदास मारविन दास. मैं मिलूंगी आपको कल दोपहर 2:30 बजे, 2:30 से 5 होगा मेरा और आपका साथ. वेल तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. दिस इज मधुलिका साइनिंग ऑफ.

0: Wow.
1: Just wow, just wow, just like you all people, wow. And if you are in meri baaton se agar aap sehmat hain ki mental health is important for everybody, not just for certain group of people, it is important for everybody, chahe aap aurat hain chahe aap mard hain. I think main hamesha ye baat to bolta hi hu apne show mein, show khatam hote hue, but from the last 2 days I've been sharing this, that hum apni family ki khushiyon ke chakkar mein, apne logon ki prasannata ke chakkar mein apne जॉयस को मार लेते हैं. क्यों भाई, व्हाई टू डू दैट? अगर आपका दिल नहीं है उस पार्टी पे जाने का जहां आप इनवाइटेड हैं, कुछ नहीं होएगा, कोई गोली नहीं चलेगी. हाँ, चार लोग आपको मिस करेंगे, कहीं और मिल लेंगे. बट इफ यू आर थिंकिंग दैट डे यू वांट टू टेक दैट ब्रेक, यू वांट टू स्पेंड दैट टाइम विद फैमिली, यू वांट टू रेस्ट एंड वॉच सम मूवीज, बिल्कुल करो. क्योंकि आपकी जिंदगी में जो होगा उसको हैंडल किसने करना है? आपने ही करना है ना, कोई और तो करने आएगा नहीं. नोबडी इज गोना कम टू पे योर रेंट, नोबडी इज गोना कम टू पे योर बिल्स. So when you're in stress, when you need that time, who do you ask? Just yourself. And ye soch ke, ye pooch ke apne aap se, le lo wo break. Filhal main ek gaane ki taraf ja raha hu, uske baad hum sare milke lenge ek break. Don't go anywhere. This is your evening drive time show. And agar aap mere se sehmat hain, to call karke zarur bataiyega. 972-235-5555, the number to the studio.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
4: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
3: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग। अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स। जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
5: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
2: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
6: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
7: भूख लगी
8: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
9: स्ट्रीट स्टाइल शॉट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
2: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
10: एक बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
11: क्या?
10: सैलरी बंद हो जाती है
11: और बिल्स बंद नहीं होते।
10: एग्जैक्टली, इसलिए स्मार्ट लोग वेल टैक्टिक्स से स्ट्रेटजी बनाते हैं।
11: मतलब
10: ऐसी स्ट्रेटजी जहां इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता।
2: द वेल्थ टैक्टिक, स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर योर रिटायरमेंट इयर्स। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-693-2077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com।
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
13: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
12: सच में सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

0: मैं ना अभी रिसेंटली इंडिया गया हुआ था, और इंडिया गया था तो मैं सुबह सुबह एक दिन उठा मंडे मॉर्निंग, संडे को कुछ दोस्त आए थे, मंडे उठा सुबह और आंखें मलता मलता मैं अपनी बालकनी में गया तो मैंने देखा कि मेरे घर के सामने वाली सड़क सारी बिल्कुल साफ हुई पड़ी थी। मैंने कहा यार कमाल है, मतलब प्रशासन इतना काम कर रही है कि हर सुबह झाड़ू पोछा लगता है, मतलब एन चिकनी हो रखी सड़क। फिर किसी ने बताया सर एक्चुअली वो नहीं थी बात, मारविन जी कल रात को ना बारात गई थी और लड़कियों ने, काफ़ी लड़कियों ने लहंगे पहने हुए थे। तो भैया अगर अपने मोहल्ले की सफाई करानी है तो वहां पे शादियां करवाते रहो, हर इतवार को एक शादी, मतलब सैटरडे को शादी करवाओ, संडे तक रात को मतलब सब चकाचक मिलेगा आपको। बारात वहां से लेके जानी है, पर कंडीशन ये है शादी वहां रिसेप्शन नहीं होनी चाहिए। योर घर के मोहल्ले में ओनली बारात गो एंड पास बाय, नॉट डूइंग फंक्शन।
1: रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है।
0: आजकल बैटरी जो है ना फोनों की बड़ी जल्दी खत्म होती जा रही है, तो भैया अगर आपको भी ये ढूंढना है कि कौन सा फोन अच्छा है जिसमें बैटरी बैकअप ज्यादा हो, तो उस लड़के को ढूंढें अपने खानदान में जो रात भर अपनी मशूका से बात करता है, वो बताएगा कौन सा फोन का बैटरी बैकअप सबसे तगड़ा है। It is 5:25 on the studio clock, 5:25 हो चुके हैं और मैं रहूंगा आपके साथ all the way till 7 o'clock. This is Mashuka.

0: भाई। और मुझे जो बाकी लैंग्वेज खुसरो खुशराम शिमा शिमा इसका बड़ा मजा आया, क्योंकि कुछ नहीं समझ आया मुझे क्या बोल गए। ये गाना अपनी गर्लफ्रेंड को भेज दो और बोलो कि बाकी जो शुका शुका शुका है वो मेरी तरफ से है, ठीक है। अच्छा माशुका शुका कह रहा है, मैं कहा शुगर शुगर शुगर, पता नहीं इसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है क्या चक्कर है। बट आप लोग एक बड़ा अच्छा चीज़ कर सकते हो जी, वो पहली बात तो ये है कि आप अपने घर की हर चीज़ को अगर मूव करना चाहते हो, स्पेशली इफ़ यू मूविंग इंटर स्टेट या इंटर सिटी, देन SFL वर्ल्ड वाइड कैन हेल्प यू। चाहे एक पिन है आपके घर में, वो हेयर क्लिप जो मैडम को बहुत पसंद है, या आपके डाइनिंग टेबल जो शीशे वाला है, या आपकी कोई वार्डरोब है जिसमें शीशा लगा हुआ है, पर आपकी जो धर्मपत्नी है वो शी जस्ट कांट लेट गो ऑफ दैट, देन डोंट वरी ना, SFL वाले आएंगे ज़बरदस्त तरीके से आपकी चीज़ों को पैक करेंगे और भेज देंगे आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन, चाहे वो आपका नया घर हो, किसी अदर कंट्री मूव कर रहे हों, या किसी और कंट्री से आपकी कोई फैमिली मेम्बर्स आना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, कैनेडा से कर रहे हैं, बाकी बातें मैं नहीं करूँगा। लेट्स गो टू One of the representatives at SFL Worldwide, Rahul, how are you this evening?
1: Doing great, Marvin. How are you doing tonight?
0: God is good. Life is beautiful, sir. That's what I always say. Mujhe ye bataiye ki, of course, SFL, the word, it's the alphabet itself, SFL, it stands for Ship for Less Worldwide. Ye bataiye ki aap kya kya karte hain when it comes to shipping? What all products and services do you provide for your clients here in DFW and across the globe?
1: There's a lot of things SFL Worldwide does, shipping, relocation, a lot of things. And whether you, like for example, people and the business owners, you know, if they want to import something from India or if they want to export something, SFL Worldwide does that for you. For local people, if you want to export, if you want to ship something to your family, to your father, Father's Day is coming up, so SFL Worldwide can do the same thing. For what the competitors charge you, we do that for 40% less the price.
0: Wonderful. That is always good to know that we have somebody reliable who can move our goods for us. ये बताइए कि अगर मैं move कर रहा हूँ, मेरी एक बड़ी प्यारी सी गाड़ी है जो मैं नहीं छोड़ना चाहता और इतनी लंबी drive में नहीं करना चाहता. If somebody is moving from, let's say, New York to Texas, can you handle that as well?
1: Absolutely. अगर आप anyone who is moving from one state to any other state, SFL Worldwide does auto shipping as well. So we ship your car, we ship your automobile from one place to another. This is something SFL Worldwide can handle for you.
0: तो इसके लिए सर मेरे को ये बताइए, अगर सिंपली मैं सिर्फ कोट्स लेना चाहूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ अस देसीज हैव दिस हैबिट कि हम पहले जाके प्राइस देखते हैं, फिर हम तैयार होते हैं कब हमें इसको शिप करना है और उस दिन हम फाइनली डिसीजन लेके वहाँ पहुँचते हैं. तो कैन आई गेट कोट्स फॉर डिफरेंट वेट्स एंड डिफरेंट थिंग्स दैट आई एम शिपिंग? क्या वो कोट्स आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं?
1: Absolutely. You can visit to sflworldwide.com or you can call us at 1-800-691-2335 and we can help you with that.
0: 1-800-691.
1: For an example, Marvin, for an example, if somebody wants to ship something, for example, from Dallas to Europe, maybe to his brother. So if you go with any other competitors who are going to charge you $150, SFL Worldwide can do the same thing for $45.
0: Ye to maine bhi dekha bhaiya, kyunki I have known SFL Worldwide and you know the makers of SFL Worldwide for 19 years. 19 saal se main is company ko janta hu and I can tell you that they really you know help you out when it comes to your pricing. Hum desiyon ko deals chahiye. आई एम टेलिंग यू, ऐसी डील आपको कहीं और नहीं मिलेगी जो SFL देगा. मैंने खुद अपने पार्सल्स भेजे हैं. FedEx एंड यू नो USPS वर आस्किंग मी $100 फॉर समथिंग विच SFL वॉज एबल टू डू फॉर इवन $40 और $35. तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट टाइम यू सेंड योर शिपिंग थिंग्स, यू हैव रिक्वायरमेंट्स, आपका ऑफिस है, आप बहुत सारा पेपर वर्क इधर उधर भेजते हो, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी. SFLWorldwide.com इज द प्लेस दैट कैन डू दैट फॉर यू. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर राहुल शाह. आई encourage all my listeners in DFW, before you're shipping something, get with SFL. और हाँ, जैसे मैंने कहा कि घर की एक एक चीज को अपनी समझ कर पैक करेंगे, और अपनी ही नहीं, जब पैक करने बंदे आएंगे वो भी ये सोचेंगे कि मेरी बीवी का सामान है, तो अब आप सोच सकते हैं कितने अच्छे से they will pack it for you because they'll make sure that it doesn't break and there's no damages to it. Thank you very much for joining with us, Rahul. SFLWorldwide.com is that website for you all. और इसके साथ साथ SFL Worldwide wants to celebrate Father's Day with you and they are giving you an opportunity to win 3 gift hampers for your father, जो कि आपको Dilwayega SFL Worldwide, and that is for three lucky winners right now. All the gift hampers are brought to you by SFL Worldwide, and ye puri duniya mein kahin bhi ship ho jayenge. So if your father lives in London, India, Honolulu, aapke father ko ye gift pahunchega. And if your father lives right here in Dallas or any other state in the United States, it'll also reach them. Main aapse sawal puchne laga hu, agar aap mujhe denge sahi jawab, you will get yourself this three lucky winners will get one gift hamper each for their father for Father's Day, and that is brought to you by SFL Worldwide. Aaj ke din ek birthday celebrate kar rahe hain hum, which is of this actor who's also Indian film ke saath television actor aur comedy mein bahut sara kaam kiya. Dubbing artist rahe with the commentary in Vivo Pro Kabaddi League season 9. Also acted in Hindi films jaise ki Rehna Hai Tere Dil Mein, Kaho Na Pyar Hai, Mujhe Kuch Kehna Hai, Golmaal Fun Unlimited, Golmaal Returns and Tum Bin. Aur inka ek saap wala role hai jisme ye naag ban jate hain. In the Golmaal series, aapko mujhe unka naam batana hai. The first three callers that give me the right answer of this actor who is celebrating his birthday today. Once again, born on 16th of June 1971. Commentary kar chuke hain Vivo Pro Kabaddi League ke liye. Comedy roles kar chuke hain in films like Rehna Hai Tere Dil Mein, Kaho Na Pyar Hai, Mujhe Kuch Kehna Hai, Golmaal Fun Unlimited, Golmaal Returns and Tum Bin. अब आपको मुझे बताना है उनका नाम, एंड इफ़ यू गिव मी द राइट आंसर. एक हिंट भी दे चुका हूँ मैं आपको, एंड दैट इज़ दैट इनका एक सांप वाला रोल आया था, पस पस बन जाते हैं आइटम इन वन ऑफ द गोलमाल मूवीज. मैं पूछ रहा हूँ उनका नाम. 9722355555. हियर इज शकीरा एंड पिटबुल विद द फीफा वर्ल्ड कप 2026 एंथम.

0: Every dream will come alive right here on Fun Asia Radio. If you have a celebration for your father this Father's Day and you want a gift hamper for them, for him, you have to answer my question. Today is the celebration of this actor's birthday. फिल्मों में काम कर चुके हैं कॉमेडी की और एक रोल ऐसा जो फिस फिस फिस फिस नागिन नागिन मेल नागिन बन जाते हैं. गुड इवनिंग फन एशिया, हु इज दिस? हेलो, कौन बोल रहा है भाई? बहुत बहुत कीमती वक्त है हमारा, तुम हमारा समय इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते. कौन बोल रहे हो, एक बार फिर पूछूंगा. हेलो, नहीं बताना चाहते तो मैं चला लो चला मैं अपने फोनों की बारात लेके. गुड इवनिंग. हेलो,
1: हाँ जी, क्या हाल चाल?
0: बस बढ़िया है जी. कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम गौरव.
0: गौरव, गौरव जी मैं ठीक हूँ. आपका वही हर बारी वाला 2 किलो मूंग दाल?
1: बिल्कुल.
0: 2 किलो मूंग दाल पैक कर भाई. अच्छा गौरव जी, साथ साथ साथ साथ दाल पैक हो रही है, तब तक ये बताएं कि एक्टर का नाम मालूम है?
1: हाँ जी मालूम तो है.
0: अच्छा बताओ फिर, मालूम है तो.
1: ब्रिजेश
0: कौन से?
1: ब्रिजेश हिर जी.
0: You know, पहले
1: बिल्कुल जी.
0: बाकी जगह पे जेटली, ब्रूसली, हमारे इंडिया में लकी ली, सबसे पहला ली जो पॉपुलर हुआ था उसका नाम था लकी ली. ठीक है, लकी ली, मैं ठीक हूँ. लकी ली, सो ये बाद में आए जैकी चैन, ये ब्रूसली, जेटली, जैकी चैन, ये सब फेल है. सबसे ऊपर लकी ली. अच्छा गौरव भैया, होल्ड द लाइन फॉर मी, देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है कि नहीं. लेट्स सी हु डू वी हैव ऑन नंबर 2. गुड इवनिंग फन एशिया. हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते. नहीं बात करते तो हम आगे चलते. गुड इवनिंग, रेडियो वॉल्यूम लो आपका ज्यादा. कौन बोल रहा
2: है?
0: गुरप्रीत.
2: इंद्रप्रीत
0: पाजी, हाउ आर यू?
2: गुड, हाउ आर यू भाविन?
0: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. रोटी पानी चल रही है, ऊपर वाला बैठा है, नौकरी कामयाब है ताडे वर्गे लोगों करके, इस करके बहुत बहुत धन्यवाद होता. मेनू दसो सर, डू यू नो द नेम ऑफ दिस आर्टिस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट?
2: Yeah, the name is Brijesh Hirji.
0: Mr. Hirji कहते हैं जी. इंद्रप्रीत पाजी, पाजी please hold the line. Let's see who do we have finally here on Fun Asia. Good evening, radio volume low, yours is less. Is this Miral?
3: Yes.
0: Miral जी, how are you?
3: I'm good. How are you?
0: I'm good. मतलब आज आपका दिन अच्छा नहीं गया जिस तरह से आपने I'm good बोला?
3: नहीं नहीं अच्छा है आज.
0: अच्छा, कोई नाराजगी, कोई परेशानी?
3: Not so far.
0: चलो थक गई है ना?
3: हाँ.
0: कोई बात नहीं, अपने आप को शीशे में एक बार फिर से देखो और मुस्कुरा लो, थकान दूर हो जाएगी. होल्ड कीजिए मेरे लिए. यस, एब्सोल्युटली राइट सबका आंसर. और मिरल जी अपना आंसर तो बता दीजिए, किसकी बात कर रहे हैं हम आज?
3: व्रजेश हिर जी
0: बिल्कुल सही जी. होल्ड कीजिएगा मेरे लिए. एब्सोल्युटली इट इज व्रजेश हिर जी. कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द 3 लिसनर्स who are getting a gift from none other than SFL Worldwide as a gift hamper for their father. बहुत सारी फिल्मों में काम किया ब्रजेश वीरजी ने. मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ आज ही के दिन 16th of June 1971, making him 54 years of age. A very happy birthday to Mr. Hirji from the team here at Fun Asia and Banda Bindas. Break ke baad aaya.
4: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
5: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय 2 गेट 1 फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय 2 गेट 1 फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग. अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी, दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में. रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यही मिलते हैं. एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन. तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ. HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर.
6: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
7: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
6: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
7: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
8: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स. पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटिन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज. ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस. किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड Bantha Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
9: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
10: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
9: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
11: Suno, kal bahut kaam hai. Pehle grocery, fir puja ka saman, gifts bhi kharidne hai aur in sab kuch ke baad main cooking nahi karne wali. Kahin achha sa dinner karke aayenge.
8: Aur ye sab कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
11: कहाँ फूडिस्तान इन ऑबरी फ्रेश ग्रोसरी हलाल मीट पूजा एसेंशियल्स लाइव पानी पूरी फ्रेश गन्ने का जूस बेकरी आइटम्स प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर
8: फूडिस्तान इन ऑबरी एवरीथिंग देसी वन प्लेस वन वाइब द टेक्सास सुपर किंग्स आर हियर एंड द एक्शन इज एब्सोल्युटली हीटिंग अप डोंट मिस अ सिंगल थ्रिलिंग मोमेंट Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी। जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
16: पापा, फादर्स डे पे क्या गिफ्ट चाहिए?
17: बेटा है तो मेरा, तुम लोग साथ बैठ जाओ, यही काफी है।
14: और वही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। All that your father needs is good food, great company, and unforgettable moments. This Father's Day weekend from June 19th to 21st, take your dad to the Flavor Lounge Frisco. Indulge in refined flavors, elegant dining, and moments that truly matter. Plus, every father gets one free cocktail or mocktail. The Flavor Lounge on Preston Road near Malabar Golden Diamond Complex. Call 469-712-3591 and reserve your table today.
18: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
19: नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियाँ हमारे लिए नहीं होती।
8: दोस्ती, प्यार और फिर वही इमोशनल केओस। 2012 की सुपरहिट कॉकटेल के बाद एक नया ट्विस्ट, एक नई कहानी लेकर होमी अजजानिया इज बैक विद कॉकटेल 2. Starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna. Get ready as the perfect cocktail mixture with Cocktail 2 releasing on the 19th of June at theater near you.
2: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.
20: Oh, yeah.

This part of the show is brought to you by our Drive Time sponsor, Yaniki attorney Omar Khwaja. If you're ever involved in a truck accident or a car wreck, वैसे तो ये ज़िंदगी में मुसीबत ना ही आए आप पर, but if you ever get involved in one, remember one name which I'm suggesting you, and that is attorney Omar. He's expert, he's experienced, he knows what he's doing, has done this for many people, and the best part is कि आपको तब तक पैसे नहीं देने हैं जब तक आप अपना केस जीतते नहीं हैं. And I've dealt with this situation 3 times in my life. 3 बार एक्सीडेंट हुआ है. तीनों बार पीछे से लड़की ने आके गाड़ी मेरी मारी थी. लड़की मतलब लेडी, कोई लड़की थी, कोई आंटी थी, कोई दादी माँ थी, पर तीनों टाइम लड़कियों ने पीछे से मेरी गाड़ी को टोका. एंड ऑल 3 times आई हैड एन अटर्नी ऑन माई साइड. एंड ट्रस्ट मी, माई मेडिकल बिल्स, चाहे वो कायरोप्रैक्टर के विजिट्स हैं, चाहे मसाज थेरेपीज हैं, एंड माई कार्स लॉस आउटसाइड ऑफ द मेंटेनेंस, मतलब उसकी रिपेयर के अलावा मुझे कुछ कॉम्पनसेशन हर बार मिली है. एंड आई वुड रिकमेंड यू टू हैव दिस नेम हैंडी, अटर्नी ओमर उनका नाम है. वेबसाइट इज attorneyomar.com. ऑल राइट, स्टिल टाइम फॉर सम मोर फन है. एंड कुछ और गाने अभी भी लगाने बाकी हैं जी आपके लिए. उसके साथ साथ आया है पंच तारा गिव अवे कमिंग अप, विच इज़ फॉर देयर ज़बरदस्त आलू कुलचा या छोले भटूरे. चॉइस आपकी है जी, क्या आपने खाना है. बट ये दोनों चीज़ें आपको अवेलेबल हैं. दे आर नाउ ओपन इन एलन फॉर यू, एंड दिस इज़ फॉर देयर एलन लोकेशन. क्या है वो जो आप जीतेंगे वो तो बता दिए, कैसे जीतेंगे वो बताता हूँ. एक गाना हो जाए, क्यों नहीं यार, टाइम फॉर सम गुड सॉन्ग्स है ना. एंड आपको पता है कि इस शो में ताज़ा तरीन गाने ज़्यादा लगते हैं, और कुछ कुछ ऐसे गाने लगते हैं जो बस आपको ले जाएँ बैक इन द डे. बट फॉर नाउ इट इज़ कॉकटेल 2. आपको मालूम है इंडिया तरक्की क्यों करता है, क्योंकि इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं भैया जिनको आप एक डिज़ाइन दिखाओ ना कि ये टेबल है, ये अलमारी है, एक आवाज़ आती है कोने से, ए सी आई बना दूंगा, बिल्कुल ए सी आई.

मैं नाचू तब तलक तू बोले जब तलक, एंड दैट इज तलक मतलब तलक फ्रॉम द मूवी कॉकटेल टू. ये आने वाली है जी, फर्स्ट ए रेटेड फिल्म है कृति सरन की, एंड दिस इज समथिंग दैट पीपल आर लुकिंग आउट फॉर, क्योंकि कॉकटेल वन वॉज नाइस. आई मीन आई डोंट अग्री विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉकटेल, बट ठीक है यार, जिसके लिए चलता है उसके लिए चलता है, अपन के लिए नहीं चलता भैया. एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फिल्म मैं फिर भी देखूंगा क्योंकि मूवीज आर देयर फॉर एंटरटेनमेंट. नेसेसरी लर्निंग हर मूवी से नहीं लेनी चाहिए. अभी जो आपको सीखना है वो ये सीखना है कि पांच तारा का गिव अवे आपको कैसे क्लेम करना है. पहले तो जब आप ये जीतेंगे तो आपको, जब वहाँ पहुँचेंगे आप पांच तारा पे, एलन वाली लोकेशन पे, आपको उनको कोडवर्ड देना है. कोडवर्ड, कोडवर्ड मेरे से ले लो. कोडवर्ड है फनेशिया, किसी और को नहीं देना ये कोडवर्ड, फनेशिया जाके बोलना है आपने, ठीक है. दूसरा, आपने पांच तारा और अपना पंजाब HD3 रेडियो स्टेशन है, इन दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है. क्या करना है? पांच तारा रेस्टोरेंट एंड अपना पंजाब HD3, इन दोनों को आपने फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे. ये दो काम करने हैं और वहाँ जाके कोड बताना है 007 फनेशिया, बस आपको मिल जाएगा जी उनका आलू कुलचा या छोले भटूरे. अब आपने जीतना कैसे है? जीतना ऐसे है कि मैं एक सवाल पूछूंगा, सही जवाब ले जाएगा जी ये इनाम. टुडे मार्क्स द बर्थडे ऑफ द डांसिंग बॉय ऑफ बॉलीवुड, जिन्होंने बॉलीवुड में इतना डांस किया और ऐसा डांस किया कि उसके बाद लोगों को ये शौक हुआ कि यार मैं एक्टिंग के साथ साथ डांसिंग भी सीखूं. 350 से भी ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं. भोजपुरी लो, तेलुगु लो, उड़िया लो, तमिल लो, कन्नड़ा लो, पंजाबी लो, रेफर टू एज महा

से भी ज्यादा फिल्में कर चुके हैं, भोजपुरी लो, तेलुगु लो, उड़िया लो, तमिल लो, कन्नड़ लो, पंजाबी लो, रेफर टू एज महागुरु, बंगाली में कहते हैं जी द ग्रेट टीचर, और राज्यसभा के फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रेसिपिएंट ऑफ 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, और बहुत सारी एक्टिंग इन्होंने करी है, बहुत सारी फिल्मों में करी है. बट मैं अगर इनकी फिल्मों का नाम बताऊंगा तो आपको बिल्कुल पता लग जाएगा, बट मैं ये कह सकता हूँ कि इनके जैसा डांसर उस एरा में तो नहीं देखा गया. एंड और अगर इनके करियर की बात की जाए तो शुरुआत में देवर सम फिल्म्स दैट ही वाज पार्ट ऑफ, जैसे कि हम पांच 1980, हमसे बढ़कर कौन 1981, एंड उसके बाद और फिल्में. उसका ही एक गाना मैं लगा रहा हूँ, यू टेल मी विच एक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड इफ़ यू गिव मी द राइट आंसर यू गेट योर सेल्फ पंच तारा का छोले भटूरे या आलू कुलचा एब्सोल्युटली फ्री. नो कॉलर नंबर 3, जो भी पहले सही जवाब देगा उसको मिलेगा ये इनाम.

0: The Jimmy who shook Bollywood with his acting and his roles. Let's go to our caller here. Good evening, Fanasia Radio. Radio volume kam. Yar bada acha aapka speaker system hai waise. Indicator ki tak tak ki awaaz mere kaan ka parda phaad diya hui nikli thi. Kaun bol rahe hain aap?
1: Interpreet again.
0: Interpreet ji, aaj to sare naam aap hi ne lene lagta hai.
1: I think you are lucky for me.
0: Aaye oye, chalo kise liye to lucky hoya sir, hota aaj tak manni nahi.
1: The answer is Mithun Chakravarti, I think.
0: हाँ जी, वो तो ठीक है. मैंने कहा सर किसी के लिए तो लकी हुआ, वो तो आज तक मानी नहीं मैं लकी हूँ. बट चलो, मिथुन चक्रवर्ती कह रहे हैं इंद्रजीत जी, ये बताइए कि एलन जा सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं.
0: Then hold the line for me. Yes, it is Mithunda that is the celebrator of the birthday today. Radio का volume please कम कर लो, मेरे कान में दर्द होता है. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. गुड इवनिंग, कौन बोल रही?
2: मैं शिखा बोल रही हूँ.
0: शिखा जी कैसी हैं?
2: All good, आप बताओ जी.
0: बस ठीक है जी. अब आपने जब वॉल्यूम पीछे बंद कर दिया ना, मैं इतना अच्छा हो गया हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ आपको. अब आप बताओ कि किस एक्टर की मैं बात कर रहा था?
2: मिथुन
0: दा की बात कर रहे थे, पर आप दूसरे नंबर पे आज पहुंची हैं, इसलिए आज मुझे माफ कीजिएगा. बट कोई गल नहीं. ओहो नहीं, हो हो हो हो ऐसे कहते हैं. ठीक है, लाइफ में हमेशा ओहो नहीं करना. जब भी ओहो कहने का मूड आए तो कहना हो हो हो. चलो जी, वेरी गुड. एंड दैट इज इंडीड मिथुन चक्रवर्ती. अगर इनकी बात की जाए सक्सेस की, 1982 1995 वाज द रियल टाइम. तकदीर का बादशाह फिल्म आई, उसके बाद आई जी सुभाष साहब की डांस फिल्म जिसका नाम था डिस्को डांसर. एंड देन केम बपी लहरी साहब का म्यूजिक जिसने दे दिए जी चार चांद. गौतम मुखर्जी की ब्लॉकबस्टर आई थी त्रोई, उसके बाद और फिल्में पसंद अपनी अपनी. घर एक मंदिर, बाजी एंड कसम पैदा करने वाले की. ऐसी ऐसी खतरनाक फिल्मों से निकले मिथुन दा. और आज के दिन होता है जी मिथुन दा साहब का बर्थडे. वेरी हैप्पी बर्थडे टू दिस पावर हाउस परफॉर्मर. 16th of June 1950 में इनका जन्म हुआ. एंड आज के दिन हो चुके हैं 76 के, 76 साल की उम्र. और आज भी शोज़ में काफ़ी जगह इन्वॉल्वमेंट इनकी दिखती है, कई कई मूवीज में भी नज़र आए. एंड आई रियली इन्जॉयड माई चाइल्डहुड बिकॉज ऑफ दिस एक्टर जिनका नाम था नन अदर देन मिथुन चक्रवर्ती. अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू सर from the team here at Fanasia and from Banda Bindas.

0: A very warm welcome back to your Evening Drive Time show right here on Fun Asia Radio 104.9 FM, bringing the community together. This is the Bindaz Show, brought to you by our very own Banda Bindaz, Marvin Das. It's 6:06 in the studio clock. 6 baje ke 6 minute ho chuke hain ji. Tuesday ki sham hai, mangalwar yaad hai na, mangalwar ka kya chakkar hai? मंगलवार का सिंपल चक्कर है भाई कि मन की बात बीवी से नहीं करनी, अगर करी तो वॉर हो सकती है यार. मन, गल और वार, ये तीनों साथ ही है ना मंगलवार में, इसलिए बस ध्यान से थोड़ा बच के, थोड़ा हंस के, थोड़ा बच के. ये डैलस मेरी जान, आई एम गोना बी विद यू टिल 7 o'clock. बर्थडेज, एनिवर्सरीज, कोई भी खुशी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आई वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ दैट. घबराइए नहीं, केक खाने नहीं आऊँगा, चिंता मत कीजिए उसकी. आई एम जस्ट गोना सेलिब्रेट योर जॉय विद द लवली पीपल ऑफ डैलस. उसके साथ साथ आपको ये बता दूं, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट यू बाय आवर वेरी ओन एजी फिनटैक्स. इफ यू लुकिंग टू गेट योर टैक्सेस डन, दिस इज द टाइम टू गेट इन टच विद देम. स्पेशली अगर आपने एक्सटेंशन फाइल कर रखी हैं, देन गेट प्रिपेयर्ड एंड गेट प्रिपेयर्ड वेल. एंड व्हेन यू हैव समबडी हु नोज द फील्ड ऑफ टैक्स, बिकॉज इट्स लाइक डॉक्टर का काम जो डॉक्टर नहीं है वो नहीं जान सकता, इसी तरह एक CPA का काम जो CPA नहीं है वो नहीं जान सकते. सो लेट देम टेक द लीड एंड हैंडल ऑल द प्रॉब्लम्स फॉर यू. AGFintax.com इज दैट वेबसाइट, दैट्स AGFintax.com. A lot more to tell you, including some birthdays that we are going to be celebrating. First of all, starting with Amal Malik. Aaj ke din unka bhi janmdin hota hai. A very beautiful singer and given us some lovely tracks, Bollywood maybe. And unke gaane kaafi, kaafi pasand kiye jaate hain. Aaj ke din, 16th of June in the year 1990, he was born. 35 years ke ho chuke hain. And his career, of course, started with ek gaana jiska tha naam Chal Wahan Jaate Hain. Zindagi Aa Raha Hoon Main, and Main Rahun Ya Na Rahun. Achieved widespread popularity and contributed to the growing trend of non-film Hindi singles. Uske baad inka kaafi kaam nazar aaya hame MS Dhoni The Untold Story mein, Airlift mein inka kaam dikha, Kapoor and Sons mein, Badrinath Ki Dhulaniya, Baagi and Kabir Singh. Here we go with one track from this very talented singer, and that is Yahan Guzar Do. This came out about 4 months ago, and I think it's a lovely track that you all will enjoy.
1: मुझे यहाँ पे जा रही हूँ मैं.
2: हाँ तो जाओ, कौन रोक रहे तुम्हें, जाओ. मगर जाते जाते ये बता दो, जब मुझसे प्यार हुआ था

0: Beautiful track in the voice of Amal Malik and of course born to music director Dabu Malik and Jyothi Malik. He is of course known to Anu Malik as well, but he's done some beautiful work. I won't say nepoket nahi bhai, kaam acha karte hain, and he's proven himself in this field as well. Aapke pehli baat to mujhe ye nahi samajh aayi ki main aapse aur log pooch every day poochta how you doing DFW sab theek thaak hai yaar, kabhi kabhi mera bhi haal chaal pooch liya karo. Main ghar pe chai peene nahi aaunga, I promise. 9722355555 number hai ji mera हाल चाल पूछने का, और मैं आपका हाल चाल एक स्पेसिफिक वे से पूछना चाहता हूँ, स्पेसिफिक रीजन से पूछना चाहता हूँ. वो रीजन ये है कि वी आर सेलिब्रेटिंग मेंस हेल्थ वीक राइट हियर ऑन फाइनेंशियल रेडियो, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द मेंस हेल्थ ऑल्सो. ये नहीं कह रहा हूँ कि मेंस हेल्थ के अलावा बाकी हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, एब्सोल्युटली इट इज, बट आई थिंक वी ऑल एज अ कम्युनिटी रिगार्डलेस ऑफ एनी कास्ट कलर रिलीजन, हम चाहे मर्द हैं चाहे औरत हैं, हमें अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, स्पेशली ऑन आर मेंटल वेलबींग. जितना स्ट्रेस हम लोग लेते हैं अपनी लाइफ में, आई थिंक पार्ट ऑफ द स्ट्रेस जो हम लेते हैं वो हमारा खुद का दिया हुआ है. इट्स सेल्फ इंड्यूस्ड पेन्स दैट वी गिव आवरसेल्फ, बिकॉज कई चीजों का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. एट टाइम्स यू कैन ब्रेक अवे फ्रॉम द नॉर्म, टेक दैट ब्रेक दैट यू नीड. अगर आपका दिल कर रहा है कुछ अकेले कहीं टाइम स्पेंड करने का, यू वांट टू गो एट अ लेक, यू वांट टू गो टेक अ वॉक, गो टेक दैट वॉक. कई चीजें डिले करने से बहुत चीजें आपकी अच्छी होंगी. लेट्स सी हु डू वी हैव ऑन द एयर वाज ऑफ फनेजिया दिस इवनिंग. गुड इवनिंग टू यू फनेजिया, हु इज दिस?
1: मरविंदा, दिस इज राज बोल रहा है.
0: राज साहब,
1: यू डूइंग वेरी गुड, फंडामेंटल जॉब, ऑसम जॉब, यू डूइंग वेरी गुड जॉब बड़ी.
0: थैंक यू सर, थैंक यू.
1: वेरी गुड जॉब, आई लिसन टू यू एवरी सिंगल डे, एंड जब भी आप आते हैं ना, तभी जो वो गाना पहला बजाते हैं ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है.
0: थैंक यू, थैंक यू सर. बस यही प्यार है जी, और मैं ये कहता हूँ कि जॉब वो अच्छी होती है अगर मेरा काम बातों का है, राइट? अगर मेरी बातें आपके दिल तक पहुँचे, अगर वो जगह करें, तब मैं उसको मानूंगा कि आई एम डूइंग अ गुड जॉब. तो ये जो काम है ना जनाब, ये सिर्फ बातों का ही नहीं है. आई थिंक इट्स अबाउट रिलेटिंग टू वन अनदर, इट्स अबाउट बींग देयर फॉर वन अनदर. और अगर आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, यू आर मिसिंग दैम, पिक अप दैट फोन, गिव दम अ कॉल. अगर किसी दोस्त का हाई का मैसेज आया है, मे बी इज इन अ डीपर ट्रबल, इज नॉट एबल टू शेयर हिज इनसाइट्स विद यू, तो गिव हिम अ कॉल. जिस तरह से जब पहले बिना फोन किए घंटी बजा के घरों में घुस जाते थे, बाहर से हॉर्न बजाते थे, टी टी टी टी टी, इसी उम्मीद में कि दोस्त बाहर आएगा, आज भी उसी तरह से फोन कर लिया करो. जिंदगी एक बार मिली है, इसको अगर हम अच्छे से जिएंगे और अपने आप को खुश रखेंगे, तो हमारे आसपास की चीज़ें ऑटोमेटिकली खुश होंगी और अच्छी होंगी. देखिए, चाहे आपका फैमिली है, आपका बिजनेस है, आपके अपने हैबिट्स और शौक हैं, उसमें आपका गाना है, आप पोइट्री करते हैं, वट एवर इज दैट यू डू, अगर आप मेंटली खुश नहीं हैं, अगर आप बॉडीली हेल्दी नहीं हैं, यू वोंट बी एबल टू एंजॉय द वर्ल्डली जॉयज दैट आर देयर फॉर अस. सो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम, अपने आप को खुश रखना सीखिए, इवन इफ इट मीन्स लेटिंग गो ऑफ दैट 7 PM मीटिंग दैट यू हैड प्लान. नहीं दिल कर रहा, यू फीलिंग बर्नट आउट, यू फीलिंग टायर्ड, टेक दैट ब्रेक एंड डोंट अटेंड दैट मीटिंग. ट्रस्ट मी, यू विल फील a lot better. This part of our show and this men's health chapter is brought to you by none other than Passion Healthcare. They are right here in Texas, and there are multiple locations for you, and they're also hiring doctors, endocrinologists, other job openings are there, jaise ki pediatricians, psychiatrists, and they have a location near you. The best part, when you go to them, they spend 30 minutes with each patient when they evaluate you or they do your checkup, because like us, they believe that to know a person, to know what's going on, you need to spend time with them. So make sure to check out Passion Health Primary Care right here in DFW with multiple locations. And remember, they're hiring doctors, endocrinologists, pediatricians, and a psychiatrist. Let your network know. For now, it is a track for all of you. Ke tanha dil, tanha safar. ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, क्योंकि ये जो नजरें ढूंढ रही हैं ना, ये आप अपने आप को ढूंढ रहे हो. And the day you find yourself, all the answers come along. इस गाने के बाद लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक के उस पार में आपको बताऊंगा कि अगर आपका बॉस आपको बहुत तंग करता है ना, एक ही दिन में उसकी छुट्टी कैसे करनी है. राइट आफ्टर द ब्रेक.

0: All the memories that you have, all the yaadein jo aap bitor sakte ho zindagi mein, usi ka guldasta banao mere doston, baki sab noise hai. Aapko pata hi hai na ye baat. Chalo ek aur baat batata hu. Ek banda gaya ji, kahan gaya batata hu. Pehle jaane to do usko, jayega wahan pahunchega, fir main aapko bataunga ki banda wahan gaya tha aur yahan pahuncha hai. Break ke baad.
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: Shubh din aa pahuncha hai. Ek aisa avsar jahan 60 varshon ki parampara, bemisaal karigari aur peedhiyon ke vishwas ka sangam aa raha hai aapke shehar Frisco mein. PMJ Jewels.
4: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
5: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
6: Calculating route. Rerouting.
5: Arre, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
6: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
5: Kyun?
6: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials. Authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
5: Achha. तो सीधा वही ले चलो
7: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
6: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
8: द टेक्सास सुपर किंग्स आर हियर एंड द एक्शन इज एब्सोल्युटली हीटिंग अप डोंट मिस अ सिंगल थ्रिलिंग मोमेंट सिक्योर योर सीट्स नाउ टू वॉच द टेक्सास सुपर किंग्स लाइव एट ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम वी हैव गॉट इलेक्ट्रीफाइंग मैचेस ऑन थर्सडे जून 18th सैटरडे जून 20th संडे जून 21st Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
9: Documents ya parcel bhejni hai?
5: Haan.
9: Ghar relocate karni hai?
5: Haan.
9: Gaadi bhi transport karna hai?
5: Haan, bhai, haan.
9: Toh phir tension kyun le raha hai? SFL Worldwide ko call kar.
10: Documents shipping, boxes shipping. Complete door-to-door relocation, auto transport. Sif India nahi, USA aur duniya bhar mein. Trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide. Har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
11: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar. खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
12: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
13: लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर नॉट रेडी फॉर दिस Frisco में इतना प्यार मिलने के बाद पंचतारा इज नाउ ओपन एट अ न्यू लोकेशन इन एलन वही स्वाद वही जुनून और वही जबरदस्त मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस फेमस गर्मा गर्म पराठे रोज ताजी बनी मिठाइयाँ और फुल सर्विस बार वेटिंग जस्ट फॉर यू एंजॉय फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस और पंजाबी बफे एवरी डे कैटरिंग सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल टू मेक योर एवरी सेलिब्रेशन मेमोरेबल पंचतारा नाउ इन फ्रिस्को एंड एलन मेंशन अपना पंजाब एंड गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन Your first visit.
14: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था ना वो हेल्प कर रहे थे ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ
8: कॉल नाउ टू 833 गेट ओमर द लॉ ऑफिसर्स ऑफ ओमर ख्वाजा आपका हक उनके जिम्मेदारी

हाँ जी, तो ब्रेक से पहले जो बंदा जा रहा था एक जगह, वो पहुंच जाता है जी एक जगह, और पहुंचता है अपने दोस्त के घर। दोस्त के घर पहुंचता है, वहां जाके घंटी बजाता है। घंटी बजाता है तो नौकर बाहर निकलता है, बोलता है, हाँ जी साहब जी, क्या हाल है? कहते हैं, साहब कहाँ है भाई तुम्हारे? वो कहता है, साहब तो छुट्टी पे गए हैं, घूमने गए हैं 2-3 दिन के लिए मनाली। कहता, अच्छा मज़े करने गए हैं? कहता, नहीं साहब, मैडम साथ गई हैं।

0: और आप अपनी पिछली छुट्टी में मजे करने गए थे कि साथ गई थी वो?
1: रस पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है
0: बंदा ये बिंदास है। जी नाम मारविंदास है, क्या हाल चाल है DFW? सब ठीक ठाक। हाँ जी, मतलब अब लड़के ने, नौकर है ना वो, सिंपल आदमी है, उसको क्या पता था। उससे पूछा गया कि मजे करने गए हैं, उसने भी सच बोल दिया, नहीं साहब मैडम साथ गई है। यू लिस्टिंग टू इवनिंग ड्राइव टाइम शो ओनली ऑन फन एजियो रेडियो 104.9 FM। 6:26 हो चुके हैं जी, 6:26 इन द स्टूडियो क्लॉक। जून की 16 तारीख देखते ही देखते वी आर हाफ वे डन फ्रॉम दिस ईयर। एक्चुअली में आज हम जो पड़ाव है ना हाफ ईयर का, वो पार कर चुके हैं एंड वी हैव रेस्ट ऑफ हाफ ऑफ द ईयर। तो जो आपके गोल शोल थे याद रखिएगा, उसमें 6 महीने से कम टाइम बचा है अब, ठीक है ना। तो फटाफट से अपना काम, मतलब 6 महीने और कुछ दिन बचे, फटाफट से अपने जो गोल्स हैं वो इस साल के कंप्लीट कर लीजिए। आपको ये बताता चलूं कि अगर गोल्ड बाइंग का आपका गोल है तो श्री कृष्णा ज्वेलर्स का नाम आप कैसे भूल सकते हैं जी। राइट हियर इन फ्रिस्को दे आर ओपन फॉर यू एंड दे हैव अ वंडरफुल वंडरफुल शोरूम। और जो उनका शोरूम है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर जाके चेक कीजिए, बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग सम वंडरफुल कलेक्शंस टू यू। चाहे डायमंड्स हो, इंट्रिकेट कुंदन हो या स्टनिंग पोल की कलेक्शन हो, दे हैव एवरीथिंग फॉर यू ऑल and for every part of life's celebration. Now they are open at 13145 Suite 220. That's in Main Street, Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafting fine jewelry and cherished memories since 1967. Aisa nahi hai ki aaj se kar rahe hain kaam, bahut der se lage hain to make sure that you get some quality jewelry. Shri Krishna Jewelers is the name. और लेडीज एक और बात आश्वासन दे दूं आपको, अगर आपका हस्बैंड आज भी सुबह बेबी मेरा कच्चा कहाँ है, मेरी बनियान कहाँ है, मेरी वो वाली शर्ट कहाँ है, ये कर रहा है ना, तो वो दूसरी किसी और को नहीं ढूंढ सकता। टेंशन नहीं लेने का,

0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
2: यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
3: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
2: सच में एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
3: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
2: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं वापस भी आएंगे।
3: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
2: नंबर बोल जल्दी।
3: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
4: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
5: क्या मतलब?
6: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
6: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
5: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
7: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
9: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
10: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
11: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
12: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
13: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust, aur ab wahi trusted care urgent care services ke saath naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेस्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनोक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजर वे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
14: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
15: बाइंग और सेलिंग अ होम इजंट जस्ट अ ट्रांजैक्शन, इट्स वन ऑफ लाइफ्स बिगेस्ट डिसीजंस एंड इट डिजर्व्स द राइट गाइडेंस। आई एम नवनीता, योर ट्रस्टेड रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी। I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
16: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
17: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: मेरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैडोना ही मांगता।
1: अपन को सिर्फ मांगता है फनेशिया रेडियो, और आपको भी वो इच मांगने का है भैया। दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो व्हिच इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड, बट आई वांट टू लेट यू नो अबाउट वर्ल्ड म्यूजिक डे। 21st ऑफ जून को सेलिब्रेट किया जाएगा जी फनेशिया पे वर्ल्ड म्यूजिक डे, एंड यू गॉट अ चांस टू गेट सम फ्री गिफ्ट्स फ्रॉम फनेशिया। ऑल यू हैव टू डू इज पुट योर फेवरेट म्यूजिक लिस्ट ऑन फनेशिया वेबसाइट। तो आपको जाना है phanasia.net पे। वंस यू गो देयर यू विल सी अ टैब दैट सेज वर्ल्ड म्यूजिक डे। ऑन दैट टैब व्हेन यू क्लिक इट, एक फॉर्म खुलेगा उसमें जिसमें डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूजिक लिस्टेड होंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि अपने फेवरेट गाने एक स्पेसिफिक जॉनर में लिख के देने हैं, एंड इफ योर प्लेलिस्ट इज सिलेक्टेड, आपको मिलेगा फनेशिया की तरफ से एक गिफ्ट, और वो प्लेलिस्ट हम फनेशिया पे प्ले भी करेंगे ऑन June 21st। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गेट रेडी, गेट दोज लिस्ट फिल्ड इन। phanasia.net is that website for you, जहाँ पे आपको जाके ये information डालनी है, and then you will be on your way to receive something wonderful from phanasia. You know, प्रतियोगिता में पूछा गया कि खुशी जो कई बीवियों का नाम है, अब आपका मतलब आई कैन फील यू, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन कि बीवी का नाम खुशी है, चाहे दुख है चाहे परेशानी है, बोलना तो खुशी पड़ेगा। तो चलो, खुशी को अगर तीन शब्दों में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? खुशी को तीन शब्दों में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? मुझे इसके लिए फर्स्ट प्राइज मिला था, बट आपसे पूछ रहा हूँ, अगर खुशी को तीन शब्दों में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? बताओ जरा कॉल करके।

मैं लुटिया पुटिया जाऊंगा, शो खत्म होने वाला, मैंने कहा चलो कुछ मस्ती करके जाएं। गुड इवनिंग फनेशिया, कौन बोल रहा है जी? हेलो मैडम, फोन आपका मेरे साथ लगा हुआ है, आप कहीं और लगे, ऐसे थोड़ी चलेगा, दोबारा कॉल कीजिए।

0: मिनट पट गया। देखते हैं जी हमारे साथ कौन है जो बताएगा खुशी को तीन शब्दों में कैसे लिखते हैं। गुड इवनिंग फनीशिया, कौन बोल रहा है?
1: रिचा गुलाटी।
0: रिचा गुलाटी जी, कैसी हैं जी आप?
1: मैं ठीक हूँ। खुशी को वी कैन राइट आनंद,
0: ओके
1: उल्लास।
0: आनंद, लव। ये क्या हुआ, हिंदी से आप अंग्रेजी में चली गई हो।
1: मुस्कान।
0: मुस्कान हो गया आनंद। मुस्कान, मुस्कान कहाँ से खुशी हो गई?
1: खुशी मुस्कान नहीं होगी।
0: नहीं, कान खींच दिए मेरी टीचर ने, टीचर को खुशी हुई, मुझे थोड़ी खुशी हुई कान खींचे गए तो। कोई बात नहीं रितु जी, फिर कोशिश करिएगा। और कौन है मेरे साथ, देख लेते हैं इनको। गुड इवनिंग फनीशिया, कौन बोल रहा है जी? खुशी को तीन शब्दों में लिख के बताओ ना।

0: इवनिंग फनीशा, कौन बोल रहा है जी? खुशी को 3 शब्दों में लिख के बताओ ना।
1: हाँ जी, एक्चुअली थोड़ा सा कॉर्पोरेट है, मीन्स
0: कॉर्पोरेट
1: योर
0: सही है।
1: सैलरी क्रेडिट
0: क्या हुआ? सैलरी,
1: है, योर सैलरी क्रेडिट
0: योर सैलरी इज क्रेडिटेड। बड़ा अच्छा है
1: है।
0: यार, बस ऐसा ही कुछ है, मिलता जुलता मेरा भी। और वक्त हो रहा है, चलो किसी और की वेट करता हूँ। अच्छा ये बताओ कि आपके नाम में बॉन्दे, आपका लास्ट नेम है बॉन्दे,
1: हाँ जी,
0: BONDE, ये कहाँ से हैं आप? बॉन्डे विच शहर?
1: मुंबई, मुंबई
0: मुंबई।
1: महाराष्ट्र।
0: मुंबई, मुंबई में। और एक मैंने देखा है कि रशिया, इन दो कंट्रीज के जो नाम है ना, बड़े खतरनाक खतरनाक होते हैं। जैसे जो फर्स्ट वुमेन इन स्पेस गई थी ना, वो भी सोवियत थी, उसका नाम था वैलेंटिना वी त्रशकोवा। और मेरे दोस्त कुछ मिले थे मुझे मनाली में, उनका भी नाम था, मैंने लिखा था कहीं, कुछ का पोथियन। तो मैंने कहा यार तुम्हारे नाम ऐसा लगता है कि वाकई सीरियस बिजनेस वाले हो, तुम कहीं ना कहीं से वेपन निकाल के ठोक सकते हो हमें। क्रस्कोवा, क्रस्कोवा, रूस का पुस्की, पता नहीं कोकनोव। ऑल राइट, विद दैट मेरे शो का हो गया जी टाइम टाटा बाय बाय करने का। पर आपको मैं बताऊं कि मुझे किसके लिए प्राइज मिला था? फर्स्ट प्राइज टीचर ने बोला, मार्विन खुशी को तू इन शब्दों में लिख के बताओ। मैंने कहा जी इसमें क्या है, पत्नी मायके गई।
1: तुर जाए।
0: ठीक है जी, पत्नी मायके गई, इससे बड़े 3 शब्दों में कैसे खुशी बयान करोगे? विद दैट इज टाइम फॉर मी टू से बाय बाय आदियोस। जब वो जाएगी तब आपको रियलाइज होगा खुशी का। फिलहाल वो आएगी, और जो आएगी खुशी रखेगी आपके साथ ऑल द वे टिल 10 o'clock। उनका नाम है इपी द हिपी। 7 to 10 PM करेगी जी आपको फुल ऑन एंटरटेन। अगर आपने पहले नहीं सुना है तो सुने उनको, और अगर सुना है देन स्टे इन फॉर द फन। दिस इज बंदा बिंदास, मार बिंदास साइनिंग ऑफ फ्रॉम येट अनदर एपिसोड ऑफ द बिंदास शो, ओनली ऑन योर फेवरेट स्टेशन फन एशिया। और कल शाम को उस सुपर वाले ने दिया जी एक और मौका, तो फिर से आऊंगा 5 to 7 PM एंटरटेनिंग यू ऑन दिस फ्रीक्वेंसी जिसका नाम है 104.9 FM। दुआ में मुझे याद रखिएगा, आई विल डू द सेम। एंड मेक श्योर जिसको भी लेडी और बंदा, बंदा या बंदी, लेडा या लेडी, द पर्सन इन द मिरर दैट यू सी एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड।